मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है खेत खलिहान कार्यक्रम। इसमें सुनिए वार्ता अश्वगंधा की खेती। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
1: भाइयों नमस्कार। अश्वगंधा एक औषधीय पौधा है। इसका उपयोग काफ़ी समय से हमारे यहाँ आयुर्वेद और यूनानी पद्धति में होता है। अश्वगंध को खरीफ के मौसम में देर से लगाते हैं। जमीन में अच्छी मात्रा में नमी तथा मौसम शुष्क होना चाहिए। इसकी खेती किसी भी प्रकार की जमीन में की जा सकती है, परंतु बलुई दोमट या लाल मिट्टी जिसका पीएच मान 7.5 से 8 हो और जल निकास का उचित प्रबंध हो सर्वोपरि होती है। 660 से 750 मिलीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त होते हैं। यदि रवि के मौसम में 1 से 2 वर्षा हो जाती है तो उपज में काफ़ी गुणात्मक सुधार होता है। साधारणतया इसकी खेती ऐसे खेतों में करते हैं जहां पर सिंचाई का अच्छा प्रबंध नहीं है तथा अन्न वाली फसलों को उगाना लाभप्रद नहीं है। वर्षा होने से पहले 2-3 बार खेत की जुताई ठीक ढंग से करके पाटा लगाते हैं। बुआई के समय खेत को देसी हल से जोत कर मिट्टी भुरभुरी कर लें। पाटा का प्रयोग करके खेत को फिर समतल कर देना चाहिए। उसके बाद जो है बीजों की बुआई करनी चाहिए। साधारणतया इसको कृषक छिड़काव विधि से बोते हैं। इस विधि से बोने से 10 से 12 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर खेत में लगता है। यदि बीज को पंक्तियों में बोया जाए तो उपज अच्छी मिलती है और निराई गुड़ाई में भी आसानी होती है। बीज की मात्रा भी कम लगता है। यदि खेत में पौधों की संख्या कम हो जाती है तो उपज में कमी आ जाती है। दोनों प्रकार की बुआई विधियों के बाद बीज को हल्की मिट्टी से ढक देना चाहिए। बीजों का अंकुरण 8 से 10 दिन में हो जाता है। उर्वर भूमि में पौधों की दूरी अधिक करनी चाहिए। इस की बुआई यानी कि अश्वगंधा की खेती जो है वो रोपाई विधि द्वारा भी की जा सकती है। इसके लिए जुलाई महीने में नर्सरी डालते हैं। 1 हेक्टेयर खेत में अश्वगंधा लगाने के लिए 500 वर्ग मीटर जमीन पर 5 किलोग्राम बीज की नर्सरी डालते हैं। 5 से 8 सप्ताह में पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। रोपाई मध्याह्न के बाद करनी चाहिए और पौध लगाने के तुरंत बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। अश्वगंध की बुआई का उपयुक्त समय मानसून द्वारा निर्धारित करते हैं। इसकी बुआई ऐसे समय करते हैं जब 3/4 वर्षा जो है वो खत्म हो जाए, यानी कि अगस्त महीने के बाद ही इसकी बुआई करनी चाहिए। बीज को खेत में बोने से पहले डायथेनियम 45 से उपचारित कर लें। उसके बाद आप उर्वरक प्रयोग की बात सोचें। किसान किसी भी तरह के रासायनिक खाद इसकी खेती में नहीं डालते हैं, लेकिन यदि बुआई से पहले 15 किलोग्राम नाइट्रोजन और 15 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया जाए तो फसल काफ़ी अच्छी होती है। अधिक वर्षा या पानी अश्वगंध की खेती के लिए हानिकारक होती है, इसलिए इसकी खेती बरानी क्षेत्रों में भी आप करें। बीज की सड़न, पत्ती की सड़न, डैम्पिंग ऑफ, पौधों का झुलसना, पौधों में अंगमारी, डाइबैक और लीफ ब्लाइट सामान्य बीमारियां हैं। इन बीमारियों से बचाने के लिए भी आपको उपाय करना चाहिए। दिसंबर के माह से पौधों पर फल फूल आने लगते हैं। जब पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगे और फल भी पीले हो जाएं तब फसल खुदाई के लिए तैयार हो जाती है। फसल की खुदाई जनवरी से मार्च के मध्य में करते हैं। बुआई के लगभग 150 से 170 दिनों बाद फसल पककर तैयार हो जाती है। पूरे पौधे को जड़ सहित खोदना चाहिए। पौधों की उचित गहराई तक खोद कर निकाल लेना चाहिए जिससे जड़ें कटने नहीं पावें। खुदाई के समय उचित नमी खेत में रहना चाहिए। पौधों को ऊपर से काटकर उचित नमी पर हल चलाकर भी जड़ें एकत्रित की जा सकती हैं। खुदाई के बाद जड़ों को धोकर 7 से 10 सेंटीमीटर के टुकड़ों को काट लेना चाहिए। उन्हें फिर धूप या छाया में सुखा लेना चाहिए। जड़ों को इतना सुखाना चाहिए कि उसमें 10 से 12% नमी जो है वो रह जाए, तभी आप बाज़ार में उन्हें बेच सकते हैं। फिर आप फलों को तोड़ें या उन्हें डंडे से झाड़ लें, बीज प्राप्त कर लें। सूखी ही हुई जड़ों को मोटाई के अनुसार ग्रेड में आप विभाजित कर लें, उसके बाद बाज़ार में उसे बेचने के लिए भेज दें। इस तरह से आप अश्वगंधा की खेती करें और लाभ उठावें।
0: खेत खलिहान कार्यक्रम के अंतर्गत आपने वार्ता सुनी अश्वगंधा की खेती। वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: कार्यक्रम सुबह 7:30 सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ज और FM 100.1 मेगा हर्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन मनन।
2: चलो सुबह का पहला काम ये करें कि इस दिन के लिए संकल्प करें, मैं दुनिया में किसी से डरूंगा नहीं, मैं केवल भगवान से डरूं, मैं किसी के प्रति बुरा भाव ना रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं किसी कष्टों को सह सकूं। सत्य तथा न्याय से ऊंचा कोई धर्म नहीं है, यह कथन है हमारे राष्ट्रपिता पूज्य बापू का। सच है कि जिस प्रकार सोना आग में तपकर कसौटी पर कसकर ही अपना खरापन सिद्ध कर पाता है, इसी प्रकार व्यक्ति का खरापन तब ही सिद्ध हो पाता है जब वो समाज में सत्याचरण का प्रमाण दे पाता है। सत्य मानव जीवन की अनमोल विभूति है, जो अपने प्रति, अपनी आत्मा के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, परिवार और राष्ट्र के प्रति मन, वचन, कर्म से सच्चा रहता है, वही इसी जीवन, इसी देह और इसी संसार में नैसर्गिक आनंद प्राप्त करता है। सत्य का अवलंबन करने वाले जीवन में कभी असफल नहीं होते। जिसके भीतर सत्य पैदा होता है, उसके भीतर का असत्य विलीन हो जाता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि सत्य से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य बौद्धिक नहीं बल्कि हार्दिक होना चाहिए। नीति कहती है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य की खेती के प्रारंभ में थोड़ा त्याग, बलिदान और धैर्य की जरूरत होती है, किंतु जब वह फलती है तो लोक से लेकर परलोक तक मानव जीवन को पुष्पों से भर देती है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति संसार में गांधी की तरह निर्भय होकर विचरण करता है। उसे ना तो कहीं भय होता है और ना आशंका। वो अजात शत्रु होकर समाज को अपने व्यवहार से जीत लेता है। उसकी जीवन यात्रा अद्भुत हो जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ होता है, अपने कर्तव्य के प्रति सचेतन व सजग होता है, उसके मार्ग का बाधक बनना इतना सरल नहीं होता, क्योंकि सत्य के साथ स्वयं सच्चिदानंद परमात्मा होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सत्य की राह पर चलते हुए बापू का किया गया संघर्ष इसका ज्वलंत प्रमाण है। यह सच है कि सत्य को पा लेना या जान लेना इतना आसान भी नहीं है। कथन और आचरण दोनों का जब तक समन्वय नहीं होगा, तब तक सत्य का दर्शन दुर्लभ है। सत्य को अनुभूत किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमारा हृदय मंदिर पवित्र हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जिन्होंने सत्य स्वरूप ईश्वर को प्रत्यक्ष कर लिया है, उन्हें फिर उसे समझने के लिए न्याय युक्ति, तर्क वितर्क, बौद्धिक व्यायामों की आवश्यकता नहीं रह जाती। उसके लिए तो वह प्रत्यक्ष से भी प्रत्यक्ष हो जाता है। परिवर्तनशील संसार में जो शाश्वत आनंद दिला सके, यात्रा बस उस परमानंद को पकड़ने की करनी चाहिए। हम गांधी के इस कथन पर चिंतन करें कि थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है।
1: आप सुन रहे थे चिंतन मनन, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। आरंभ में सुनिए ये देश वंदना समूह स्वर में।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। कुछ ही देर में आप सुनेंगे 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में एक साथ सामूहिक योग का मुख्य समारोह का रेड रोड कोलकाता से प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: कोलकाता पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं, जहां से आप 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुराजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आइए आपको योग दिवस कार्यक्रम में ले चलते हैं।
1: नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खेल प्रेमियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को और योग प्रेमियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। आज पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरी मानवता आज एक सुर, एक ताल और एक श्वास में बंधी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रेड रोड पर विशेष आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में यहां सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं योगाभ्यास कर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में अपने दो विशेषज्ञों का भी स्वागत कर रही हूं। हमारे साथ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
3: थैंक यू, नमस्ते। एंड वी कैन सी दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री रविंद्र नारायण रवि एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी हैव अराइव्ड एट द आइकॉनिक रेड रोड एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल बी लीडिंग द नेशन टुडे एंड ही विल personally be performing asanas at the iconic Red Road on the occasion of the 12th International Day of Yoga. And the Red Road is chock-a-block with people from all walks of life, and it is indeed, Neelam, a very momentous day for all the people who have assembled here at Red Road to be performing asanas to be led by the Honorable Prime Minister. And there's a huge crowd we can see from the one end of Red Road till the Eden Gardens. It is chock-a-block with people. And the theme of this year's International Day of Yoga is healthy aging. And we can see that everyone is assembled here and they're looking forward to join the Honorable Prime Minister and perform asanas.
1: 21 जून 2026 की इस सुहानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन के लिए। यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का

0: नेतृत्व करेंगे। इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग, बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं। और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं और यहां पर अब संबोधन हो रहा है।
1: श्री प्रताप राव जाधव, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष,
0: विशाल जनसमूह इस संबोधन को सुनता हुआ।
2: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया। 13 जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका पूरी दुनिया में लहराएगा तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में योग और आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका भी सिद्ध हो सकेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे योग।
0: माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ने अभी सभी का यहां पर स्वागत किया और साथ ही आयुष मंत्रालय ने योग को बढ़ावा देने के लिए जो पहल की है उनके बारे में बताया। हम आपको बताएं कि माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्री आर एन रवि, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी और प्रधानमंत्री जी स्वयं आज के दिन के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए परिधान में इस समय है। योग को परिलक्षित करती हुई टी शर्ट्स हैं और साथ ही पतलून पहनी है और जो भी योगाभ्यर्थी यहां पर बैठे हैं, योग साधक यहां पर बैठे हैं रंग बिरंगे मैट्स पर, वो बेहद उत्साहित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में उल्लास है लेकिन साथ ही अनुशासन भी है।
1: यस एंड एवरी एंथुजियास्ट हियर एंड नाउ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी।
3: वंदे समवेत सुनागरिक भद्रमंडली, আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট হয়েছেন বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী এবং যার হাত ধরে সিটি অফ জয় এই কল্লোলনী তিলোত্তমা কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে যোগ কামস টু হোম যোগ বঙ্গে ফিরে এলো সেই মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজিকে 11 কোটি পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে হৃদয় থেকে স্বাগত অভিনন্দন শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা এবং প্রণাম নিবেদন করছি। মহামহিম রাজ্যপাল মাননীয় আর এন রবিজি রয়েছেন, ভারত সরকারের মাননীয় স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতাপ রাও যাদবজি রয়েছেন এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, মিডিয়ার বন্ধুরা এবং যোগপ্রেমী জনগণ রয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটু পরেই একটি সুবিশাল বৃহৎ ঐতিহাসিক কার্যক্রম হতে চলেছে। ইতিমধ্যে এই কার্যক্রমের আজকে যে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এতদিন এর সঙ্গে রাজ্য সরকার বা সরকারি উদ্যোগ যুক্ত ছিল না, কারণ আমাদের অজানা। আমি সে কথা বলতেও চাই না এই সুপ্রভাতে, কিন্তু আমরা মনে করি পশ্চিমবাংলার জনতা জনার্দন তারা যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যার ফলশ্রুতিতে এবারে বন্দে যোগ যোগ পূজা পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রায় 257,000 রেজিস্ট্রেশন হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান এই যোগে পার্টিসিপেট করছে। আমার বিশ্বাস আজকে পশ্চিমবঙ্গে গোটা রাজ্যে দার্জিলিং থেকে দীঘা, কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, কোটিরও বেশি মানুষ এই যোগ উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন। আর কলকাতা বিগত দিনের সব রেকর্ড ভেঙে লক্ষ লক্ষ মানুষ যোগে অংশগ্রহণ করবেন। আমি কথা বাড়াবো না, শুধু একটা কথাই বলবো, 1893 সালে বিশ্ববন্দিত যুব সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ তিনি এই যোগের সম্পর্কে কি বলেছিলেন আপনারা জানেন, যোগই একমাত্র মুক্তির উপায়, যোগই আনন্দ, যোগই প্রেম এবং যোগের মধ্য দিয়ে মন এবং শরীরের বিকাশ তিনি অনেক আগে বলে গেছেন। এই যোগ পশ্চিমবঙ্গের পুরনো সংস্কৃতি, বেদ উপনিষদ গীতা থেকে শুরু করে এই যোগের কথা আমরা সবাই পড়েছি এই সমস্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থে। 1920 সালে যোগানন্দ পরমহংসের হাত ধরে এখানে যোগের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তার ভাই বিষ্ণুচরণ ঘোষ 1923 সালে এখানে যোগ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। আমি আর কথা বাড়াবো না, ইতিহাস আমরা জানি, আমি শুধু প্রণাম আর কৃতজ্ঞতা জানাবো বাংলার গণদেবতা জনতা জনার্দনকে আর ধন্যবাদ জানাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে, যিনি পশ্চিম বাংলায় এই হারিয়ে যাওয়া ভুলিয়ে দেওয়া যোগকে 2026 আন্তর্জাতিক যোগ দিবস 12তমতে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দিলেন। ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, শত কোটি প্রণাম জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। ভারত মাতা কি।
1: That was the Honorable Chief Minister of West Bengal, Sri Shubhendu Adhikari, addressing the gathering on the occasion of the International Day of Yoga. And every yoga enthusiast, and we can see that the Honorable Minister for Municipal Affairs, Srimati Agnimitra Paul of the Government of West Bengal, is also among the lakhs of yoga enthusiasts who have assembled at the iconic Red Road. And the Honorable Chief Minister of West Bengal mentioned that more than 2,57,000 registrations have taken place for today's main ceremony here at the Red Road, and more than a crore yoga enthusiasts will join, especially in the state of West Bengal, from Darjeeling to Digha and from Kuchbihar to Kagdweep. And now we can see that the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi is walking towards the dais, where he will be performing the asanas and leading the nation today in performing yoga. And as we know that yoga for healthy aging is the theme of
4: Rajpal Sri R.N. Ravi ji, Urjavan Mukhyamantri Shubhendu Adhikari ji, केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव जाधव जी, अन्य सभी महानुभाव, यहां कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह

बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव जीवन के जीवन का चेतना के साथ ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर फ्लेक्सिबल एट 40 देन वी वेर एट 20। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर एनर्जेटिक एट 50 देन वी वेर एट 30। Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life

0: and keep and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं, तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं। लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें, योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे। योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे। हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे। अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365 योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road, Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister who will lead in the day's yoga आसनास सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जन समूह को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया। और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या ना हो, ये हमें फिर से याद दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है जिस पर कमल का फूल दमक रहा है। और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन है वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से, फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना।
1: Yes, and the Honorable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honorable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
2: Ji, aur is samay यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जितने भी योग साधक हैं सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहाँ पर की जा रही है। हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम

0: सब एक ही हैं।
1: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था नहीं आसुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए, निजर जाएगा।
0: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं हम सब, और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है। योग साधकों के बीच
2: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट अराइव्ड एंड ही विल बी गोइंग टू द डेजिग्नेटेड एरिया एंड ही हैज जस्ट अराइव्ड देयर एंड ही विल बी परफॉर्मिंग द आसनास फ्रॉम हियर. And he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road. And we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
0: माँ काली का आशीर्वाद लिए स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसी विभूतियों का दर्शन इस भूमि में है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत है ये हमारे योगियों की, हमारे मुनियों की। विशेष तैयारियों के साथ आज यहाँ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय ग्रीवा चालन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूँगी, ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है, आप हमें इसका लाभ बताएं।
3: जी, ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है। मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है
0: जी।
3: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको भी प्रिवेंट करता है और साथ में इसको के थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं। और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं
0: जी।
3: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि सारी जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही हमारे जो हेड का, सिर का वेट है उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है
0: जी। यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं उसके बहुत सारे लाभ है, ये हमें आपने अभी बताया। हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना, ये ग्रीवा संचालन में आता है। ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें कहा जाता है,
3: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से
0: जी। और यहाँ पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्रीगण तो है ही, गणमान्य अतिथि हैं, और साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं हमारे वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं।
2: Guruji, Munish Naji, we'd also like to know from you about the importance of the beginning of this asana.
4: Yes, actually, asan ko hum is tarah se samjhe ki seat of awareness. हमारी चेतना हमारे शरीर को फॉलो करती है, हम चित्त से काया की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रीवासन है इसमें हम क्या होता है कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से, ये जागृत होती है और उसकी आसन वहां पे अवेलेबल हो जाती है। मतलब उसकी इंटेंशन, उसकी पहुंच, उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की, ये यहाँ से शुरू होती है और ये बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं तो
0: जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनेश सिन्हा जी कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है आध्यात्म में।
4: योग

0: पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्म, पूरा विश्व, पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है, बस जानता नहीं है, है ना। अगर हम कहते हैं जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म, जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है, उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं, इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है ना। जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है, इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं। तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं, अपने स्वयं से जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे होते हैं, जोड़ कौन रहा होता है, हमारी चेतना, हमारी चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर। जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। फिर उसका प्रेजेंस हमारे टोटैलिटी पे रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। आप चलते फिरते उठते बैठते आप यौगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इससे कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है। और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं, हमारी कलेक्टिव कॉन्शसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है। आज इस पूरे समाज को, इस पूरी जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है।
1: जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहाँ पर स्कंध चालन का अभ्यास किया जा रहा है। प्रतिमा जी, आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं?
2: स्कंध चालन जो है ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है, और थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं, और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है, और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है, और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं।
1: जी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नजर आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है, अगर हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए, तो योग में करियर भी है। और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहाँ समझ सकते हैं कि आपने अलग अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं।
2: योग में करियर के ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चले जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, एमएससी है, एमए है और पीएचडी है।
1: जी,
2: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से आपका करियर आप डिसाइड कर सकते हैं। वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में, और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि।
1: जी, मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूंगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना, योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है?
0: बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो जाते हैं
1: जी,
0: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं, जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे। तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते हैं अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू टर्न होता है, यू टर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटालिटी की तरफ जुड़ जाता है।

0: आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन पूरे विश्व का सत्य एक ही होता है
1: जी। yes, और इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है, लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है। और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हों तो ताड़ासन कहा जाता है। और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी सही कहा मैंने?
2: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं
1: जी।
2: एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन
1: जी।
3: यस, एंड एज यू वर मेंशनिंग नीलम, दैट टुडे इज द International Day of Yoga, and the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Healthy Aging. And the Honorable Prime Minister also mentioned in his speech that in the 1920s, Paramhams Yoganand set up the yoga center in Kolkata and also at other places. And today, the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world. And he also highlighted the work of Mr. Almis in popularizing yoga in Djibouti, Africa through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone, is indeed a gift for humanity by India to the world.
1: जी, यहां पर अभी पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जमीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ तो अर्धचक्रासन है, हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को। हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है, हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब ये कागजों में भी दर्ज हो चुका है, जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहां पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
2: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है। ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
1: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है, क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूँ, लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
2: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है
1: जी। और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नज़दीक बैठकर योग कर रहे हैं, जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है। और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें। और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नज़दीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं, मेरुदंड को एकदम सीधा करके। और अब दंडासन से भद्रासन में सभी योग साधक
3: And we can also see Neelam and the Honorable Prime Minister is going to many enthusiasts and volunteers who have come here, and he is interacting with them and he is just pepping them up. This shows that how much he cares for the well-being of the common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed a moment that everyone will cherish, and every person with whom the Honorable Prime Minister is interacting will carry this memory with him or with her forever in their lifetime.
1: Ji, bilkul. Aur ye jo aasan hai, इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है. वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं. लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग आसन हैं, और यहाँ हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए, और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं निर्देशों का पालन करते हुए. अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं, एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है, और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है, यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए. और प्रतिमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं.
2: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं, और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है. और जो हमारी पंचवायु कही गई है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इंप्रूव होता है. साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइंड होती है.
1: जी, और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है. माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं, और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाथों की स्थिति को ठीक किया है, और सभी को प्रेरित करते हुए स्वयं उनके बीच में यहाँ पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, उनके सामने योगाभ्यास करते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए, बेहद सुंदर ये भाव, बेहद सुंदर ये दृश्य. कौशिक जी,
3: यस एब्सोल्युटली, एंड एज वी मेंशनड अर्लियर आल्सो, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेकिंग कीन इंटरेस्ट स्पेशली अमंग द teenagers and youngsters who are present here, and just guiding them how to do the asanas in the correct manner. And this is just as you rightly mentioned, how an elder of the family takes care of the youngsters. The Honorable Prime Minister is doing absolutely just that.
1: जी, and now about this asana, अभ्यास किया जा रहा है शशक आसन का. खरगोश की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशक आसन करते हैं, और यहाँ पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद शशक आसन करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है, और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है. और अब यहाँ पर उत्तान मंडुकासन का अभ्यास किया जाएगा सभी इस आसन की मुद्रा में आते हुए. उत्तान मंडुकासन, प्रतिमा जी इस आसन के बारे में आप हमें बताएं.
2: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है, शशांक आसन भी बोलते हैं उसको, उसके बाद उत्तान मंडुकासन. शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है, और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं. उसके जस्ट बाद जो काउंटर पोस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडुकासन, ये स्पेशली लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है. साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है, तो ये थोरेसिक कैविटी पर भी काम करता है. साथ में मन को भी शांत करता है, और हमारे घुटनों के लिए और जो बटक्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है। एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, साथ में मन को भी शांत करने वाला आसन है ये।
1: जी, और अगर हम अपने शरीर को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी तनाव होता है, हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जो हमारे लिए जटिल है, हमारे लिए कठिन है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है। तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है वो दूर किया जाता है और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता है।
3: Now I think the enthusiasts are performing Vakrasan.
1: जी बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा, तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है। प्रतिमा जी
2: बिल्कुल सही है कि हमें सीधा कर देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है। ये मोड़ कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियाज है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको डायबिटीज वालों के लिए रामबाण कहा जाता है। साथ में ये आंखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन।
1: और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटी प्रदेश जो है, कमर वाला हिस्सा जो है वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत करवाया गया ये आसन
2: और साइड फैट को भी रिड्यूस करता है।
1: जी, और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नज़र से सभी को देखते हुए और परखते हुए, यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक से आसन नहीं हुआ तो
3: जस्ट गाइडिंग देम टू डू द आसन, उन्हें बिल्कुल गाइड कर रहे हैं परफेक्ट मैनर। एंड नाउ प्रतिमा जी, अबाउट दिस पर्टिकुलर आसन, इफ यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स।
2: मकरासन, ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है, और ये इसमें देखेंगे आप, जब हम जनरली फीट के बल लेटते हैं इसमें पेट के बल लेटना होता है, और ये हमारी पूरी जो स्पाइन, अभी तक किए जाने वाले आसनों में जो स्ट्रेच हुई है उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है, और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं और लोअर लिम और अपर लिम है, इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ हैं, टोज बाहर की तरफ, तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है। तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं, साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है, साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये।
1: जी, और बेहद खूबसूरत बात यह है कि हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन हो या मकर आसन हो जो अभी हो रहा है, ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं। अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने पत्थर से भी प्रेरणा ली है, हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की, ताड़ासन की, तो प्रकृति से प्रेरणा ली है, तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चलें। मकर आसन, मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है बिल्कुल सीधा, उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं, और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन। यहां पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं। भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है, लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है। इसके लाभ डॉक्टर प्रतिमा,
2: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे, ये भुजंगासन, भुजंग मतलब कोबरा पोज, और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम करता है, और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है। साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है, स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है, शोल्डर्स को भी स्ट्रेंथन करता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है। ये कहा जाए कि ये पूरे शरीर पर काम करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सर्वाइकल वालों के लिए भी ये आसन बेनिफिशियल कहा जाता है, और सर्पासन अलग है, भुजंगासन अलग है। यहाँ पर भुजंगासन किया गया है क्योंकि भुजंगासन के बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं।
1: जी गुरु मुनेश सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम योग के लाभों के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह के आसन है जिन्हें हर उम्र के साधक आसानी से कर रहे हैं। आपका क्या विचार है, क्या योग को हमारे स्कूली शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक पक्ष भी शामिल हो?
0: जरूर जरूर। एक्चुअली जब तक हम अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक हमारी पूर्ण विकास नहीं हो सकती। अगर हम बच्चे से ही, बहुत छोटे कॉन्शसनेस से ही जब हम योग बताना शुरू करते हैं, योग से उनको जोड़ते हैं, तो हम पूरी पृथ्वी पे एक अच्छे नागरिक को पाते हैं, एक अच्छे इंसान को बनाते हैं, और इससे बहुत पूरी पृथ्वी का भला होने वाला है, पूरी जगत का भला होने वाला है। और मैं तो ये बहुत खुश हूँ कि अपने प्रधानमंत्री जी की जो वो आज एक इंस्ट्रक्टर की तरह हर रो में घूम घूम के सबके पॉस्चर्स ठीक कर रहे हैं, इससे यही योग की जो नेचर है, योग का जो नेचर लव है, यही दिखाता है, जॉय ऑफ गिविंग है, यही दिखाता है। आज वो अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से जॉय ऑफ गिविंग, सेल्फ लव और लव फॉर ऑल वो दिखा रहे हैं। तो ये मतलब इतनी रोमांचक जगह है, इतनी इतनी अच्छी हो रही है, मतलब कह नहीं सकता हूं मैं, बहुत ही सुंदर।
1: जी, और यहाँ पर हम अद्भुत अनुशासन भी देख रहे हैं जो कि योग भी हमें सिखाता है, प्राणों के साथ जुड़ना। और सेतु बंध आसन का यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है। सेतु यानी पुल, तो शरीर से पुल जैसी आकृति बनाना सेतु बंध आसन, इसके लाभ हमें डॉक्टर प्रतिमा बताएंगी।
2: ये आसन जो है वो जैसा कि नाम है वैसा काम, जी, बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। साथ में ये जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, आप देख रहे हैं इसमें स्पाइन ऊपर की तरफ जाती है और पेट ऊपर की तरफ जाता है, तो स्पाइन पर भी काम करता है, एब्डोमेन पर भी काम करता है, शोल्डर्स पर भी काम करता है, थाई मसल्स पर भी काम करता है
1: जी।
2: और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आसन है हमारे थेरेपी एस्पेक्ट से, और इसको जब किया जाता है तो हमारी काफ मसल्स पर भी, जो गैस्ट्रोनियस मसल्स होती हैं उनके उन पर भी काम होता है सेतु बंधासन।
1: जी, सेतु बंधासन। और हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आसन सभी कर रहे हैं। योग के बारे में एक अच्छी बात यह भी है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, बढ़ती उम्र के साथ हमें कहा जाता है कि या तो वो कम कर दीजिए या ध्यान से कीजिए, लेकिन योग एक इस तरह की क्रिया है शारीरिक कि अगर हम लगातार करते रहते हैं तो बढ़ती उम्र, एक तो उसका बढ़ना धीमा हो जाता है यानी एजिंग के जो असर हैं वो धीरे धीरे आते हैं, और दूसरा ये भी होता है कि हम सहज भाव से वो आसन कर पाते हैं। और यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं अर्ध हल आसन शायद यहाँ पर किया जा रहा है, और हल जैसी आकृति शरीर से बनाते हैं तो पांव पीछे की तरफ ले जाकर, सर के पीछे की तरफ ले जाकर जमीन को छूते हैं, लेकिन ये उसका आधा हिस्सा ही किया जा रहा है सभी, ताकि सहज भाव से कर सके। अर्ध हल आसन, पांव सीधे किए गए जमीन पर लेटकर, और अब पवन मुक्त आसन का अभ्यास सभी कर रहे हैं। शरीर की वो वायु जो हमें कष्ट दे सकती है उससे शरीर को मुक्ति देना, पवन मुक्त आसन। डॉक्टर प्रतिमा,
2: पवन मुक्त आसन जो है आप देख रहे हैं कि लेटकर सुपाइन पोस्चर है ये
1: जी,
2: और पवन मुक्त जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पवन मुक्त आसन समूह के आसनों में से किया जाने वाला आसन है। और क्यों? क्योंकि शरीर में 80 प्रकार के जो रोग हैं वो वायु विकार के कारण होते हैं, वायु विकार से संबंधित होते हैं, तो ये हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की वायु हैं उन सभी पर काम करता है, इसीलिए इसको पवन मुक्तासन नाम दिया गया है। वायु विकार के कारण हमारा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन सारे जितने भी हमारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वायु के कारण होती हैं। तो ये पवन मुक्तासन ग्रुप का किए जाने वाला आसन है पवन मुक्तासन, जिसके कि वायु को व्यवस्थित करने का काम ये हमारे शरीर में करता है।
1: जी गुरु मुनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका क्योंकि ऐसा अनुभव रहा है कि आप हमारे सशस्त्र बलों को भी और अर्धसैन्य बलों को भी योगाभ्यास करवाते रहे हैं, मेडिटेशन की क्लासेस आप लेते हैं, मुझे आप ये बताएं कि किस प्रकार से हमारा मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो मदद करता है हमारी।

0: एक्चुअली क्या है, योगा में उसकी जो डेफिनेशन है, योगा चित्त वृत्ति निरोध है।
1: जी,
0: हमारी चित्त की वृत्तियां अगर जब तक कंट्रोल नहीं होती हैं, तब तक हम अपने जीवन को ढंग से जी नहीं पाते हैं। आप कितना भी सशक्त हो जाएं, अगर आपकी वृत्तियां ही आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, आपकी वृत्तियां ही आपको हर वक्त ऐसे कार्यों में लगाती हैं जो नहीं करना चाहिए, आपकी वृत्तियों से आपका जीवन पूरा चारों तरफ बिखर जाता है। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि आज योग करके अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करें। इसीलिए आसन को सीट ऑफ अवेयरनेस कहा गया है, हमारी वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, और खास करके मेडिटेशन और खास करके योग और ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, वो दुनिया के लिए अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे भारत के जितने फोर्स हैं, जितने भी आर्म फोर्स में काम कर रहे हैं, उनकी जीवन में एक बहुत स्ट्रेस होता है, वो घर से बाहर होते हैं, तो उनके लिए योग करना, ध्यान करना, अपनी वृत्तियों पे काम करना, सो दैट अपने देश की रक्षा, अपनी देश की सुरक्षा उनका 100% वो डाल पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है कि ध्यान करके अपनी चित्त को कंट्रोल किया जाए, उसमें समाया जाए और उसको उसी की ज़िंदगी जिया जाए, है ना। योग में सबसे पहली बात मैंने देखा है जीवन में, जिनकी चित्त की कंट्रोल नहीं है, जो जो अपने कॉन्शसनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम।
2: Dr. Pratima, now I think we are seeing the Kapalbhati, so you can throw some light on this particular aspect.
1: कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कपाल भाति। कपाल मतलब मस्तिष्क प्रदेश, ब्रेन रीजन, और भाति मतलब वो जो आपने लोहार देखा होगा, उसको जो धोकनी चलाता है, उस तरह से हमें फोर्सफुली एक्टिव एक्सेलेशन और पैसिव इनहेलेशन कपाल भाति में करना होता है। और जो हमारे ग्रंथ हैं वो इसको विशेष रूप से ये कहते हैं कि कफ दोष नाशनी, हमारे शरीर में जो कफ विकार है वो इसको करने से संतुलित होता है। और योग एज सच, जितने भी हमारे विकार हैं, बात विकार हो, कफ से संबंधित हो, पित्त से संबंधित हो, जो भी बीमारियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन के कारण होती हैं, और उन्हीं को संतुलन करने का काम योग करता है। तो कपाल भाति मस्तिष्क को चमकाने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। और यहाँ मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगी कि जो योग है अपने आप में, वो मैंने जो समझा वो यूथफुलनेस ऑर्गेनाइजिंग ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी गारंटी फॉर हेल्थ हैप्पीनेस एंड हारमोनी। ए स्टैंड फॉर एनालिसिस फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो योग करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो तो अच्छे से काम करेगा ही, जब वो अच्छे से काम करेगा तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा, और जब एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा तो सोसाइटी में हम इंटरेक्ट पॉजिटिव वे में करेंगे।
3: जी, और अब यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। योग साधक जो हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में हाथ हैं, एक हाथ से नाड़ी शोधन प्रक्रिया आप कर रहे हैं, और कुछ साधक जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सहज आसन में, सुखासन में बैठे हैं और नाड़ी शोधन किया जा रहा है। तो नाड़ियों की शुद्धि इससे होती है, डॉक्टर प्रतिमा?
1: हाँ, 72,000 नाड़ियों के विषय में योग ग्रंथों में कहा गया है, उन सभी नाड़ियों की शुद्धि इससे प्राणायाम से होती है। प्राण और आयाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम प्राण ऊर्जा के कारण ही संपूर्ण जीवन की क्रियाकलाप संपन्न कर पाते हैं। तो ये प्राणों को भी लंबा करता है, आयामी लॉन्ग करना, लंबा करना। और ऐसा कहते हैं कि हम गिनी चुनी श्वासें ईश्वर से लेकर आए हैं, तो हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, प्राणायामीन युक्तिन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगिन सर्व रोग समुद्भवा। मतलब इसका यह है कि प्राणायाम अगर सही ढंग से किया जाए तो सभी रोगों का नाश करता है, लेकिन यहाँ पर योग शब्द है, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवा, मतलब यदि गलत ढंग से योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम को हमें या योग अभ्यास को हमें बहुत सावधानी पूर्वक कहा गया है। ये भी कहा गया है युक्तम युक्तम त्यजेत वायु युक्तम युक्तम च पूरयेत, मतलब धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और प्राणायाम जैसे कि कई प्रकार के हैं
3: जी, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है, गर्मी में भी शीतलता का आभास देने वाला, जो कि कहा जाता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को ग्लोइंग कर देता है। और चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के किशोर अवस्था में आमतौर पर किशोर जो है वो मुहासे और पिंपल्स का सामना करते हैं तो उन्हें भी ठीक करता है। डॉक्टर प्रतिमा,
1: जैसा कि आपने कहा कि शीतलता देने वाला प्राणायाम है, निश्चित रूप से ये हमारे शरीर को शीतल प्रदान करता है, साथ ही भूख और प्यास पर भी नियंत्रण लाता है ये। और जो हमारी अग्नि है वात सॉरी पित्त जो है हमारा, उसको व्यवस्थित करने का काम करता है। और अगर पित्त सही होगा, आग सही जल रही होगी, तो निश्चित रूप से चमक आएगी ही।
3: जी, जठराग्नि को पूरी तरह से व्यवस्थित कर देता है जी। और अब भ्रामरी प्राणायाम किया जा रहा है।
1: भ्रामरी प्राणायाम के तो इतने फायदे हैं जिसकी की कोई हद, क्यों? क्योंकि ये हमिंग भी जैसे आवाज निकालना होता है इसमें, और षणमुखी मुद्रा में किया जाने वाला अभ्यास है। डिफरेंट वे में भी किया जा सकता है ये
3: जी।
1: और इसमें आप देख रहे हैं कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो अलग अलग मर्म स्थानों पर रखी हुई हैं। इसमें सांस लेते हैं और आवाज के साथ सांस को छोड़ते हैं। उस समय हमारे जो आवाज निकलती है वो गले से निकलती है, और जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, इनका सीक्रेशन प्रॉपर करता है, ऑक्सीटोसिन हो, तो ये ब्रेन और ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत फायदा करता है। और जैसा कि योग है वो पेट और पीठ दोनों पर काम करके ब्रेन पर अल्टीमेटली काम करता है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हाँ, इसको किसे नहीं करना चाहिए या लाउडर पिच में इसको नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल हो सकता है। जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत लाउडर पिच पर नहीं करना चाहिए।
3: यानी शरीर के जो अंदर सॉफ्ट टिश्यूज हैं, कंपन से हम उन्हें एक्टिव करते हैं और इस तरह से उन्हें मजबूत करते हैं। और ये हाथ इसलिए रखे जाते हैं द्वार पर कि जो कंपन से जो हवा है वो बाहर नहीं निकले, शरीर के अंदर जब वो रहेगी तो हमारे टिश्यूज को हेल्दी करेगी जी। भ्रमर जैसी आवाज हम इसमें
1: बाहर कनेक्शन कट भी करना होता है ताकि हम अपने आप में, योग अपने आप में जुड़ना सिखाता है
3: जी,
1: तो हम अपने आप से जुड़ पाएं।
3: स्वयं से ही हम जुड़ते हैं, अपने भीतर हम जाते हैं जी।
2: And now the most important of the asanas, that is ध्यान और मेडिटेशन, which is a time for our self-assessment and becoming one with the universe. Dr. Pratima,
1: meditation is not just meditation, it is medication of body as well as mind.
3: जी.
1: क्योंकि मैंने कुछ ध्यान के जो लोग हैं उनको से जुड़ी हुई हूँ, देखा है मैंने कि ध्यान से उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया। तो मेडिटेशन केवल मेडिटेशन नहीं है, बैठ गए आंख बंद करके और मन कहीं और भटक रहा है, वो नहीं है। मेडिटेशन है श्वास को देखना, जो प्राण का आवागमन है हमारे शरीर में जो हो रहा है उसको देखना, उससे अलाइन होना। तो इसीलिए ये कई प्रकार के रोगों को भी ठीक करता है
3: जी। और गुरु मुनेश सेना जी, आप तो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं, आप ध्यान करवाते हैं और स्वयं भी ध्यान में रहे हैं, तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, किस प्रकार की दिव्य अनुभूति ध्यान से हमें हो सकती है।
0: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है आप कहां जाना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ अगर स्टक हो गई है, आप बिल्कुल जैसे मानो कि अंधेरी कोठरी में आपकी जीवन बिल्कुल सिमट गई है, आपको लग रहा पता नहीं चल रहा आप क्या करें, आप ध्यान करना शुरू करें। मैंने अपने जीवन में न जाने हजारों लोगों को ध्यान करवाया है, और कई लोग ध्यान की सिर्फ वो शरीर में ही नहीं, आपके पूरे जीवन के हर क्षेत्र के रास्ते को खोल देता है। सारी अपॉर्चुनिटी इन्फॉर्मेशन जो भी वेव्स में अभी तरंगित हैं, द मोमेंट आप ध्यान करते हो, द मोमेंट आप साइलेंस में जाते हो, द मोमेंट आप अव्यक्त स्वरूप में जाते हो, इमीडिएटली आपका सोर्स बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाता है और आपके लिए बनी जो भी इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया में है आप स्वयं उसको अट्रैक्ट करने लगते हो। सारी चीजें मेरी खुद की लाइफ बताऊं कि मेरी स्पाइन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, वो मैं किसी की हील कर रहा था और वो एम्स के डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक नहीं हो सकते, आपको ऑपरेशन कराना ही कराना होगा। मैंने सिर्फ ध्यान करके उस स्पॉट पे एक प्रकाशित सूर्य को देखा, प्रकाशित शिवलिंग को देखा और विद इन 3 मंथ्स मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं ध्यान के, जैसा कि अभी मैम कह रही थी कि ध्यान से आप अपने पूरे जीवन का उत्तर पा सकते हो, आंसर पा सकते हो। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए ना, आप सिर्फ ध्यान करना शुरू करो, आपकी पूरे जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी, आपका सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा, आप रिएक्टिव कम हो जाओगे, आप रिस्पॉन्सिव ज्यादा हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान आपके परम स्वरूप से जोड़ता है और जो परम स्वरूप है ना वही आदि स्वरूप है, वही शिव है, वही अनंत है, वही चैतन्य है
3: जी। आदि योगी से हमें जोड़ता है हमारा ध्यान। और यहाँ पर अब प्रार्थना शांति मंत्र का पाठ किया जा रहा है।
4: दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों
3: पर। जैसा कि हमने कहा कि हमारी संस्कृति जो है
4: और धीरे
3: इसकी धीरे ये अद्भुत बात है, ये विशेषता है कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रकृति की शांति की कामना करते हैं। और मैं गुरुजी आपकी बात जब सुन रही थी तो ये भाव मन में आया कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम नेचर के साथ अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम पंच तत्वों की बात करते हैं और साथ ही हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं। तो आपने जैसा कि बताया कि ध्यान हमें खुद से जोड़ता है और कहीं ना कहीं ध्यान में मैं ये सब पा रही हूँ जो आपने कहा कि हमारे बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल होते हैं उनके जवाब हमें अपने आप मिलने लगते हैं और आप एक नेट की तरह हो जाते हैं। आपने कहा कि विश्व में जो कुछ भी हमारे लिए निर्धारित है वो स्वयं हम तक पहुंचने लगता है। तो बहुत ही अद्भुत बात आपने ये कही ध्यान से जुड़ी हुई।
2: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज नाउ मेकिंग हिज वे टुवर्ड्स द एग्जिट ऑफ द रेड रोड एंड एवरीवन हु वर प्रेजेंट हियर एंड हु वर लेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन द ओकेजन ऑफ द 12th International Day of Yoga really felt touched when the Prime Minister himself went to every enthusiast and guided them in doing the asanas in the correct manner. This was indeed a great celebration at the iconic Red Road in Kolkata, where more than 3 lakh people had assembled to perform the yogasanas and were led by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
3: Ji, jal, thal, nabh, sabhi yog mein honge. Hum jante hain ki Bharat mein to suryodaya jab ho raha hai, to humne namaskar kiya hai aur saath hi yoga abhyas kiya hai. Duniya ke aise bahut sare desh hain jin mein jahan jahan Bharatiya dutawas hain, unki or se vishesh ayojan honge. Aur ab kyunki bahut sare desh duniya ke yog ko apna चुके हैं, पहले से योग प्रचलित रहा है, कभी हम इसे जिम में होता देखते हैं, कभी वेलनेस सेंटर में देखते हैं और इंजर्ड होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट हमें जिस तरह की एक्सरसाइज बताता है वो हमारे योगासनों से ही प्रेरित होती है। तो योग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है लेकिन अब ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत ने दुनिया को योग दिया है और आधिकारिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किए और यूएन यूनेस्को ने इसे माना कि भारत का ये उपहार विश्व के लिए अनूठा है और आज संघर्षों से भरी हुई इस दुनिया में बेहद जरूरी भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि योग को हम केवल एक दिन का उत्सव ना बनाएं बल्कि इसे अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ें।
2: योगा 365, that is what the honorable prime minister had mentioned and we would also like to inform our listeners that as the Honorable Prime Minister has mentioned that the gift of India was just not only Lord Buddha or peace but also yoga. And this yoga has been practiced by Indians since times immemorial it is as old as our civilization, which is more than 5,000 years old. And today, as Neelam rightly mentioned, that the entire world has accepted yoga, has embraced yoga, as it promotes not only healthy lifestyle, but also healthy mental lifestyle. It brings about a total balance in healthy living. And Guru Munish Sinhaji, you were mentioning about the importance of meditation. So how do a layperson begin to meditate, if you can inform our audience?
0: Yes, so

सबसे पहले मैं जो लोग ध्यान करना चाहते हैं या ध्यान की दुनिया में आना चाहते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में वो ना जाएं, सिर्फ स्टैचू बनके 10 मिनट रोज एक महीने की प्रैक्टिस करें। एक समय चुनें 10 मिनट या 15 मिनट, वो सिर्फ स्टैचू हो जाएं।

0: मन की मन आपकी आंखों की आंख जो आपके अंदर है वो बहुत सारी वृत्तियों को देखेंगी। कई सारे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इमेजिनेशन देख रहे हैं, आप कपड़े देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, ये सारी आपके मनसपटल के इसमें चलती चली जाती हैं। आपको सिर्फ उसको देखते रहना है और ये कहना है कि आई एम ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ दिस, मैं एक विटनेसर हूं जो हमारे मन के पटल पे चल रहे सारे पिक्चर्स को मात्र देखने वाला हूं, मैं एक दृष्टा हूं। द मोमेंट आप दृष्टा के भाव में जाते हैं तो आपका आपके मन से कनेक्शन दूर हो जाता है, आप शरीर और मन से अलग एक प्योर कॉन्शसनेस हो जाते हैं, जहां पे आपका शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी कॉन्शसनेस में विलय हो जाता है। जैसे ही आप इस अस्तित्व में जाते हैं तो समझने वाला और समझ एक हो जाता है। फिर पता चला शरीर और मन जो अभी विचार देख रहे थे, विचार को देखने वाला, ये सारी चीज एक हो जाती है। फिर थोड़े ही टाइम में आपके विचार आने खत्म होने शुरू हो जाते हैं और फिर बचता है तो एक प्योर कॉन्शसनेस जो सिर्फ कहते हैं बीइंग होने का एहसास, इसीलिए ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं कहते। ह्यूमन जितने भी इस पूरी पृथ्वी पे, जगत पे जितनी भी सृष्टि में लोग हैं उनको ह्यूमन बीइंग कहा गया है, इसीलिए कि वो अपने अस्तित्व के उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएं। द मोमेंट उस सोर्स से वो कनेक्ट होते हैं तो वो जाने अनजाने में इस पूरी ब्रह्मांड के अनंत के एक पार्ट बन जाते हैं और वो अनंत फिर उनके पूरे अस्तित्व में डोमिनेट करने लगता है। शरीर की जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो वर्ल्डी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 25% ऑपरेट करने के लिए वो रहता है, बाकी उसके पूरे अस्तित्व में 75% उस प्योर कॉन्शसनेस की रेडिएशन, उस प्योर कॉन्शसनेस की लाइट रेडिएट हो जाती है। इसलिए ध्यान तो मैं कहूँगा कि हर आदमी को, हर इंसान को, अगर वो इस पूरी जगत का भला चाहते हैं, इस पूरे विश्व का भला चाहते हैं तो ध्यान करें, इससे हमारा कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होगा और कलेक्टिव कॉन्शसनेस से हमारी प्रकृति रेज होंगी। हमारा जो आज ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म और ये सारी चीजें हम विश्व में देख रहे हैं, ये सारी चीज हो ही रही है कि हम अपने से दूर चले गए हैं। अगर इस प्रयास पे जो आज प्रधानमंत्री जी ने 21 जून का ये दिन इतना सुंदर चुना है कि पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस एक हो रही है, और ये पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस जब एक होती है तो प्रकृति की भी कॉन्शसनेस एक होती है, क्योंकि हम और प्रकृति अलग नहीं है, जो हम है वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही हम है।
1: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। और ध्यान के बारे में हमने सुना है कि जब ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक यंत्र मात्र हैं और प्रकृति प्राण के रूप में हम में बह रही है, हमारे थ्रू बह रही है। और ये भी हमने कहीं पढ़ा कि हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से चलते हैं लेकिन ध्यान हमारे सबकॉन्शियस को भी जागृत करता है, और असीम जो ताकत हमारी है किसी भी कार्य को करने की, समझने की, वो हमें देता है। कुछ पंक्तियां यहाँ पर मुझे याद आ रही हैं। स्वयं से स्वयं की मुलाकात है योग, बिखरे हुए अंतस की नई शुरुआत है योग, तन को जो साधे, मन को जो शांत करे, मानवता के कल्याण की पावन सौगात है योग, ऋषियों की वो खोज जो वेदों से आई है, आज विश्व ने इसकी शक्ति मानी, अपनी श्रद्धा दिखाई है।
2: Yes, and as Guru Munish Sinha ji mentioned, and as you also mentioned, Neelam ji, that today we saw the Honorable Prime Minister lead the nation in performing yogasana at the Red Road, Kolkata. But at the same time also, yoga was just not restricted onto the land. The Indian Navy, the Indian Coast Guard and other units also performed yogasanas aboard the naval ships and Coast Guard ships, and also adjacent to Red Road, there flows the river Ganga, which is also known as Hooghly, and on 500 boats, yoga enthusiasts performed yogasanas there, and in the wonderful mangrove of Sundarbans also, people performed yogasanas on board their boats and yachts. And in the mighty Himalayas, the men who guard us are vanguards of the borders. The Indian Army personnel, the ITBP personnel and others also performed yogasanas there. and also our border security force personnel.

0: performed yogasana on the Thar desert. So this is what the uniqueness of International Day of Yoga is all about, that brings together all Indians across all walks of life to perform this particular yogasana, which is our mantra for healthy aging and to stay fit both physically and mentally.
1: जी, जैसा कि हमने कहा कि जल थल नभ सभी आज योग में होंगे और अलग अलग जगह पर विभिन्न विद्यालयों में, कार्यालयों में, संस्थानों में योग के विशेष आयोजन होते रहे हैं इन दिनों. माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग 365 का उल्लेख किया, योग पार्क जो है वो डेडिकेटेड किए गए हैं, योग को समर्पित किए गए हैं. 100 दिनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े. माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 130 देशों से प्रतिभागी इसमें शामिल हुए. और हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि 14 जून को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है. देशव्यापी योग सत्र में एक साथ 4 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है और ये ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे देश की, कि हम एक साथ एक भाव से जहां खड़े हो जाते हैं. हमारे पास संख्या बल भी इतना है, जनमानस का जो आत्मिक बल है वो भी इतना है कि जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना लेते हैं. और हम अक्सर देखते रहे हैं कि अलग अलग जो आयोजन है उनकी जो स्मृति है वो संजो कर रखी जाती है. तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए हैं और कोलकाता तो आज एक विशेष रंग में रंगा हुआ है. स्थान स्थान पर योगाभ्यास वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंडीज लगे हैं. आज मेट्रो ने भी सुबह 4 बजे से पूरी रफ्तार से दौड़ लगाकर योग साधकों की सेवा की है. और जैसा कि आपने कहा कौशिक जी कि हमारी नदियां जो हैं उन पर जो नाव सजती रहती हैं उन्होंने भी आज एक अलग रूप दर्शाया है कि उन पर योगाभ्यास किया गया है. और पूरे देश में विशिष्ट 100 स्थानों पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा. मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं. और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा है क्योंकि योग जो है वो कोई आयोजन नहीं है, सभी का ये एक आत्मिक पल बन गया है, सभी की एक निजी उपलब्धि है आज के इस आयोजन में शामिल होना. विश्व भर में 2500 से ज्यादा स्थानों पर उत्सव के रूप में आज योग किया जाएगा और हम उन सभी विदेशियों को भी नमन करते हैं जो हमारे इस गर्व में शामिल हैं. आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया. इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग. आपने आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से ये प्रसारण सुना. मार्गदर्शन रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स. मैं नीलम मलकानी अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से आप वहां पर सलाहकार, डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं. सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूँ. नमस्कार.
2: नमस्कार.
3: अभी आप रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित हुए सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन रहे थे. विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में. कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ. ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया. 8 बजने को हैं. अब कुछ पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे.

0: नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योग अभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयरलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुई। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।

0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रही हैं हमारे संवाददाता आनंद।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
2: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्मचेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रह तटीय रक्षा के लिए टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
4: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय ध्वज वाले तीन टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिस 2026 का आज समापन होगा। मिस के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
6: धन्यवाद भरत। एनटीए ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट यूजी पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्धि योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की सुस्ती टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा। दुनिया में योग का बिजनेस 12 लाख करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस। हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
0: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने होर्मोज जलडमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: registered on Yoga Sangam portal, reflecting unprecedented public participation in this year's celebration. Internationally, more than 210 Indian missions are organizing yoga events at nearly 2,500 locations across the world through coordinated efforts of the Indian Council for Cultural Relations. Rohan, Akashwani News, Delhi.
1: President Draupadi Murmu was chief guest at the state-level International Yoga Day program in Jabalpur, Madhya Pradesh today. The event was held at Garrison Ground in Sadar. In Saudi Arabia, more than 500 participants gathered in Riyadh yesterday to celebrate the International Day of Yoga, highlighting the growing popularity of yoga in the country and its role in promoting health and well-being. The event, organized by the Indian Embassy in Riyadh in collaboration with the Saudi Yoga Committee and local partners, was held at the Prince Faisal bin Fahd Olympic Complex. Yoga enthusiasts across several Western countries practiced yoga in large groups yesterday ahead of International Day of Yoga today. In Canada's Toronto, an enthusiastic gathering of government representatives, diplomatic corps, yoga practitioners, wellness organizations and community leaders participated in a yoga session against the historic backdrop of the Legislative Assembly of Ontario. In Brazil, a curated yoga session was led by the Ambassador of India to Brazil, Dinesh Bhatia, at the majestic Foz do Iguaçu waterfalls. Prime Minister Narendra Modi will commission three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata today. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. We have a report from our correspondent.
2: INS Duragiri, a Project 17A stealth frigate, is armed with BrahMos missiles and medium-range air defense systems. INS Sanshodhak is a survey vessel designed for coastal and deep-water hydrographic operations, while INS Agra is an anti-submarine warfare craft equipped with torpedoes, rocket launchers and sonar systems for coastal defense. The Navy said the vessels have more than 75% indigenous content and involved over 200 micro, small and medium enterprises, highlighting the growth of India's domestic shipbuilding industry. Shondipan Dashgupta, Akashwani News, Kolkata.
1: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on IX handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination will be conducted today. It will be held across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The examination will be held in the afternoon from 2 to 5.15 p.m. The examination is being conducted in English and 12 Indian languages. Ahead of the examination, the National Testing Agency, NTA, conducted nationwide mock drill yesterday to verify all systems, jammers, CCTV, frisking staff and biometrics. The NTA said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the examination. Our correspondent has the details.
3: Over 2 lakh personnel, including observers, coordinators, police forces and administrators, have been deployed for the secure, transparent and smooth conduct of the examination. A multi-layered security framework has been put in place to ensure a fair and transparent examination. It includes CCTV surveillance, Aadhaar-based biometric verification, GPS-enabled vehicles with police escort for the movement of the examination material, and end-to-end secure handling of confidential materials to designated locations under sealed protocols. The NTA is also actively monitoring social media platforms to curb misinformation and prevent malpractice. Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
1: Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal, has said that three Indian-flagged crude oil tankers carrying over 8.6 lakh metric tons of cargo with 94 Indian crew members have successfully transited the Strait of Hormuz yesterday and are en route to India. These oil tankers are Desh Vaibhav, Desh Vibhor and Sanmar Herald. In a social media post, he said that under the decisive leadership of Prime Minister Narendra Modi, the government is working on highest priority to secure India's maritime interests. The India Meteorological Department has issued a red colour warning for extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. It also predicted heavy to very heavy rainfall at isolated places over Assam and Meghalaya till Thursday. Northeastern states are expected to receive fairly widespread to widespread rainfall till the 26th of this month. As part of a series, People's Padma on Akashwani, we bring you a conversation with Professor Juzair Vasi, a pioneer in the field of semiconductors and solar photovoltaics. He has been honored with the prestigious Padma Shri.
4: India is emerging as one of the biggest major solar deployers, and I can see that we are going to also emerge as a major manufacturer of solar components.
1: To listen to the interview, tune in to 100.1 Akashwani Gold today at 10:30 a.m. You'll also listen to this interview on the News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. As part of our series, Prakriti Ki Baat, Akashwani Ke Saath, we bring you a discussion on the efforts of Jhumarmur Panchayat in Nagaon district of Assam, which has been recently awarded the National Panchayat Award in the Clean and Green Panchayat category. To listen to the conversation, tune in to 100.1 Akashwani Gold today at 9:10 a.m. You can also listen to this discussion on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. India A will take on Sri Lanka A in the Tri-Series cricket final, scheduled to be played in Dambulla today. The match will start at 10 in the morning. Smarting from an ill-tempered defeat in their previous match, India A will look to settle scores when they take on Sri Lanka A in the final, with teenage sensation Vaibhav Suryavanshi set to be in the spotlight once again. In FIFA World Cup, Germany defeated Ivory Coast 2-1 in Toronto, Canada, and clinched a spot in the knockout phase at the tournament. For Germany, Dennis Undav scored twice. Earlier, the Netherlands secured a commanding 5-1 victory over Sweden in Group F match at NRG Stadium in Houston, United States. Yesterday, in another match, Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
5: Thank you, Sunil. NEET UG re-examination is the top story on dailies today. All hands on deck for NEET retest, writes Hindustan Times. 1.38 lakh CCTV, 51,000 jammers for leak-proof NEET today, headlines The Asian Age. The war between Iran and Israel too continues to dominate front pages of dailies. Iran closes Hormuz amid Israeli attacks on Lebanon, reads the Hindu headline. On the 12th International Day of Yoga 2026, the Pioneer writes that 6 lakh people will perform yoga today with Prime Minister Modi in Kolkata. Two studies led by AIIMS have found that yoga may improve women's hormone and insulin levels, reports the Times of India. An AI-enabled queue management system will be implemented in Kerala's Sabarimala Ayyappa Temple from November, reports the Hindu. In just over 3 months, from the end of February until early June, Indian records in athletics were broken 20 times, reveals the Indian Express. And finally, the ASI has made significant discoveries at Rakhigarhi, perhaps the largest site of the Indus Valley civilization, with the recovery of 8 skeletons and pottery offerings, reports the Tribune. DNA testing is underway. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. International Yoga Day being celebrated across the globe today. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in practicing common yoga protocol from historic Red Road in Kolkata. Prime Minister to also commission 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata today. National Testing Agency to conduct NEET UG examination in India and abroad this afternoon. 3 Indian flagged crude oil tankers carrying over 8.6 lakh metric tons of cargo successfully crossed Strait of Hormuz. IMD issues red alert for extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in cricket, India A to take on Sri Lanka A in Tri-Series final in Dambulla this morning. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
6: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। आज दुनिया भर में योग का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में तारीखी रेड रूट से मुश्तरका योग प्रोटोकॉल अपनाने में मुल्क की क़यादत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में तीन बहरी जंगी जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS आग्रह को पानी में उतारकर बहरिया में शामिल करने की रस्म भी अंजाम देंगे। इम्तिहान मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी आज सह पहर भारत और बैरून मुल्क में NEET UG के दोबारा इम्तिहान मुनाकिद कराएगी। भारतीय परचम बरदार तीन ऑयल टैंकर्स ने कामयाबी के साथ अब नए हुरमुज पार कर लिया है, जिसमें 8.6 लाख से ज्यादा मेट्रिक टन तेल लदा है। महकमा मौसमियात ने आज जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में आज सुबह डम्बुला में तीन मुल्कों की सीरीज के फाइनल में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अब खबरें तफसील से। आज भारत और दुनिया भर में योग का 12वां आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज योग का मौजू है सेहतमंदी बढ़ती उम्र के लिए योग। इससे सेहतमंद, सरगर्म और बावकार बढ़ती उम्र की खातिर योग को जिंदगी भर अपनाने की अहमियत उजागर होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में तारीखी रेड रोड से योग के बारे में बैनर अक्वामी दिन की कौमी तकरीब की क्यादत की, जहां आज सुबह हजारों लोग सुबह से ही योग आसन में उनके साथ शामिल हुए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि योग महज जिस्मानी वर्जिश नहीं है और न किसी उम्र के लोगों तक महदूद है, ये इंसानी जज्बे का इजहार है।
7: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
6: वजीर आजम ने कहा कि हमें योग को किसी मखसूस मौके तक महदूद नहीं रखना चाहिए, इसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
7: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
6: 2015 में योग के आलमी दिन के शुरू होने के बाद वजीर आजम ने नई दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, मैसूर, न्यूयॉर्क, श्रीनगर और विशाखापट्टनम समेत मुख्तलिफ मकामात से योग तकरीबात की क्यादत की। बहुत से मरकजी वजरा, रियासती वजरा और सीनियर अहलकार भी योग के दिन की तकरीबात में हिस्सा ले रहे हैं, जिसका एहतमाम मुल्क भर में किया जा रहा है। कौमी तकरीब से सेहत, हम आहंगी और इज्तिमाई बहबूद को फरोग देते हुए एक आलमी तहरीक के तौर पर योग के बढ़ते हुए रोल का इयादा होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
8: योग के आलमी दिन की शानदार तकरीब में आज मुल्क व बैरून मुल्क में लोग पूरे जोश व खरोश के साथ इसमें शिरकत कर रहे हैं। सकाफत की वजारत भारत के महकमा आसार कदीमा के इश्तराक से 100 आइकॉनिक मुकामात पर योग के खसूसी प्रोग्रामों का एहतमाम कर रही है और भारत की मालामाल सकाफती विरासत को उसकी पायदार योग रिवायात के साथ जोड़ रही है। बड़ी तकरीबात नई दिल्ली में लाल किला, हरिद्वार, कोनार, हम्पी, महाबलीपुरम, मुंबई, नालंदा, अहमदाबाद, सारनाथ, ले, हैदराबाद और सिलचर समेत 12 अहम मुकामात पर मुनाकिद की जा रही हैं। आयुष की वजारत ने कहा है कि 6 लाख से ज्यादा तंजीमों ने योग संगम पोर्टल पर इंदराज कराया है, जिससे इस साल की तकरीबात में अवाम की बेमिसाल शिरकत की अक्कासी होती है। بین الاقوامی سطح پر 210 سے زیادہ بھارتی مشن ثقافتی تعلقات کے لیے بھارتی کونسل کی مضبوط کوششوں کے ذریعے دنیا بھر میں تقریباً 2500 مقامات پر یوگ تقریبات کا انعقاد کر رہی ہے. دلی میں یوگ تقریبات کئی اہم مقامات پر منعقد ہو رہی ہیں. نیز یوگ تقریبات شانتی پت، کرتویہ پت، نیو موتی باغ، کناٹ پلیس میں، سینٹرل پارک، تال کٹورا گارڈن اور یمنا اسپورٹس کمپلیکس میں منعقد ہو رہی ہیں. دلی سے روہن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
6: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج مدھیہ پردیش کے جبل پور میں ریاستی سطح کے یوگ کے عالمی دن کے پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. یہ تقریب سادر میں گیریسن گراؤنڈ میں منعقد ہوئی تھی. یوگ کے دن کی تقریب کے بعد صدر جمہوریہ رانی درگاوتی یونیورسٹی پہنچیں گی جہاں وہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے یونیورسٹی کے 36ویں تقسیم اسناد کی تقریب میں شرکت کریں گی. گورنر منگو بھائی پٹیل بھی اس تقریب میں شرکت کریں گے. بعد میں صدر جمہوریہ کورو نیشنل پارک جائیں گی جہاں وہ سہریا قبائلی برادری، چیتا ٹریکرز اور پارک کی فیلڈ ٹیم کے ارکان سے ملاقات کریں گی. یوگ کا 12ویں سالانہ بین الاقوامی دن منانے کے لیے قومی راجدھانی خطے میں بہت سے مرکزی وزراء اور تنظیمیں یوگ سیشنز میں شرکت کر رہی ہیں. صحت کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے آج شانتی پتھ میں یوگ کے دن کی تقریبات میں شرکت کی. اس موقع پر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے یوگ کو عالمی سطح پر لے جا کر زبردست خدمات انجام دی ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج یوگ کے 12ویں سالانہ بین الاقوامی دن کے موقع پر نئی دلی کے نہرو پارک میں یوگ تقریب میں شرکت کی. اس تقریب میں بھارت میں ناروے کے سفیر مے ایلن اسٹینر بھی شامل ہوئے. کھیلوں کے مرکزی وزیر منسوخ مانڈویا نے نئی دلی میں جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں یوگ کے عالمی دن کی تقریبات میں حصہ لیا. اداکار اکشے کمار یوگ سیشن کھیلوں کے وزیر کے ساتھ شامل ہوئے. برہما کماری تنظیم نے بھی نئی دلی میں لال قلعے پر یوگ کے عالمی دن کی تقریب منائی. اتر پردیش میں آج یوگ کے عالمی دن کے موقع پر خصوصی یوگ پروگرام منعقد کیے گئے. گورنر، وزیر اعلیٰ، نائب وزیر اعلیٰ، قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر، قانون ساز کونسل کے چیئرمین اور ریاست کے سبھی وزراء نے مختلف ضلعوں میں منعقد یوگ تقریبات میں شرکت کی. سعودی عرب کے ریاض شہر میں 500 سے زیادہ شرکا نے کل یوگ کے عالمی دن کے موقع پر منعقدہ تقریب میں شرکت کی جس سے ملک میں یوگ کی بڑھتی مقبولیت اور لوگوں کی زندگی میں صحت اور تندرستی کو فروغ دینے میں اس کے رول کی عکاسی ہوتی ہے. آج یوگ کے عالمی دن سے پہلے کل مغربی ممالک میں یوگ سے دلچسپی رکھنے والے افراد نے بڑے گروپوں میں یوگ کی ورزش کی. کینیڈا کے ٹورنٹو میں اونٹاریو قانون ساز اسمبلی میں سرکاری نمائندوں، سفارتی تنظیموں، یوگ کی مشق کرنے والوں اور تندرستی سے متعلق اداروں اور کمیونٹی رہنماؤں نے یوگ کے ایک پرجوش مشق میں حصہ لیا. وزیر اعظم نریندر مودی آج کولکاتہ میں بھارتی بحریہ کے پلیٹ فارمز میں دیسی ٹیکنالوجی سے تیار کیے گئے 3 بحری جنگی جہازوں INS دوناگری، INS سنشودھک اور INS اگرہ کو پانی میں اتار کر بحریہ میں شامل کرنے کی رسم انجام دیں گے. بحریہ کے وارشپ ڈیزائن بیورو کے ذریعے ڈیزائن کیا گیا اور گارڈن ریچ شپ بلڈرز اینڈ انجینئرز کے ذریعے تیار کیے گئے یہ تینوں بحری جہاز لڑنے کی کاروائیوں کی صلاحیتوں کو مستحکم کریں گے. اس کے علاوہ یہ ہائیڈروگرافک سروے اور بحری آبدوز شکن جنگی صلاحیت کو بھی مستحکم کریں گے. INS دوناگری ایک پروجیکٹ 17A اسٹیلتھ فریگیٹ ہے جس کا مقصد برہموز میزائلز اور درمیانی دوری کی فضائی دفاعی نظام سے لیس کیا گیا ہے. INS سنشودھک ایک نگرانی کرنے والا جہاز ہے جو ساحلی اور گہرے پانی میں ہائیڈروگرافک آپریشن کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جبکہ INS اگرہ ایک آبدوز شکن جنگی بحری جہاز ہے جسے ٹارپیڈوز، راکٹ لانچرز اور سونار نظام سے لیس کیا گیا ہے. یہ ساحلی دفاع کے لیے تیار کیا گیا ہے. یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے. قومی اہلیت اور داخلے کا ٹیسٹ نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان آج کرایا جائے گا. نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان بھارت میں 551 شہروں اور بیرون ملکوں کے 14 شہروں میں منعقد ہوگا جس میں 22,79,000 سے زیادہ امیدوار امتحان میں بیٹھیں گے. امتحان انگریزی اور 12 بھارتی زبانوں میں منعقد کرائے جا رہے ہیں. امتحان سے قبل امتحان کرانے والی قومی ایجنسی NTA نے سبھی نظام، جیمرز، CCTV، تلاشی لینے والے عملے اور بائیو میٹرک کی تصدیق کرنے کے لیے کل قومی پیمانے پر ماک ڈرل کا انعقاد کیا تھا. एनटीए ने कहा है कि वो साफ शफाफ और खुश उसलूबी से इम्तिहान मुनाकिद कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
8: नीट के इम्तिहान को साफ शफाफ और खुश उसलूबी से कराने के लिए मुशाहिदीन, कोऑर्डिनेटर्स, पुलिस फोर्सेज और मुंतजमीन समेत 2 लाख से ज्यादा अमले को तैनात किया गया है। साफ शफाफ और मुनसिफाना इम्तिहान को यकीनी बनाने के लिए एक कसीर सतही सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी तैनात किया गया है। इसमें सीसीटीवी, निगरानी कैमरे, आधार पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक, सील बंद प्रोटोकॉल के तहत मखसूस मकाम पर खुफिया इम्तिहान से मुतालिक साजो सामान को महफूज तरीके से हवाले करने और इम्तिहान से मुतालिक साजो सामान की नकलो हमल के लिए GPS से लैस गाड़ियां शामिल हैं। NTA गलत मालूमात को रोकने, बेजाबतगी खत्म करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से निगरानी भी कर रही है। नीट के इम्तिहान आज 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक मुनक़िद होंगे। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
6: बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि 8.6 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा की खेप के साथ भारतीय परचम बरदार खाम तेल के 3 टैंकर्स ने कल आबनाए हुरमुज को कामयाबी के साथ पार कर लिया है और अब वो भारत आ रहे हैं। इन टैंकरों में भारतीय अमले के 94 अफराद सवार हैं। इन टैंकरों के नाम में देश वैभव, देश विभोर और सेमर हेराल्ड हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सोनोवाल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की फैसला कुन क़यादत में हुकूमत भारतीय बहरी मफादात के तहफ्फुज़ को सबसे ज्यादा तरजीह देने पर काम कर रही है। जनाब सोनोवाल ने कहा कि उनकी वजारत भारतीय मल्लाहों और तवानाई की लाइफ लाइन्स को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने की जमानत के लिए तमाम मुतल्लिका एजेंसियों के साथ सरगर्म तरीके से तालमेल कायम कर रही है। 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल MIFF आज इख्तिताम पजीर हो जाएगा। 10 आवेजी फिल्मों, शॉर्ट फिक्शन, एनिमेशन और AI सिनेमा का ये 2 साला फेस्टिवल 15 जून को शुरू हुआ था और आज रात एक शानदार इख्तितामी तकरीब के साथ खत्म होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
8: सिनेमा के शानदार रंगों से भरे 5 दिनों के बाद मिर 2026 आज इख्तिताम पजीर होगा। ताहम इख्तितामी तकरीब से पहले फिल्म शायकीन के पास मुख्तलिफ सेक्शंस में प्रिज्म, बेस्ट ऑफ फेस्ट, नेशनल कंपटीशन, मोजेक और इंडिया लाइव्स एंड लैंडस्केप्स के तहत गैर फिक्शन कहानियों की ताकत का तजर्बा करने का एक और दिन होगा। मिर के आखिरी दिन की अहम तरीन पेशकश में से एक वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट की स्क्रीनिंग होगी, जो इस लेजेंडरी फिल्म साज की 125वीं सालगिरह के मौके पर दिखाई जा रही है। आशा मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में मुनाकिद होने वाली इख्तितामी तकरीब में बैनर अक्वामी और कौमी मुकाबलों के जुमर में बेहतरीन फिल्मों को 18 अवार्ड दिए जाएंगे। मुंबई से अंकित आपटे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
6: भारतीय महकमा मौसमियात ने आज जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में और बहुत तेज बारिश के सबब रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने जुमेरात तक असम, मेघालय में इक्का दुक्का मकामात पर भी तेज बारिश की पेशगोई की है। क्रिकेट में आज डिम्बोला में खेली जाने वाली 3 मुल्कों की सीरीज के फाइनल में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अपने साबिका मैच में शिकस्त को भुलाते हुए इंडिया ए श्रीलंका ए को हराने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
3: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने आज योग के आलमी दिन से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रसाद की सिलसिले में शह सुर्खी है, आयोग के बैन अक्वामी दिन के मौके पर आयुष की वजारत ने लोगों से बड़ी तादाद में हिस्सा लेने की अपील की। अखबार इंकलाब की शह सुर्खी है, सख्त सिक्योरिटी के दरमियान नीट इम्तिहान, शफाफ और नकल से पाक, इम्तिहान के लिए मरकज और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बड़ी तैयारियां। अखबारात ने उड़ीसा में वजीर आजम के हाथों 47,600 करोड़ रुपए के मंसूबे का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखे जाने से मुतल्लिक खबर को नुमायां तौर पर शाया किया है।
6: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। आज दुनिया भर में योग का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में तारीखी रेड रूट से मुश्तरका योग प्रोटोकॉल अपनाने में मुल्क की क्यादत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में 3 बहरी जंगी जहाजों INS दुनागरी, INS संशोधक और INS अग्रह को पानी में उतार कर बहरिया में शामिल करने की रस्म भी अंजाम देंगे। इम्तहान मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी आज से पहले भारत और बैरून मुल्क में नीट UG के दोबारा इम्तहान मुनाकिद कराएगी। भारतीय परचम बरदार 3 ऑयल टैंकर्स ने कामयाबी के साथ आबनाए हुरमुज पार कर लिया है, जिसमें 8.6 लाख से ज्यादा मैट्रिक टन तेल लदा है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
9: मिनीवेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
10: बिहार के सभी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के भाइयों व बहनों ध्यान दें, जहां हो आपके हक की बात सहायता कॉल सेंटर दे आपका साथ हर बार। अगर आपको चाहिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से जुड़ी किसी भी योजना की जानकारी या अपनी शिकायतों का समाधान तो डायल करें टोल फ्री नंबर 1800-345-6345।
11: सभी दिवस पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सहायता आपके हक और तरक्की का साथी।
10: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
12: बहू जी मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है
13: तो लेन देन
12: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
13: ओ
12: जैसे UPI से।
13: अच्छा
12: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
13: वो क्या है मम्मी जी?
12: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
13: आम भी ना मम्मी जी।
14: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
12: हर लेन देन अब है आसान।
15: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। योग दिवस पर पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित हुआ मुख्य समारोह। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत बड़ी संख्या में लोगों ने किया सामूहिक योगाभ्यास। देश भर में नीट यूजी की परीक्षा आज दोबारा आयोजित की जा रही है। प्रदेश के 34 जिलों में बने केंद्रों पर 1,56,000 से अधिक परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल। और जदयू की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की बैठक आज पटना में, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।

0: का स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का प्रतीक है, जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित योग शिविर में योगाभ्यास किया। योग शिविर में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी योगाभ्यास किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मुजफ्फरपुर में, नित्यानंद राय उजियारपुर में और सतीश चंद्र दुबे वाल्मीकि नगर में योग कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से भी योग शिविर के साथ योग दिवस पर अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पटना उच्च न्यायालय में भी इस अवसर पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुंगेर, शेखपुरा और अररिया समेत सभी जिलों के शैक्षणिक संस्थानों में भी योग शिविर आयोजित किए गए। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। यह परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। वहीं परीक्षा के लिए राज्य के 34 जिलों में 331 केंद्र बनाए गए हैं। राज्य सरकार ने कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। परीक्षा में 1,56,000 से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। इधर नीट UG पुनर्परीक्षा को लेकर पटना में कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा भवन के आसपास विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है। कई मार्गों पर वन वे ट्रैफिक लागू रहेगा। ट्रैफिक DSP अनिल कुमार ने बताया कि परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए कई मार्गों पर डायवर्जन लागू किया जाएगा।
2: जो बापू परीक्षा सेंटर खास करके है, जहाँ पर जाम की समस्या प्राय हो जाती है, उसके मद्देनजर हम लोग ट्रैफिक की व्यवस्था में कुछ डायवर्जन प्लान बनाए हैं। जो धनकी के तरफ से, चाहे जो पहाड़ी के तरफ से, जितने पिकअप हैं, टेम्पो हैं, ई रिक्शा हैं, 8 बजे के बाद हम उसको डाइवर्ट किए हैं। अगर उनको टाउन में आना ही है तो बिस्कुमान ऊपर है, बिस्कुमान से होके जो कुम्हरार वाला पुल है उससे फिर जा सकते हैं टाउन में। जो भी बस धनकी पर आएंगे, जो गांधी सेतु की तरफ से आते हैं, चाहे जो पूर्वी दिशा से टोल प्लाजा की ओर से आते हैं, न्यू बाईपास होकर, मीठापुर होकर, गांधी मैदान, चाहे कहीं भी अन्यत्र जाना है तो जाएंगे। धनकी से या बिस्कुमान से कोई भी बस नीचे, चाहे कोई भी कॉमर्शियल गाड़ी, जब तक एग्जाम होगा उस पीरियड में जाने की अनुमति नहीं होगी।
1: इधर परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग की ओर से विशेष बसों का परिचालन किया जा रहा है। साथ ही रेलवे की ओर से भी नीट अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की बैठक आज पटना के कर्पूरी सभागार में आयोजित हो रही है। अलग अलग होने वाली बैठकों में पार्टी की रणनीति और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा होगी। पार्टी

0: राष्ट्रीय महासचिव अशफाक अहमद ने बताया कि सुबह में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसमें परिषद के सभी निर्वाचित पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद राज्य परिषद की बैठक होगी। इधर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि बैठक में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैठक में मंत्री, सभी सांसद, विधायक और MLC मौजूद रहेंगे।
1: यहाँ जो है बिहार प्रदेश जनता दल कार्यालय में राष्ट्रीय परिषद का राज्य परिषद का बैठक होने जा रही है। इसको लेकर हम काफी उत्साहित, सब हमारे पार्टी के जो भी प्रदेश के स्तर के जो भी कार्यकर्ता है, नेता है, सब उत्साहित थे कि बिहार में पहली बार इसके पहले भी हुआ है, लेकिन बिहार में जो है राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है। परिषद के सभी डेलीगेट सभी प्रदेश से आ रहे हैं, उनको यहाँ गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा।
0: राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी पदाधिकारियों की सूची जारी की। नई कार्यकारिणी में 8 उपाध्यक्ष, 5 महासचिव और 6 सचिव बनाए गए हैं। मधुबनी से विधायक माधव आनंद को एक बार फिर प्रधान महासचिव बनाया गया है। अरविंद वाजपेयी को राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा है कि नई टीम सामाजिक न्याय, सुशासन और विकास के एजेंडे को संकल्प के साथ आगे बढ़ाएगी। उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि सरकार उद्योग और निवेश के लिए एक सक्षम, प्रतिस्पर्धी और निवेश के अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पटना में प्रमुख उद्योग संगठनों के साथ समन्वय बैठक में कहा कि हर 30 से 35 दिन के अंदर उद्योग संगठनों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे उद्योग जगत की जरूरतों के अनुसार सरकार को नीति निर्धारित करने में मदद मिलेगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं संयुक्त परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 2027 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने परीक्षा परिणाम जारी करते हुए बताया कि 593 अंक प्राप्त कर श्रद्धा पांडे टॉपर बनी हैं। वहीं 592 अंकों के साथ शशांक गौरव सेकंड टॉपर बने हैं, जबकि आयुष विजय ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2024 में आयोजित 70वीं BPSC संयुक्त परीक्षा के PT में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस परीक्षा में 1282 पुरुष और 745 महिला अभ्यर्थी सफल हुए हैं। टॉप 10 में 5 महिला अभ्यर्थी हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य के विकास में अपना सकारात्मक सहयोग दें। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों से ईमानदारी और निष्ठा के साथ दायित्व निभाने की अपील की है। प्रदेश में जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज अब ऑनलाइन ही मिलेंगे। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। निर्देश में कहा गया है कि ऑफलाइन मोड में दस्तावेज जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग की उपनिदेशक मोना झा ने इस संबंध में कहा है कि सभी प्रकार के राजस्व अभिलेखों की केवल डिजिटल हस्ताक्षरी प्रतियां ही भू अभिलेख पोर्टल के माध्यम से दी जाएंगी। सरकार ने कहा है कि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से जमीन संबंधी धोखाधड़ी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि वर्ष 1996 से अब तक के दस्तावेज डिजिटल कर दिए गए हैं। प्रदेश में मौसम के मिजाज में तेजी से बदलाव आ रहा है। दक्षिण बिहार में तपिश की स्थिति बरकरार है, जबकि उत्तर बिहार के कुछ जिलों में बारिश की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। विभाग ने नवादा और पश्चिम चंपारण जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
2: राज्य के पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर जबकि शेष भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के मध्य एवं पश्चिमी भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के नवादा एवं पश्चिम चंपारण जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भभुआ, भोजपुर और बक्सर जिलों में लू चलने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने नीट परीक्षा से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने नीट परीक्षा पर लिखा है, अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट, मुख्य सचिव और डीजीपी खुद कर रहे निगरानी। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर लिखा है, भरत तिवारी मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच के आदेश। दैनिक भास्कर ने बीपीएससी परीक्षा परिणाम पर लिखा है, 70वीं बीपीएससी में श्रद्धा टॉपर, टॉप 100 में 45 महिलाएं। प्रभात खबर ने केंद्र सरकार के निर्देश को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, लाभ से ज्यादा नुकसान की आशंका वाली 16 एफडीसी दवाएं हुई बैन। राष्ट्रीय सागर लिखता है, पीएम किसान योजना के तहत 9 करोड़ 44 लाख किसानों के खातों में भेजे गए 18,880 करोड़ रुपए। आज अखबार की सुर्खी है, पॉलिटेक्निक संस्थानों में शुरू होंगे नए कोर्स। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। योग दिवस पर पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित हुआ मुख्य समारोह। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत बड़ी संख्या में लोगों ने किया सामूहिक योगाभ्यास। देश भर में नीट यूजी की परीक्षा आज दोबारा आयोजित की जा रही है। प्रदेश के 34 जिलों में बने केंद्रों पर 1,56,000 से अधिक परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल। और जदयू की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की बैठक आज पटना में, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
4: PLI है ना?
5: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
6: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
7: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का।
10: आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
11: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
12: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

AIR at 90. मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ज और FM 100.1 मेगा हर्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नगमे नए पुराने। आरंभ में सुनिए फिल्म हद कर दी आपने का ये गीत उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। गीत आनंद बख्शी के हैं और संगीत आनंदराज आनंद का।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: इज्जत फिल्म का गीत सुनिए, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत लिखा है साहिर ने और संगीत रचना है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: मन फिल्म का गीत सुनिए, उदित नारायण की आवाज में। गीत लिखा है समीर ने और संगीत रचना है संजीव दर्शन का।

गोलमाल फिल्म का गीत सुनिए, लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत रचना है राहुल देव बर्मन का।

सुन रहे थे कार्यक्रम नगमे नए पुराने, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। पेश है बाल मंजूषा कार्यक्रम।

0: जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।
0: बाल मंजूषा के आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी दीदी मुनमुन और हमारे साथ हैं
1: आपका दोस्त ईशान सौम्य।
0: हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अमृतवाणी के साथ। आज की अमृतवाणी में आप सुनेंगे स्वामी विवेकानंद के विचार को। बच्चों, वे कहते थे, सच्ची शिक्षा वही है जो चरित्र का निर्माण करे, मन की शक्ति को बढ़ाए और मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाए। बच्चों, इसका अर्थ है कि शिक्षा आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करती है। शिक्षा हमें केवल किताबी ज्ञान से अवगत नहीं कराती है, बल्कि वे हमारे चरित्र निर्माण में भी सहयोग करती है, आपके मन की शक्ति को बढ़ाती है और किसी भी कार्य को करने में आत्मनिर्भर बनाती है। जब आपके पास ज्ञान होता है तो आपको आत्मविश्वास होता है कि आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। सच्ची शिक्षा का अर्थ है बच्चों कि आप केवल सीखने और जानने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उसे अपने जीवन में आत्मसात करने को प्रेरित भी हो। केवल ज्ञान पाना शिक्षा नहीं होता है, बल्कि उसे अपने जीवन में अपनाकर आगे बढ़ना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। बच्चों, अमृतवाणी के बाद शुरू करते हैं आज की चर्चा। बच्चों, आज 21 जून है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बच्चों, आपने अपने विद्यालय या पार्क में योग तो किया ही होगा। आपको पता है योग क्या है? बच्चों, योग शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में बांधने की एक प्राचीन भारतीय जीवन शैली है। ये सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण कला है। प्रत्येक वर्ष 21 जून को दुनिया भर में स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 21 जून को ही योग दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। योग दिवस की शुरुआत हुई थी 27 सितंबर 2014 में, जब भारत ने UNGA के सत्र में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड 177 देशों का सह समर्थन मिला और 21 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसमें दिल्ली के राजपथ पर आयोजित कार्यक्रम ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। ये दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, जो प्रकृति में ऊर्जा, प्रकाश और संतुलन का प्रतीक है। बच्चों, योगा डे हमें बताता है कि हमारे जीवन में योग को अपनाकर हम अपने लाइफस्टाइल को फ्लेक्सिबल, संतुलित और स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि इसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान शामिल होते हैं, जो शरीर और मन के संतुलन पर जोर देते हैं। मानसिक रूप से योग तनाव को कम करता है और मानसिक स्पष्टता, एकाग्रता को बढ़ावा देता है। बच्चों, योगा की उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले भारत में ही हुई थी। प्राचीन ऋषि मुनियों ने ध्यान और साधना के माध्यम से योग का विकास किया। योग अभ्यास न केवल छात्रों की याददाश्त को तेज करता है, बल्कि भावनात्मक चुनौतियों से निपटने में भी मदद करता है। योग के मूल में आसन, प्राणायाम और ध्यान शामिल हैं। प्रत्येक आसन का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, जैसे रक्त संचार में सुधार, मांसपेशियों को मजबूत करना, मन को शांत करना। उदाहरण के लिए सूर्य नमस्कार आसनों का एक क्रम है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। योग का अभ्यास सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए लाभदायक है। विद्यार्थियों के लिए योग अनुशासन, नियमितता और शैक्षणिक एकाग्रता को बढ़ावा देता है। तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करके योग परीक्षा के दबाव के लिए एक प्राकृतिक उपचार के रूप में कार्य करता है और सहनशीलता का निर्माण करता है। बच्चों, योग की लोकप्रियता इसकी सर्वव्यापकता में निहित है। इसके लिए किसी महंगे उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, बस सुधार की इच्छा और अभ्यास के लिए एक शांत स्थान चाहिए। बच्चों, देखा जाए तो योग का कोई धर्म नहीं है, ये जीवन की एक कला है जिसका लक्ष्य है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। योग के अभ्यास से व्यक्ति को मन, शरीर और आत्मा को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ये भौतिक और मानसिक संतुलन, शांत मन और स्थिर शरीर की प्राप्ति करता है। तनाव और चिंता का प्रबंधन करता है। ये शरीर में पोषक तत्व और उसे मजबूत बनाने और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करता है। इसके द्वारा श्वसन, ऊर्जा और जीवन शैली में सुधार होता है। इससे प्रतिरक्षा तंत्र में सुधार और स्वस्थ जीवन शैली अपनाए रखने में मदद मिलती है। ये एक प्राचीन प्रथा है जो हमें शरीर को शांत और मन को शांत रखने का उपाय सिखाती है। नियमित रूप से योग करने से हमारे जीवन में संतुलन बना रहता है। बच्चों, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र की इस वैश्विक आयोजन के लिए एक विशेष थीम निर्धारित करता है जो समाज की समकालीन आवश्यकताओं पर आधारित होती है। वर्ष 2026 के लिए भी इस दिवस का मुख्य विषय स्वस्थ आयु के लिए योग निर्धारित किया गया है। ये थीम इस बात पर बल देती है कि उम्र के प्रत्येक पड़ाव पर, चाहे वो आपकी तरह बाल्यावस्था हो या फिर वृद्धावस्था। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस महज वर्ष में एक दिन मनाया जाने वाला उत्सव नहीं है, बल्कि ये मानव जाति को अपनी जड़ों की ओर लौटने और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का एक वार्षिक संकल्प है। आज के इस तकनीक प्रधान और स्क्रीन पर निर्भर युग में योग की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है। एक जिम्मेदार नागरिक और सबसे बड़ी बात, मनुष्य होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम योग को केवल 21 जून तक सीमित ना रखकर अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं, क्योंकि स्वस्थ नागरिक से ही समृद्ध राष्ट्र और शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण संभव है। अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाएं और स्वस्थ रहें। नित्य जो करता मानव योग, रहे जीवन में सदा निरोग। बच्चों, चर्चा के बाद प्रस्तुत है बच्चों की प्रस्तुति। ईशान, आज आप बाल मंजूषा कार्यक्रम के लिए क्या क्या लेकर आए हैं?
1: दीदी, मैं एक कहानी और कविता लाया हूँ।
0: बहुत अच्छा ईशान, तो सुनाइए।
1: योग, योग हमें स्वस्थ बनाता है, तन मन को बल देता है, रोगों को यह दूर भगाता है, जीवन में खुशियाँ लाता है। प्रतिदिन योग जो करते हैं वे हर मुश्किल से लड़ते हैं, आलस उनसे दूर ही रहता, सदा सफलता पर पथ पर बढ़ते हैं। प्राणायाम और आसन प्यारे, जीवन को बनाते न्यारे, योग अपनाओ, स्वस्थ रहो, यही है संदेश हमारे। मंजिल, मंजिल को जो पाना है मेहनत को अपनाना है, रह कठिन हो लाख मगर कदम नहीं रुकवाना है, गिरकर फिर उठ जाना है, हौसला नहीं गंवाना है, हर मुश्किल के आगे भी मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है, सपनों को सच करना है, ऊंचा नाम कमाना है, लगन साहस और परिश्रम से जीवन सफल बनाना है।
0: बहुत अच्छा ईशान, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई, और सच में परिश्रम से ही मनुष्य को सही सफलता मिलती है।
1: कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा, कोशिशें जारी रख कुछ गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, रास्ते पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा, अर्जुन सा निशाना रख मन में ना कोई बहाना, सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर, जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले है, जो करते रहे इंतजार उनके जिंदगी में आज भी झमेले है।
0: बहुत अच्छा ईशान, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई।
1: दीदी, मैं एक कहानी भी लाया हूँ।
0: हाँ ईशान, सुनाइए।
1: ईमानदारी का फल। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता एक किसान थे और माँ एक घरेलू महिला। रामू अपने माता पिता की इकलौती संतान था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसके माता पिता ने उसे हमेशा अच्छाई और सच्चाई का पाठ पढ़ाया था। एक दिन रामू स्कूल से घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बटुआ पड़ा हुआ मिला। उसने बटुआ उठाया और देखा कि उसमें काफी सारे पैसे हैं। रामू ने सोचा, यह पैसे तो किसी के बहुत काम आ सकते हैं, मुझे इसे उसके मालिक तक पहुंचाना चाहिए। उसने बटुए में रखे पते को देखा और उस दिशा में चल पड़ा। वह पता गांव के एक धनी व्यापारी का था। रामू ने उनके घर जाकर दरवाजा खटखटाया। व्यापारी ने दरवाजा खोला तो रामू को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। रामू ने विनम्रता से बटुआ उन्हें वापस कर दिया। व्यापारी ने बटुआ खोलकर देखा और पाया कि सभी पैसे सुरक्षित थे। वह रामू के ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। व्यापारी ने रामू से पूछा, तुम्हें पता था कि इस बटुए में इतने सारे पैसे हैं, फिर भी तुमने इसे वापस क्यों किया? रामू ने जवाब दिया, सर, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। यह पैसे मेरे नहीं है, इसलिए मैं इसे वापस करने आया हूँ। व्यापारी रामू की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे इनाम के रूप में कुछ पैसे भी दिए। रामू ने उन पैसों से अपनी पढ़ाई पूरी की और बड़े होकर एक सफल व्यक्ति बना।
0: बहुत अच्छी कहानी थी ईशान, आपने सच में ये कहानी बताकर हमें ईमानदारी से रहने के बारे में सिखाया, जो हमारे बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आज के समय में भ्रष्टाचार और कई कुरीतियाँ बढ़ती जा रही हैं बच्चों, तो ऐसे में आपको ईमानदार होना एक सफल व्यक्ति बनने की ओर प्रेरित करती है।
1: दीदी, मैं कुछ चुटकुले भी लाया हूँ।
0: अच्छा ईशान, सुनाइए।
1: टीचर, बताओ सबसे तेज क्या चलते हैं? बच्चे, छुट्टी की घंटी के बाद भागते हुए बच्चे। माँ, पढ़ाई कैसी चल रही है? बेटा, बस माँ, चलते चलते रुक जाती है।
0: बहुत अच्छा ईशान, आप बहुत अच्छे चुटकुले लाए हैं।
1: दोस्त, तू इतना खुश क्यों है? पप्पू, आज अलार्म बजने से पहले ही जग गया। दोस्त, वाह। पप्पू, क्योंकि सोया ही नहीं था। टीचर, अगर पृथ्वी घूमती है तो हमें चक्कर क्यों नहीं आते? छात्र, क्योंकि हम भी उसके साथ ही घूम रहे हैं। पप्पू, डॉक्टर साहब, मुझे भूलने की बीमारी है। डॉक्टर, कब से? पप्पू, क्या कब से? माँ, परीक्षा कैसी हुई? बेटा, सवाल तो सब आए थे, जवाब नहीं आए। टीचर, देर से क्यों आए? छात्र, सर सपना देख रहा था कि स्कूल नहीं जाना है।
0: बहुत अच्छा ईशान, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। बच्चों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कुछ रोचक तथ्य।
1: ऑक्टोपस के तीन दिल होते हैं। शहद कभी खराब नहीं होता। जिराफ की जीभ 50 सेंटीमीटर लंबी होती है। चांद पर हवा नहीं होती। चींटियां कभी नहीं सोती है। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। डॉल्फिन एक आंख खोलकर भी सो सकती है। चमगादड़ ही एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी जानवर है। केले में प्राकृतिक रेडियोएक्टिव रेडिएशंस होती है। तितलियां अपने पैरों से स्वाद ले सकती हैं। मगरमच्छ अपनी जीभ बाहर नहीं निकाल सकता। ब्लू व्हेल पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव है। कंगारू पीछे की ओर नहीं चल सकता। घोंगा 3 साल तक सो सकता है। पेंगुइन उड़ नहीं सकते। हाथी कूद नहीं सकते हैं। समुद्री घोड़े में नर बच्चे को जन्म देते हैं। मानव मस्तिष्क लगभग 75% पानी से बना हुआ है। कोआला दिन में 20 घंटे सोता है। शुक्र ग्रह पर दिन का समय 1 साल से भी बड़ा होता है। ऊंट बिना पानी के कई दिन तक रह सकता है।
0: आपको पता है बच्चों, बीज गणित, त्रिकोणमिति और कलन जैसी गणित की अलग अलग शाखाओं का जन्म भारत में ही हुआ था। शल्य चिकित्सा का प्रारंभ 2600 वर्ष पूर्व भारत में हुआ था। अनेक प्राचीन ग्रंथों में गुरु सुश्रुत और उनकी टीम द्वारा आँखों को मोतियाबिंद से मुक्त करने, प्रसव कराने, हड्डियाँ जोड़ने, पत्थरे निकालने, अंगों को सुंदर बनाने और मस्तिष्क की चिकित्सा में शल्यक्रिया करने के उल्लेख मिलते हैं। नौकायन की कला का आविष्कार विश्व में सबसे पहले 6000 वर्ष पूर्व भारत की सिंधु घाटी में हुआ था। 1982 ईस्वी में भारतीय सेना द्वारा लद्दाख घाटी में सुरु और द्रास नदी के बीच निर्मित बेली ब्रिज विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर बना पुल है। भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त तत्कालीन गुर्जर प्रदेश के प्रख्यात नगर उज्जैन की अंतरिक्ष प्रयोगशाला के प्रमुख थे। आपको पता है बच्चों, ईसा से 800 वर्ष पूर्व स्थापित तक्षशिला विश्वविद्यालय जो अभी पाकिस्तान में है, 20,500 से अधिक विद्यार्थी 60 से अधिक विषयों की शिक्षा प्राप्त करते थे। भारत में बेंगलुरु नगर में 2500 से अधिक सॉफ्टवेयर कंपनियों में कई इंजीनियर काम करते हैं। कमल के फूल को भारत के साथ साथ वियतनाम के राष्ट्रीय पुष्प होने का भी गौरव प्राप्त है। भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक और उपभोक्ता है। यहाँ विश्व की 30% चाय उत्पादित होती है, जिसमें से 25% यहीं उपयोग की जाती है। जयपुर में सवाई राजा जयसिंह द्वारा 1724 में बनाई गई जंतर मंतर संसार की सबसे बड़ी पत्थर निर्मित वैद्यशाला है। बच्चों, रोचक तथ्य के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं बाल कहानी। कहानीकार हैं मनोज कौशिक।
2: मुन्ना बाबू गांव के प्रतिष्ठित जमींदार थे। दीना उनके यहाँ बंधुआ मजदूर था। वह मुन्ना बाबू से दारू के लिए पैसे उधार में लेता था और चुका नहीं पाता था। दीना की पत्नी भी मुन्ना बाबू के हवेली में घरेलू काम किया करती थी। उसका एक बेटा था गौरव। गौरव 2 वर्ष का था। कुछ वर्षों बाद दीना ने कहीं दारू पी ली और पता चला कि जहरीली शराब से उसकी मौत हो गई। अब दीना की पत्नी और उसके मासूम बच्चे पर मुन्ना बाबू का कर्ज था, जो वे शायद चुका नहीं पाते। वे दीना के दारू का कर्ज चुकाने के लिए मजबूर थे। दीना की पत्नी मंजू और उसका मासूम बेटा भी मुन्ना बाबू के हवेली का काम बड़ी मेहनत से किया करते थे। गौरव को भी माथे पर गोईठा और पुवाल इत्यादि ढोना पड़ता था, क्योंकि मुन्ना बाबू के यहाँ वह बच्चा भी बंधुआ मजदूर था। मंजू तो अपने बच्चे के बारे में सोच भी नहीं सकती थी कि वह उसे कभी पढ़ा पाएगी। बच्चा गौरव बड़ा ही संस्कारी बच्चा था। एक दिन की बात है, मुन्ना बाबू के यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा थी। पंडित जी पूरे नियम विधान से पूजा संपन्न कराए। सभी बच्चों ने आरती ली, पर गौरव तो मासूम बंधुआ मजदूर था, उसे आरती लेने की भी इजाज़त नहीं थी। जब पंडित जी जाने लगे तो पता नहीं गौरव को मन में लगा कि पंडित जी को प्रणाम करना चाहिए, तो वह एकांत में पंडित जी को दोनों पैर छूकर प्रणाम किया। पंडित जी को लगा कि मुन्ना बाबू के घर के बच्चे प्रणाम के लिए पूरी तरह से झुके भी नहीं, और ये बच्चा मेरे दोनों पांव छूकर अपने संस्कार का परिचय दिया है। अब जब भी पंडित जी उस रास्ते से गुजरते और एकांत में गौरव पर नज़र पड़ता तो चुपचाप उसे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते और प्रसाद देते। गौरव भी पंडित जी को उसी तरह श्रद्धा से पैर छूकर प्रणाम किया करता था। गौरव अब 5 वर्ष का हो चुका था। उसके स्कूल जाने की उम्र थी, पर वह गोबर गोईठा का काम कर रहा था। पंडित जी को एक दिन मानो भगवान से प्रेरणा मिली हो कि यह बच्चा बड़ा होनहार है, यह देश का अच्छा नागरिक बनकर सेवा कर सकता है और अपनी माँ को अच्छी जिंदगी दे सकता है। पंडित जी शहर के जज साहब के यहाँ भी पूजा पाठ कराते थे। जज साहब के बचपन का दोस्त प्रोफेसर साहब का मकान भी वहीं बगल में था। जाड़े का दिन था, दोपहर का समय, जज और प्रोफेसर साहब साथ में चाय का आनंद ले रहे थे और बचपन की शरारतों को याद कर ठहाके लगा रहे थे। तभी पंडित जी वहां पहुंचे। उन दोनों ने पंडित जी का खड़े होकर स्वागत किया और फिर साथ बैठ गए। पंडित जी के लिए नाश्ता पानी आ गया। पंडित जी किसी चिंता में थे, सो जज साहब ने उनका चेहरा

0: के लिए तैयार हैं। हम दोनों की पूर्ण सहमति है। अब गौरव को यहाँ लाने की जिम्मेवारी आपकी है। पंडित जी खुशी खुशी घर लौटे। वे जल्द ही गौरव से मिलने चल पड़े। गौरव गौशाला में गायों को मच्छर से बचाने के लिए धुआं जला रहा था। पंडित जी ने गौरव को समझाया और उसकी माँ को सारी योजना बता दी। गौरव की माँ राजी हो गई। अगले दिन योजना अनुसार गौरव गांव से निकलने वाली पहली बस के छत पर चढ़कर सो गया। उधर पंडित जी भी बस पर चढ़ गए और शहर पहुंच गए। गौरव को साथ लेकर पंडित जी जज साहब के यहाँ पहुँचे। उन्होंने गौरव को जज साहब के हवाले कर दिया। इधर गांव में मुन्ना बाबू के यहाँ गौरव की माँ जानबूझकर गौरव को ढूंढने लगी और खूब रोने पीटने लगी। हाय रे, मेरा बेटा कहाँ चला गया? मुन्ना बाबू के घर वालों ने कहा कि कहीं भाग गया होगा, बाप जैसा पियक्कड़ बनेगा। उसकी माँ दुखी होने का नाटक करने लगी और मन ही मन खुश होने लगी कि अब मेरा बेटा अवश्य बड़ा आदमी बनकर शहर से लौटेगा और मुझे इस जिल्लत भरी जिंदगी से निकाल कर ले जाएगा। उधर जज साहब ने गौरव का नामांकन एक सरकारी स्कूल में करवा दिया। गौरव बहुत मन से जज साहब और प्रोफेसर साहब, जिनका घर अगल बगल में था और बीच में एक छोटा सा गेट था, दोनों मकान को जोड़ता था, दोनों का घर का दुलारा हो गया। जज साहब के बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, वे वहीं शादी विवाह करके बस गए। कभी कभी जज साहब की पत्नी से बच्चों से फोन पर बातें हो जाती थी, बाद में वो भी बंद हो गई। प्रोफेसर साहब का एक ही बेटा था और उसकी पत्नी, दोनों ही बड़े संस्कारी थे। सब मिलकर गौरव को पढ़ाते थे। गौरव घर के सदस्य की तरह घर के काम भी करता था और जज साहब तथा उनकी पत्नी की सेवा भी करता था। गौरव अब कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर प्रतियोगी परीक्षाएं भी देने लगा। अब जज साहब का गौरव ही एक सहारा था। जब पत्नी की मृत्यु हुई तो बच्चे विदेश से नहीं आए। गौरव ने ही पुत्र धर्म का सारा दायित्व निभाया। अब जज साहब उदास रहने लगे तो प्रोफेसर ने समझाया कि अब गौरव ही तुम्हारा वारिस और सहारा दोनों है। जज साहब ने गौरव के नाम से एक फैक्ट्री लगा दी। गौरव अच्छी तरह से व्यवसाय को संभालने लगा और गांव से अपनी माँ को अपने साथ ले आया। मुन्ना बाबू का सारा कर्ज चुका कर अब वो कर्ज मुक्त हो गए और गौरव जज साहब और अपनी माँ की अच्छी तरह देखभाल करने लगा। सबों की जिंदगी बड़ी खुशी खुशी कट रही थी कि अचानक एक दिन जज साहब को दिल का दौरा पड़ा। गौरव ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, परंतु वे बच नहीं सके। गौरव बहुत दुखी हुआ कि उनके बच्चे उनका अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए, जबकि प्रोफेसर साहब ने उन्हें खबर कर दिया था। उनके बेटे ने प्रोफेसर साहब से कहा कि अंकल, मैं नहीं आ पाऊंगा, दाह संस्कार के लिए पैसा भेज देता हूं, आप अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिए। प्रोफेसर साहब ने कहा कि मेरे दोस्त ने अपने दाह संस्कार के लिए पैसे मेरे पास पहले ही रख दिए थे। इस प्रकार गौरव ने जज साहब का भी अंतिम संस्कार बिल्कुल अपने पुत्र की तरह किया। एक दिन अचानक उनके बेटे का फोन प्रोफेसर साहब को आया कि अंकल, मैं अगले महीने मकान बेचने आ रहा हूँ। गौरव ने प्रोफेसर साहब से कहा कि कृपया यह मकान किसी और के हाथ में नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि इसमें जज अंकल की यादें बसी है। एक योजना के द्वारा गौरव और प्रोफेसर साहब ने उस मकान को गौरव के नाम ही रजिस्ट्री करवा दी। उनके बेटे को मकान का कीमत मिल गया। गौरव ने उस मकान में जज साहब की एक अच्छी सी मूर्ति बनवाई ताकि वे इस रूप में हमेशा उसके साथ रहें।
1: बच्चों, अभी आप सुन रहे थे बाल कहानी। कहानीकार थे मनोज कौशिक। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं, प्रस्तुत है ये गीत।

0: नया जोश, नया उमंग और ढेर सारे नए इरादों के साथ एक बार फिर से हाजिर है आपके साथ बाल किलकारी के नए एपिसोड में। ढेर सारी मौज मस्ती और धमा चौकरी से आप सभी श्रोताओं के दिलों पर राज करने के लिए हम फिर से हाजिर हैं।
1: सुप्रभात बाल श्रोता सब, आपने सभ्य बाल श्रोता के बहुते बहुते स्वागत छे। आपनों के ही सुंदर आरो अनोखा सा रेडियो कार्यक्रम बाल किलकारी के अंक 306 मा आपनों सभ्य बाल मित्र के तहे दिल सा स्वागत करे छी। आरो आज के ही खास कार्यक्रम के साथ है हम छ के आपनों सभ्य के प्यारी रेडियो साथी स्वाति। आरो आपनों के साथ छ गए आपनों के रेडियो दोस्त
0: ऋषि। हेलो दोस्तों, आप सभी बाल श्रोताओं का ऋषि की ओर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से कार्यक्रम में। आशा करता हूँ कि सभी रेडियो दोस्त मस्त तंदुरुस्त और मजे में होंगे और खूब सारी मस्ती तो कर ही रहे होंगे। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने?
1: मस्ती ना भैया, मस्ती तो अब खत्म हो गया है। कहना की गर्मी की छुट्टी भी खत्म हो गया है, एक साथ मस्ती भी खत्म। आबा तो सभ्य के स्कूल भी खुली गेलो छे। सभ्य बाल मित्र आबा मस्ती का भूली का स्कूल जाए रे तैयारी में लगलो छे। इतना दिन तक खूबे आराम आरो मस्ती कर लिए, लेकिन आबा स्कूल जाए में खूबे आलस भी आयता है। आबा तो स्कूल जाए में भी नौटंकी शुरू होता है भैया। ऋषि भैया, तो भी तो आबा स्कूल जाए में नौटंकी करवानी?
0: हाँ स्वाति, थोड़ा बहुत नौटंकी तो करता हूँ, लेकिन मम्मी मार मार के स्कूल भेज ही देगी।
1: हाँ एकदम सही बात कहलो, मतर की इतना दिन मस्ती कर लिए ता अब पढ़ना भी तो जरूरी छे नी।
0: हाँ स्वाति, तुमने सही कहा, पढ़ाई लिखाई करना भी तो बहुत जरूरी है ना, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे और जीवन में बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो स्वाति, अब बात ही करती रहोगी या फिर आज कार्यक्रम भी शुरू होगा?
1: देरी कौन बात के हो भैया, लेकर किला किला किलकारी के नाम बाल किलकारी का शुरू करे छी।
0: तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम
2: बाल किलकारी।
0: दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि संगीत हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का एक सुंदर सा माध्यम है। जब हम खुश होते हैं तो गुनगुनाते हैं, और जब हम उदास होते हैं तो संगीत हमें सुकून देता है।
1: एकदम सही बात कहलो ऋषि भैया, संगीत माँ ऐनो जादू छे जे उदास मन के खुशी दे सके छे आरो थकलो मन का नया ऊर्जा सा भरी दे छे। संगीत के कौनो भाषा या सीमा नहीं होय छे, ई सब के एक साथ जोड़े छे।
0: भारत की संगीत परंपरा बहुत ही समृद्ध है। हमारे देश में शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, भजन और आधुनिक गीतों की अनमोल विरासत है। संगीत प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश देता है।
1: संगीत अपनो संस्कृति के पहचान छे, चाहे लोकगीत होए, भजन होए या आधुनिक गीत, सभ्य माँ भावना आरो अपना पान बसलो रहे छे। एक मधुर धुन सुनला सा मन प्रसन्न भय जाए छे।
0: विश्व संगीत दिवस का उद्देश्य लोगों को संगीत के महत्व से परिचित कराना और नए कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देना है।
1: तब बाल श्रोता सब, आपनो सब गीत गाबो, संगीत सीखो आरो अपनो प्रतिभा का निखारो, संगीत जीवन माँ खुशी भरी दे छे।
0: तो आइए अब हम कार्यक्रम में संगीत दिवस के मौके पर इस राग को सुनते हैं जिसे संगीत विधा द्वारा भेजा गया है। तो आइए इसे सुनते हैं और शास्त्र संगीत के रंग में डूब जाते हैं।

0: बहुते सुंदर आरो खूब सुरमई छले राग। ई राग सुनी का मन एकदम शांत हो गेले। आपनो के बहुते बहुते धन्यवाद, इतना सुंदर प्रस्तुति ला आपनो न बहुते सुंदर राग का सुनल कहे आरो खूब अच्छा भी लगल ई राग सुनाई मा। आशा करै छी कि बाल मित्र का जरूरे पसंद अलो होते।
1: तो आइए अब हम कार्यक्रम में संगीत दिवस के मौके पर किलकारी मुलाकात में आज इस सुंदर से रिकॉर्डिंग ऑडियो को सुनते हैं और संगीत के बारे में ढेर सारी खास जानकारी लेते हैं।
2: नमस्कार बच्चों, मैं अंशु रश्मि आप लोगों को मैं आज बताऊंगी कि संगीत के क्या क्या फायदे होते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि संगीत से क्या क्या फायदे होते हैं? तो चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं संगीत क्या है ये बताती हूँ। तो संगीत एक ऐसी कला है जो हमारे जीवन को सुंदर और आनंदमय बनाती है। ध्वनियों को एक तरह से व्यवस्थित किया जाए तो वो शोर हो जाएगा, यदि इसे दूसरी तरह से व्यवस्थित किया जाए तो वही संगीत बन जाएगा। आप भी इस बात से परिचित ही होंगे कि आज बहुत सारे शोर को भी संगीत का नाम दिया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि संगीत में यदि भावनात्मक शब्द होते हैं तो लोग भावुक हो जाते हैं। ये अलग बात है कि लोग भावों को शब्द दे रहे हैं, पर बिना किसी शब्द के भी संगीत लोगों को भावुक कर सकता है, आनंद ला सकता है। संगीत आंसू ला सकता है, प्रेम ला सकता है, मूड ला सकता है। ये सब बिना किसी शब्द के केवल ध्वनि से भी लाया जा सकता है। ज्यादातर संगीत काफी हद तक केवल ध्वनि ही है, शब्द भी होते हैं पर ज्यादातर ध्वनि ही है। और संगीत का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से भी है। संगीत में एक शास्त्रीय संगीत होता है और दूसरा उपशास्त्रीय संगीत होता है। तो उपशास्त्रीय संगीत साधारणतः मनोरंजन के लिए होते हैं, जो हमारे कानों तक आते हैं और वो मन का रंजन करके चले जाते हैं। और शास्त्रीय संगीत वो है जो शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं, जिसमें राग रागिनियां भी होती है और राग रागिनियां हमारी आत्मा को प्रभावित कर लेती है। जैसे ये सात स्वर हैं, सा रे गा मा और पा धा नी सा। तो इन्हीं से रस

0: निकल के आते हैं। आप लोगों को बता दूं कि ये सात स्वर की उत्पत्ति भी पशु पक्षियों से हुई है। जैसे सा की उत्पत्ति मोर से हुई है, रे की पपीहा से हुई है, ग की बकरा से, म की कौवा से, और प की कोयल, ध की मेढक से, और नी की हाथी से हुई है। तो संगीत से हमें कई फायदे होते हैं। जैसे नियम से यदि नृत्य किया जाए तो शारीरिक गठन में सौंदर्य और शक्ति का संचार होता है। वादन से हमारे मस्तिष्क का विकास होता है, और वैसे ही गायन से हम उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जिसको योगी लोग प्राणायाम के माध्यम से प्राप्त करते हैं। संगीत हमारे लिए लाभदायक तो है ही, साथ ही ये सुखदायी भी है। संगीत के मात्र स्पर्श से हम सारे दुख कलेश को भूल जाते हैं। संगीत हम सबों के लिए ईश्वरीय देन है। अध्ययनों से पता चला है कि शास्त्रीय संगीत याददाश्त में सुधार, बीपी, शुगर, अनिद्रा आदि की परेशानी, डिप्रेशन में सुधार जैसे समग्र मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है। संगीत या गाने सुनने से ब्रेन में सेरोटोनिन नाम हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे हमारा मूड अच्छा हो जाता है। यदि आप लो फील कर रहे हों तो ऐसे समय में आप सैड म्यूजिक सुनने के बजाय फास्ट बीट सॉन्ग या लाइट म्यूजिक सुनकर आप एक्टिव फील कर सकते। जैसे हनुमान जी के पास पावर था, पर अंगद जी ने उन्हें याद दिलाया कि आप लंका पार कर सकते हैं। ऐसी स्थिति हमारी है। शास्त्रीय संगीत और जितने भी पद्धति हैं ट्रीटमेंट के, उसे हम हल्के में ले लेते हैं। शास्त्रीय संगीत में कई राग हैं जिससे बीपी, शुगर, क्रोध जैसी समस्याएं दूर हो सकती हैं। जैसे राग भैरवी और ललित राग से बीपी, अनिद्रा, तनाव की परेशानी दूर होती है। वैसे ही जय जयवंती राग और जौनपुरी राग से शुगर की, आसावरी राग से यादाश्त जैसी परेशानी, और रागपुरिया से मानसिक तनाव, और राग भोपाली से आंत की समस्याएं, और राग मल्हार से क्रोध को शांत करने में भी प्रभावी होते हैं। रिसर्च से भी ये बात सामने आई है कि जैसे जैसे लोग संगीत में डूबते हैं उनका ध्यान दूसरी बातों से हटता है। इस प्रकार संगीत से हमें कई फायदे होते हैं। संगीत हमारे जीवन को बहुत ही सुखदायी बनाता है। आप लोग भी संगीत को आजमाइए, इससे आप भी कई फायदे देखेंगे। तो बच्चों फिर मिलते हैं हम बाद में। ओके, धन्यवाद।
1: अंशु, रश्मि दी, आपका बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे बाल श्रोताओं को संगीत से जुड़ी ढेर सारी जानकारी दी। आशा करता हूँ कि श्रोताओं को भी ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, जैसे संगीत को सुनकर मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है, वैसे ही योग करने से हमारा शरीर मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है।
2: नियमित योग करला से शरीर मजबूत होय छे आ मन शांत रहे छे।
1: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और चिंता बढ़ती जा रही है, ऐसे में योग हमें स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है। प्राणायाम और ध्यान से मन एकाग्र होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। योग दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को योग के लाभों के बारे में जागरूक करना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
2: तो साथी सब, रोज कुछ समय योग खातिर जरूर निकालियो।
1: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि संगीत हमारे जीवन में खुशियाँ और मधुरता लाता है।
2: बिल्कुल सही बात कहलो, संगीत मन के आनंद दाय छे, तब वही योग तन मन के स्वस्थ रखाय छे, दोनों मिली का जीवन के सुंदर बनाबे छे।
1: स्वाति, तुम्हें पता है आज किलकारी में समर कैंप का लास्ट डे है। आज तक धूमधूम समर कैंप का समापन समारोह है। सभी लोग समापन की तैयारियों में लगे हैं। जितने जोरों शोरों से उद्घाटन हुआ था, उतनी ही धूम मस्ती के साथ समर कैंप का एंडिंग भी होगा। सभी लोग बहुत मस्ती करेंगे, डांस करेंगे और गाना गाएंगे, और मौज मस्ती तो करेंगे ही करेंगे।
2: हाँ हाँ, हमरा पता छे भैया, ये 20 दिन मा समर कैंप मा बच्चा सब ना खूबे मस्ती करल को होता है, आरो तरह तरह के विधा का सिखल के, साथे नया नया चीज का ट्राई भी करल के, आरो ढेर सारा बच्चा के साथ मौका मिले खेले के सीखे के आरो कुछ नया करे के। 20 दिन के समर कैंप मा लगभग 1500 बच्चा एकरा मा भाग लेल गए आरो कुछ नया करे के कोशिश करल गए। तो चलो सुने छिए अब ई बच्चा सब ना 20 दिन के अंतराल मा की सीख गए आरो कितना मजा कर गए।
1: हाँ दोस्तों आइए मिलते हैं किलकारी के किलक से जिनके चहक से गुंजता है हमारा बाल भवन। मिलते हैं उन बच्चों से जिन्होंने 20 दिनों तक किलकारी में बहुत कुछ सीखा और खूब सारी मस्ती की। तो आइए बाल कलाकारों से मिलते हैं और सुनते हैं उनको।
3: हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे किलकारी में और मैं हूँ आपकी प्यारी साथी प्रिया। आज मैं आप सभी को समर कैंप के समापन समारोह की तैयारी के बारे में बहुत कुछ बताने वाली हूँ और ये भी बताने वाली हूँ कि इस 20 दिनों में बच्चों ने कितना एंजॉय किया। तो चलिए मिलते हैं भैया दीदी और बच्चों से कि उन लोगों ने समर कैंप को कितना एंजॉय किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समर कैंप की शुरुआत 1 जून को हुई थी और समापन 21 जून को होने वाला है जो कि आज है। तो चलिए जानते हैं कि आज किलकारी में कितना धूम धड़ाका होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं पेंटिंग क्लास में। तो चलिए मिलते हैं हम पेंटिंग वाले भैया से और पूछते हैं कि इस समर कैंप उन्होंने क्या क्या बच्चों को जानकारी दी। हेलो भैया।
4: हेलो
3: भैया, क्या आप बता सकते हैं इस समर कैंप में आपने बच्चों को क्या क्या जानकारी दी?
4: इस समर कैंप में मैंने बच्चों को दो चीज सिखाया, एक वस्तु चित्रण यानी स्टिल लाइफ, दूसरा छापा कला। छापा कला में मैंने वेस्ट मटेरियल से भी बहुत सारी चीज बच्चों को सिखाया, जैसे सूखे हुए पत्तों में कलर कर छाप के कलाकृति बनाना। और बच्चों को ज़्यादा मजा तब आया जब मैं सब्जी के माध्यम से उन्हें चित्र बनाना सिखाया। जो सब्जी वह खाया करते थे आज उससे चित्र बनाए, जैसे आलू से, भिंडी से, करेला से, ये सबसे छापा कला के माध्यम से मैंने उसे अनेक प्रकार की कलाकृति बनाना सिखाया।
3: वाह भैया, आपने हमारे प्यारे बच्चों को बहुत कुछ सिखाया, वो भी सब्जियों से पेंटिंग। वाह, मजा ही आ गया। थैंक यू भैया। तो चलिए मिलते हैं अब पेंटिंग विधा के बच्चों से। हेलो।
5: हेलो,
3: आपका नाम क्या है?
5: मेरा नाम महिमा कुमारी है।
3: आपने इस 20 दिनों में क्या क्या सीखा पेंटिंग में?
5: मैंने इस 20 दिनों में पेंटिंग सीखा, छापा कला सीखा, थापा कला सीखा और बहुत सारी कुछ जानकारी मतलब मुझे मिली पेंटिंग से।
3: आपने इस समर कैंप को कितना एंजॉय किया?
5: मैंने इस समर कैंप को बहुत बहुत ज्यादा एंजॉय किया।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू महिमा, आपने अपना अनुभव साझा किया। तो चलिए मिलते हैं अब और भी बच्चों से। तो दोस्तों चलिए चलते हैं सितार विधा की ओर और मिलते हैं सितार विधा के बच्चों से। हेलो, आपका नाम क्या है?
6: मेरा नाम नीतू कुमारी है।
3: अच्छा, आप सितार भी बजाते हैं?
6: हाँ।
3: क्या आप बता सकती हैं कि आपने इस 20 दिनों में क्या क्या सीखा?
6: मैं इन दिनों में जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये गीत सीखे, किलकारी प्रार्थना सीखे और एक राग केदार सीखे।
3: अरे वाह, सब सितार पे बजाना सीखा आपने।
6: हाँ, आपको पता है आज समापन समारोह में हम लोग इसकी प्रस्तुति देने वाले हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारे बाल श्रोता भी आएंगे देखने और मैं भी जरूर सुनूंगी आपकी प्रस्तुति। थैंक यू नीतू। तो चलिए मिलते हैं अब सिलाई विधा वाली मैम से और जानते हैं कि सिलाई विधा में बच्चों ने क्या क्या सीखा। हेलो मैम।
7: हेलो
3: मैम, आप बता सकती हैं कि इस समर कैंप में आपने बच्चों को क्या क्या सिखाया?
7: बच्चों ने पेटीकोट बनाया, पेपर से पेटीकोट बना करके उसको हाथ से सिलाई किया, क्रूस से परांदा बनाया बाल में लगाने वाला। डॉक्टर नीरा पांडे बैग मेकिंग के लिए आई थी, उससे बच्चों ने बैग बनाना सीखा। ऊन का छोटा छोटा टोपी और स्वेटर बनाना सीखा बच्चों ने।
3: अरे वाह, बच्चों ने सचमुच अपनी कला को बहुत निखारा है और सिलाई विधा में इन छोटी छोटी चीज को सीख कर अपनी प्रतिभा दिखाई। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं हस्तकला वाले विधा के बच्चों से। हेलो दोस्तों।
8: हेलो।
3: आप सभी कैसे हैं?
8: बहुत अच्छे।
3: क्या आप सभी बता सकते हैं कि इस समर कैंप आप लोगों ने कितना एंजॉय किया?
8: बहुत।
3: हेलो, आपका नाम क्या है?
9: ज्योति।
3: आप क्या बता सकती हैं कि इस समर कैंप में आपने क्या क्या सीखा?
9: सिक्के आर्ट और पेपर से भी बहुत सारा सामान सीखे, क्विलिंग भी सीखे और जूट से बर्तन भी बनाना सीखे और पत्ते से पेंटिंग बनाने के लिए भी सीखे हम लोग, बहुत कुछ सीखे।
3: अरे वाह, जूट से बर्तन, क्या आप बता सकते हैं सिक्के आर्ट में क्या क्या होता है?
9: हाँ, सिक्के को पहले मतलब पानी में थोड़ी देर पहले भिगाते हैं, उसके बाद फिर जब गीला हो जाए तो उसको बीच से काट के उसके बाद ऐसे सीधा करने के बाद हाथ से कैंची की मदद से सीधा करते हैं, उसके बाद उसको गोंद लगा के पेपर पे चिपकाते हैं, जो एक साइड में पेंटिंग हम खुद से बना सकते हैं या प्रिंट करके निकलवा, और उसके बाद फिर ब्लेड की मदद से उसको काट के फ्रेम
10: कर सकते हैं। वाह, बहुत ही अच्छा। सचमुच दोस्तों, इस समर कैंप बच्चों ने बहुत ही एंजॉय किया है। तो चलिए मिलते हैं अब हम किलकारी की एपीओ दीदी से। हेलो दीदी।
11: हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग?
10: मैं बहुत ही अच्छी हूँ। दीदी, क्या आप बता सकती हैं कि इस समर कैंप में कितने बच्चों ने भाग लिया, कितने बच्चों ने क्या क्या सीखा?
11: जी हाँ, इस समर कैंप में हमारे किलकारी बिहार बाल भवन के दोनों परिसर में कुल मिलाकर लगभग 2000 बच्चे लाभान्वित हुए हैं।
10: अरे वाह। और दीदी, क्या आप बता सकती हैं कि बच्चों ने क्या क्या खास चीजें सीखी?
11: जी हाँ, इस समर कैंप में बच्चों ने जो हमारे यहाँ गतिविधियाँ चलती थी उसके अलावा उद्घोषणा की कार्यशाला हुई, शतरंज की कार्यशाला हुई, हारमोनियम वादन की कार्यशाला हुई, सुजनी कला की कार्यशाला हुई और फोटोग्राफी की कार्यशाला हुई, इस प्रकार से मेकअप की कार्यशाला भी हुई है, साथ ही सिक्की आर्ट की कार्यशाला हुई है, तो अनेकों कार्यशाला हुई है।
10: और दीदी, क्या आप बता सकते हैं कि अभी समापन समारोह की तैयारी कैसी चल रही है?
11: जी हाँ, समापन समारोह की तैयारी में अभी सारे बच्चे हर विधा से जुड़े हुए हैं, जो कि समर कैंप के समापन समारोह पे अपनी अपने विधा में उन्होंने जो भी सीखा है, इस समर कैंप के दौरान जो भी प्रशिक्षण लिया है उसकी प्रस्तुति देंगे। तो सारे बच्चे अभी तैयारी में लगे हुए हैं और जितने भी कर्मी हैं वो भी अपने अपने लेवल पे तैयारी में लगे हुए हैं।
10: थैंक यू दीदी, आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। सुना ना दोस्तों, दीदी ने बताया कि इस समर कैंप में बच्चे बहुत ही मस्ती कर रहे हैं, और सबसे खास बात कि इस समर कैंप में स्केट की भी कार्यशाला हुई दोस्तों, वो भी किलकारी में पहली बार, और लगभग 50 से 60 बच्चों ने उसमें भागीदारी ली और स्केटिंग करने में बच्चों को बहुत ही मजा आया। तो बाल श्रोताओं, चलिए मिलते हैं अब संगीत विधा वाले भैया से। हेलो भैया।
12: हेलो, आप सभी को नमस्कार। और यहाँ पर लोक संगीत की कार्यशाला चल रही है।
10: तो भैया, आपने इस कार्यशाला में बच्चों को क्या क्या सिखाया?
12: तो मैंने बच्चों को सिखाया है पारंपरिक लोक संगीत, और जो यहाँ पर शादियों में गाया जाता है मम्मी के द्वारा, मौसियों के द्वारा, वो लोक संगीत सिखाया है, जिसे हम लोग पारंपरिक लोक गीत कहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सीखा है गोदना गीत, जिन्होंने सीखा है पूर्वी गीत, कजरी गीत, झूमर गीत आदि, ऐसे बहुत सारे संगीत हैं जो बच्चों ने सीखा है। और यहाँ पर अभी चल रहा है हारमोनियम वाद्यन कार्यशाला और शास्त्रीय गायन कार्यशाला, इन सारे चीज़ों में बच्चों की बहुत ज़्यादा भागीदारी है, बहुत सारे बच्चे इसमें रुचि ले रहे हैं और बहुत ही मन से सीख रहे हैं, जिसकी प्रस्तुति देखने मिलेगी आज। तो आप सभी ज़रूर से ज़रूर आएँ और बच्चों का मनोबल बढ़ाएँ।
10: थैंक यू भैया। तो दोस्तों, सुना ना आपने कि किलकारी में कितनी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, और इस 20 दिनों में बच्चों ने बहुत कुछ सीखा और बहुत एंजॉय भी किया। इसी के साथ आज चक धूम धूम समर कैंप का समापन हो जाएगा। समर कैंप का फिर से इंतजार रहेगा, तब तक के लिए बाय बाय।
1: इस ऑडियो क्लिप से तो पता चलता है कि बच्चों ने तो खूब मस्ती की है और बहुत कुछ सीखा भी, तो हम ये मान सकते हैं इन सभी बच्चों का समर वेकेशन तो बहुत बढ़िया रहा होगा। सब ने चक धूम धूम समर कैंप में खूब मस्ती की। इसी के साथ इस चक धूम धूम समर कैंप को बाय करते हैं, और अगले साल हम फिर से समर कैंप का स्वागत करेंगे और बेसब्री से इंतजार भी। तो समर कैंप जल्दी लौट कर आना। दोस्तों, जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो पिता हमें हिम्मत देते हैं, जब हम गिरते हैं तो वे हमें उठना सिखाते हैं, और जब हम सफल होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी उन्हें ही होती है। फादर्स डे केवल उपहार देने का दिन नहीं है, यह अपने पिता को धन्यवाद कहने, उनका सम्मान करने और उनके प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने का दिन है।
2: तो आवो आवो, इस खास मौका पर पापा के प्यार ला इस खास गीत का सुनै छी, और श्रोता सब तो सब भी अपनो पापा का ये गीत जरूर सुनाबो।

0: प्यारा गीत सुनकर मन कर रहा है अभी मैं भाग के पापा के पास चला जाऊं और उन्हें कस के गले लगा लूं और उन्हें जोर से आई लव यू पापा कह दूं।
1: हाँ बिल्कुल सही कह लो भैया, हमरो भी तो ये मन करी लो छे।
0: तो चलो स्वाति कह देते हैं उनको।
1: लेकिन वो केना का भैया?
0: अरे अपने रेडियो कार्यक्रम के जरिए, ताकि हमारे साथ साथ हमारे श्रोता भी अपने पापा को प्यार से कह सके। तो दोस्तों आप भी हमारे साथ जरूर बोलें
2: लव यू पापा, थैंक यू।
0: ये थैंक यू इसलिए कि पापा ने मुझे इस लायक बनाया, हमारी जरूरतों को पूरा किया, हमारे हर सपने पूरे किए
1: और हमेशा हमारे साथ रहे। तो साथी स्नील, एकरे साथे अब कार्यक्रम यही समाप्त होय छे। तो आशा करै छियै कि आज के कार्यक्रम में खूब मन लगलो होता है और खूब एंजॉयमेंट के साथ अपना के ही कार्यक्रम का सुन लो होबो।
0: जी हाँ दोस्तों, तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइए। आप अपना कीमती मैसेज हमें जरूर भेजें, क्योंकि हमें आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का बेसब्री से इंतजार रहता है और आपके मैसेज को पढ़ने का मजा ही कुछ अलग होता है। तो जरूर आप अपना मैसेज भेजें। आप अपना मैसेज हमारे मोबाइल नंबर के जरिए भेज सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7542029695। तो अपना मैसेज याद से भेजें। तो साथियों अब मिलेंगे आपसे इसी कार्यक्रम में हर रविवार सुबह 10 बजे। इसी जोश और उमंग के साथ आपके चेहरे की मुस्कान को बरकरार रखने के लिए हम फिर से हाजिर होंगे।
1: ता अब अपनो प्यारी रेडियो दोस्त स्वाति
0: और अपने प्यारे रेडियो दोस्त ऋषि को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे इसी जोश और मुस्कान के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा।
2: बाय।

0: बच्चों अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी। बच्चों इसके साथ ही समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखें। हमारा पता है बाल मंजूषा अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर। हम फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए अपनी दीदी मुनमुन और
1: दोस्त ईशान
0: को दीजिए इजाजत। जय हिंद
1: जय हिंद।

सुन रहे थे कार्यक्रम बाल मंजूषा, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। प्रस्तुत है लोकगीत, कलाकार हैं रूपा सिंह। इनकी आवाज में सुनिए ये शिव भजन।

0: पर बुआई भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: रूपा सिंह की आवाज में सुनिए ये देवी गीत।

0: पर बुआई भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: शिव भजन सुनिए रूपा सिंह की आवाज में।

आप सुन रहे थे लोकगीत, कलाकार थे रूपा सिंह, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है नई फिल्मों से कार्यक्रम। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म फतेह से। गायक कलाकार हैं विशाल मिश्रा और आशीष कौर। गीत शब्बीर अहमद और अजय पाल शर्मा के हैं और संगीतकार हैं शब्बीर अहमद।

राघव चैतन्य के सर में आपको हम सुना रहे हैं ये गीत। फिल्म है मेट्रो एंड डायनो। गीत अनुराग शर्मा के हैं, संगीत

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बॉर्डर 2 से। गायक कलाकार हैं सोनू निगम, रूप कुमार राठौर, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा एवं दिलजीत। गीत जावेद अख्तर एवं मनोज मुंतशिर के हैं। संगीतकार हैं अनु मलिक एवं मिथुन।

कार्यक्रम के अंत में आपको हम सुनवा रहे हैं सैयारा फिल्म का एक गीत, जिसे गाया है सचित टंडन, परंपरा ठाकुर ने। गीत इरशाद कामिल ने लिखे हैं, संगीतकार हैं सचेत परंपरा।

इस गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम नई फिल्मों से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता।

स्वस्थ तन शांत मन और संतुलित जीवन का आधार। आज हम इसी विषय पर आपसे कुछ बातचीत करेंगे। आज 11 जून है मित्रों। आज का दिन विश्व के इतिहास पटल पर लिखता है सुनहरा नाम, क्योंकि आज का दिन जुड़ा है हमारे स्वास्थ्य से, हमारे स्वस्थ तन से, मन से और एक बेहतरीन जीवन से। दोस्तों, आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आप सबों का हम करते हैं अपने गुलदस्ता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आप सबों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें और एक अच्छा जीवन जिएं, एक अच्छे दिनचर्या का पालन करें और अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखें, क्योंकि कहा गया है दोस्तों कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। और जब आपका तन और मन दोनों ही स्वस्थ होगा तो निसंदेह आप जो भी काम करेंगे वो बेहतर करेंगे। तो हम आज बातें करेंगे इन्हीं विषयों पर, क्योंकि आज का दिन केवल एक तिथि नहीं मित्रों, हमें अपने आप से जुड़ने का अवसर देता है। तेज़ रफ्तार से भागते इस जीवन में जब तनाव और अनियमित दिनचर्या हमारी सेहत को प्रभावित कर रही है, तब योग हमें सिखाता है कि जीवन को संतुलित और सहज कैसे बनाया जाए। हम आज देखते हैं मित्रों कि हमारी जो व्यस्त दिनचर्या है, हमारी जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, हमारे जीवन को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करती जा रही है। कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर को खाए जा रही है। कई सारे ऐसे जो रोग हुए वो हमारी दिनचर्या का, जो हमने सही दिनचर्या का पालन नहीं किया उसकी वजह से हुआ। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में मधुमेह किस तरह से फैल रहा है। ये डायबिटीज़ अगर देखा जाए मित्रों, तो हर घर में अपना स्थान बना चुका है। डायबिटीज़ के साथ साथ हम देखते हैं कि थायराइड भी किस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो हमें इन सभी बातों के अगर निचोड़ की तरफ जाएं कि इनसे हम किस तरह से निजात पा सकते हैं। हम आज एक नई बीमारी सामने आ रही है, हर वर्ग के लोगों में एंजाइटी की समस्या बढ़ती जा रही है, ये या फिर डिप्रेशन भी हम कह सकते हैं उसे। तो इस तरह की बातें आखिर क्यों आ रही हैं, ये एक बेहद अहम सवाल है हमारे पास, हमारे सामने ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा आता नज़र आ रहा है कि किस तरह से ये इस तरह की बीमारियां हमारे अंदर, हमारे हर दूसरे घर में घर कर चुकी हैं और इससे निवारण कैसे हो सकता है। तो निवारण बस हम अपने सोच को तो बदल ही सकते हैं और बदलना भी चाहिए और बदलना होगा हमें, क्योंकि हमारी सोच पर बहुत बातें निर्भर करती हैं। अगर हम अपनी सोच को बेहतर बनाएंगे, सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनी सोच को आगे बढ़ाएंगे, तभी कोई भी परेशानी से हम पार पा सकते हैं। तो सोच तो हमें सकारात्मक बनाना ही है मित्रों, पर हमें योग का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें मन की शांति चाहिए, हमारे तन को अगर हमें स्वस्थ रखना है, तो हमें योग तो अवश्य अपनाना होगा। अपने दिनचर्या में हम योग को स्थान दें। और भी बहुत सारी बातें अभी हम इस कार्यक्रम के ज़रिए आपसे करेंगे। तो आइए मन को शांत करते हैं, अपने तन को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और अपने आत्मा को तृप्त करते हैं, अपने आत्मा को शांति प्रदान करते हैं इस गीत के साथ।

दोस्तों 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संकल्प का मसौदा प्रस्तुत किया गया। मसौदे को व्यापक समर्थन मिला, जिसके अंतर्गत 177 देश

इस मसौदे के प्रस्तावक बने, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतिहास में अभी तक हुए किसी भी संकल्प में सर्वाधिक प्रस्तावकों की संख्या है। 27 सितंबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में विश्व समुदाय से एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने की अपील की थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। विचार संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी ये प्रदान करता है। यह केवल व्यायाम के बारे में नहीं, बल्कि अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। और 11 दिसंबर 2014 को अमेरिका में स्थित संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। और सबसे पहली बार 21 जून 2015 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया गया। तो ये बातें हम तो योग दिवस से जुड़ी कर रहे थे। और दोस्तों, योग का इतिहास हमारे भारतीय परंपरा में काफ़ी प्राचीन है। ये हजारों वर्ष पुरानी मानी जाती है। महर्षि पतंजलि ने योग को व्यवस्थित रूप दिया और योग सूत्र की भी रचना करी है इन्होंने। योग भारत की प्राचीन संस्कृति का अमूल्य धरोहर है मित्रों। इसकी लोकप्रियता आज पूरे देश विश्व में व्याप्त है। पूरा विश्व योग की शक्ति को मान रहा है, उसे जान रहा है और इसे अपनाने की, अपनी दिनचर्या में अपनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। तो 11 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन भी होता है मित्रों, और भारतीय परंपरा में इसे विशेष महत्व दिया जाता है। तो अभी हम बहुत सारी और भी बातें इस विषय से जुड़ी करेंगे, पहले सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, योग शब्द संस्कृत की योज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में बांधने का विज्ञान है। योग हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। वह हमारी सांसों, विचारों और भावनाओं में संतुलन स्थापित करता है। योग से कई सारे लाभ होते हैं हमें। योग हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि आज हमारा जीवन बहुत ही व्यस्त हो गया है। आज हम कई घंटों तक मोबाइल और लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, जिससे कमर दर्द, मोटापा, तनाव, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। कई सारे समस्याएं जो आ रही हैं, उससे निदान का एक जो महत्वपूर्ण जरिया है वो है योग। योग हमें केवल रोग मुक्त नहीं बनाता दोस्तों, बल्कि हमें ऊर्जावान भी बनाता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये जो 8 अंग हैं योग के, वे हमारे जीवन को अनुशासित और सफल बनाते हैं। जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखने की प्रेरणा हमें योग से ही मिलती है मित्रों, और इससे हमारे मन को बेहद शांति मिलती है। मन हमारा स्वस्थ रहता है, इसकी वजह से तनाव कम होता है, हमें चिंता दूर हो जाती है, हमारे आत्मविश्वास

हुआ, वृक्षासन हुआ, भुजंगासन हुआ, वज्रासन, ये बहुत सारी ऐसे जो आसन है जिसे अपना कर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। प्राणायाम की बात अगर हम करते हैं मित्रों, तो प्राणायाम में जो बेहद प्रचलित और आसानी से होने वाला ये प्राणायाम है, उसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति और जैसे प्राणायाम हम अपना कर अपने श्वसन प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि योग से हमारे जीवन को कई सारी जो परेशानियां हैं उनसे हमें निजात पाने में हमें उस या कह सकते हैं कि योग के जरिए हम इन सारी परेशानियों से बच सकते हैं, इन परेशानियों से हम निजात पा सकते हैं। और 2026 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम है वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी कि स्वस्थ आयु के लिए योग। इस थीम का उद्देश्य यह बताना है मित्रों कि योग केवल युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि हर आयु के लोगों के लिए लाभदायक है। नियमित योगाभ्यास करके हम शारीरिक शक्ति और लचीलापन पा सकते हैं, संतुलन बेहतर बना सकते हैं, अपना मानसिक स्वास्थ्य और स्मरण शक्ति भी हमारी बेहतर होगी, तनाव कम होगा, जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी, हम लंबे समय तक सक्रिय और आत्मनिर्भर रह सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की जो थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, हमें यह व्यापक संदेश देती है कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय और आत्मनिर्भर जीवन जीने का सशक्त माध्यम है।

तो दोस्तों, योग केवल 21 जून का उत्सव नहीं बल्कि जीवन भर अपनाने का संकल्प है। यदि हम प्रतिदिन 20 से 30 मिनट योग को दें तो न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा बल्कि हमारा मन भी शांत और प्रसन्न रहेगा। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम एक संकल्प लें कि रोज करेंगे योग, रहेंगे स्वस्थ और निरोग। और इन्हीं बातों के साथ अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। आप स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और योग को अपनाकर एक कदम प्रसन्नता की ओर बढ़ाएं। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है विज्ञानवाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं सौरभ कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान वाणी में। कार्यक्रम के आज के अंक के साथ हाजिर हूँ मैं आपका रेडियो दोस्त पीयूष आनंद। श्रोताओं आप तो जानते ही हैं कि विज्ञान वाणी कार्यक्रम में हम बातें करते हैं विज्ञान के विभिन्न तकनीकों विभिन्न आविष्कारों के बारे में। विज्ञान जगत की हलचल पर आधारित हमारे कार्यक्रम का स्तंभ होता है विज्ञान समसामयिक की प्रमुख वैज्ञानिकों के योगदान और उनके प्रेरणादायी जीवन के बारे में आपको बताने के लिए हमारा कार्यक्रम का स्तंभ होता है विज्ञान रत्न और आप सभी के ज्ञान को परखने और आप श्रोताओं से जुड़ने का हमारा स्तंभ होता है माइंड टेस्ट। तो श्रोताओं इंतजार किस बात का, आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम का सिलसिला। अब वक्त है हमारे कार्यक्रम के स्तंभ विज्ञान रत्न का। श्रोताओं विज्ञान जगत अपने वैज्ञानिकों के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। ये वैज्ञानिक जो नए नए प्रयोग नए आविष्कारों के द्वारा पूरी दुनिया को विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं उनके प्रेरणादायी जीवन को बताने का ही स्तंभ होता है विज्ञान रत्न। श्रोताओं विज्ञान रत्न में आज हम जानेंगे महान भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर CNR राव के प्रेरणादायी जीवन के बारे में। तो आइए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव यानी CNR राव, इनका जन्म 30 जून 1934 को हुआ था। एक भारतीय रसायनज्ञ हैं जिन्होंने मुख्य रूप से ठोस अवस्था और संरचनात्मक रसायन विज्ञान में काम किया है। उन्हें दुनिया भर के 86 विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त है और उन्होंने लगभग 1800 शोध प्रकाशन किया और 58 पुस्तकें लिखी है। उन्हें एक ऐसे वैज्ञानिक के रूप में वर्णित किया जा

है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार को छोड़कर अपने क्षेत्र में सभी पुरस्कार जीते हैं। राव ने 17 वर्ष की आयु में मैसूर विश्वविद्यालय से बीएससी और 19 वर्ष की आयु में बीएचयू से एमएससी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 24 वर्ष की आयु में पर्ड्यू विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1959 में जब वे भारतीय विज्ञान संस्थान में शामिल हुए तब वे सबसे कम उम्र के व्याख्याता थे। कानपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थानांतरण के बाद वे वापस भारतीय विज्ञान संस्थान में आ गए और अंततः 1984 से 94 तक इसके निदेशक बने। वे 1985 से 1989 और 2005 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रहे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सामग्री विज्ञान केंद्र की स्थापना की और उनमें कार्यरत हैं। राव को मार्लो मेडल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ह्यूजस मेडल, इंडिया साइंस अवार्ड, डैन डेविड पुरस्कार, रॉयल मेडल, वान हिप्पेल अवार्ड और ENI पुरस्कार सहित कई वैज्ञानिक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। 16 नवंबर 2013 को भारत सरकार ने उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न के लिए चुना, जिससे वे सीवी रमन और एपीजे अब्दुल कलाम के बाद यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे वैज्ञानिक बन गए। उन्होंने 4 फरवरी 2014 को यह पुरस्कार ग्रहण किया। उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो CNR राव का जन्म बेंगलुरु में हनुमंथा नागेश राव और नागम्मा नागेश राव के परिवार में हुआ। उनके पिता स्कूल निरीक्षक थे। वे माता पिता की इकलौती संतान थे और उनके विद्वान माता पिता ने उन्हें शैक्षणिक वातावरण प्रदान किया। वे कम उम्र से ही अपनी माता से साहित्य और अपने पिता से अंग्रेजी में पारंगत हो गए थे। उन्होंने प्रारंभिक विद्यालय में दाखिला नहीं लिया बल्कि उनकी माता ने उन्हें घर पर पढ़ाया, जो विशेष रूप से अंकगणित और हिंदू साहित्य में निपुण थी। उन्होंने 1940 में 6 वर्ष की आयु में माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश किया। यद्यपि वे अपनी कक्षा में सबसे छोटे थे फिर भी अपने सहपाठियों को गणित और अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। उन्होंने 1944 में प्रथम श्रेणी में निम्न माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की। वे 10 वर्ष के थे और उनके पिता ने उन्हें पुरस्कार दिया। उन्होंने 17 वर्ष की आयु में 1951 में मैसूर विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने शुरू में रसायन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिग्री के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान में शामिल होने के बारे में सोचा था, लेकिन एक शिक्षक ने उन्हें BHU में जाने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने 2 साल बाद BHU से रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। 1953 में उन्हें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में PhD के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई, लेकिन 4 विदेशी विश्वविद्यालयों MIT, पेन स्टेट, कोलंबिया और पर्ड्यू ने भी उन्हें वित्तीय सहायता की पेशकश की। उन्होंने पर्ड्यू को चुना। उनका पहला शोध पत्र 1954 में आगरा विश्वविद्यालय जर्नल ऑफ रिसर्च में प्रकाशित हुआ। उन्होंने केवल 2 साल और 9 महीने बाद 1958 में PhD पूरी की। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद राव 1959 में बेंगलुरु लौट आए और IISc में व्याख्याता का पद भी ग्रहण किया था, जहां उन्होंने स्वतंत्र अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया। 1963 में उन्होंने कानपुर के IIT के रसायन विज्ञान विभाग में स्थायी पद स्वीकार किया। 1964 में उन्हें भारतीय विज्ञान अकादमी का फेलो चुना गया। 1976 में वे IISc लौट आए और वहां उन्होंने ठोस अवस्था और संरचनात्मक रसायन विज्ञान इकाई की स्थापना की और 1984 से 94 तक IISc के निदेशक रहे। अपने करियर के विभिन्न चरणों में राव ने पर्ड्यू विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता बारबरा में अतिथि प्रोफेसर के रूप में नियुक्तियां ली। वे 1983 से 84 के दौरान कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जवाहरलाल नेहरू प्रोफेसर और किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में राव राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और लीनस पॉलिंग अनुसंधान प्रोफेसर तथा जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु के मानद अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं, जिसकी स्थापना उन्होंने 1989 में की थी। उन्होंने 1985 से 89 और 2005 से 2014 तक 2 कार्यकालों के लिए भारतीय प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे अंतर्राष्ट्रीय सामग्री विज्ञान केंद्र के निदेशक भी हैं, जिसकी स्थापना उन्होंने 2010 में की थी और विज्ञान पहल समूह के बोर्ड में भी कार्यरत हैं। राव दुनिया के अग्रणी ठोस अवस्था और सामग्री रसायनज्ञों में से एक है। उन्होंने 5 दशकों से अधिक समय तक इस क्षेत्र के विकास में योगदान दिया। संक्रमण धातु ऑक्साइड पर उनके काम ने नवीन घटनाओं और सामग्री गुणों और इन सामग्रियों की संरचनात्मक रसायन विज्ञान के बीच संबंध की बुनियादी समझ को जन्म दिया है। राव उन शुरुआती वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने 2 आयामी ऑक्साइड पदार्थों का संश्लेषण किया। वे 1987 में पहले तरल नाइट्रोजन तापमान सुपर कंडक्टर संश्लेषण करने वाले पहले वैज्ञानिकों में से एक थे। वे 1990 के दशक के मध्य में वाई जंक्शन कार्बन नैनोट्यूब का संश्लेषण करने वाले पहले वैज्ञानिक भी थे। उनके कार्य ने संरचनात्मक रूप से नियंत्रित धातु इंसुलेटर संक्रमणों के व्यवस्थित अध्ययन को जन्म दिया है। ऐसे अध्ययनों का विशाल चुंबक प्रतिरोध और उच्च तापमान सुपर कंडक्टिविटी जैसे अनुप्रयोग क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ऑक्साइड अर्धचालकों में से असाधारण संभावनाएं हैं। उन्होंने संकर पदार्थों पर अपने कार्य के अलावा पिछले 2 दशकों में नैनो मटेरियल्स में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने 1800 से अधिक शोध पत्रों में सहलेखन किया और 58 से अधिक पुस्तकों का सहलेखन या संपादन किया। अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरेट उपाधियों की बात करें तो विज्ञान में उनके योगदान को मान्यता देते हुए प्रोफेसर सी एन

0: राव को विश्व भर के विश्वविद्यालयों में से कई मानद उपाधियां प्राप्त हुई। अफ्रीका में उन्हें 2007 में, ऑस्ट्रेलिया में 2015 में, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय 2007 और सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय 2013 से मानद उपाधियां प्राप्त हुई। फ्रांस में उन्हें 1983 में, 2000 ईस्वी में केन विश्वविद्यालय और 2011 में गेरनोबेल में। संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्हें कोलोराडो, नॉर्थ वेस्टर्न, नोटरे डेम, पर्ड्यू टेम्पल और अन्य कई विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। भारत में भी प्रोफेसर राव के योगदान को विभिन्न संस्थानों द्वारा मान्यता दी गई। इसमें अलीगढ़ विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बेंगलुरु विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय जैसे कई विश्वविद्यालय शामिल है। प्रमुख वैज्ञानिक पुरस्कारों की बात करें तो 1967 में इंग्लैंड की फेरारी सोसाइटी द्वारा मार्लो मेडल, 1968 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 2000 ईस्वी में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन का शताब्दी पदक, 2000 ईस्वी में ही रॉयल सोसाइटी द्वारा ह्यूजेस मेडल, 2004 में भारत विज्ञान पुरस्कार, 2005 में तेल अवीव विश्वविद्यालय से डैन डेविड पुरस्कार, 2008 में विश्व विज्ञान अकादमी द्वारा अब्दस सलाम पदक, 2009 में रॉयल सोसाइटी द्वारा रॉयल मेडल, 2010 में जर्मन केमिकल सोसाइटी द्वारा अगस्त विल्हेल्म वान होफमैन पदक, 2017 में मटेरियल्स रिसर्च सोसाइटी द्वारा वान हिप्पल पुरस्कार, 2021 में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ENI पुरस्कार जिसे एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार भी कहा जाता है। इसके अलावा 1975 में भौतिक विज्ञान में CV रमन पुरस्कार, 1980 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा SN बोस पदक, 1996 में यूनेस्को का आइंस्टीन स्वर्ण पदक, 2011 में सामग्री अनुसंधान के लिए अर्नेस्टो इली ट्राइटस्ट विज्ञान पुरस्कार, 2013 में IIT पटना विशिष्ट शिक्षाविद पुरस्कार, 2013 में चीनी विज्ञान अकादमी के मानद विदेशी सदस्य भी चुने गए। 2020 में ऊर्जा सीमांतों के लिए ENI पुरस्कार, बांग्लादेश विज्ञान अकादमी के विदेशी फेलो भी वे चुने गए। 1974 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री, 1985 में पद्म विभूषण, 2000 ईस्वी में कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा कर्नाटक रत्न और 2014 में भारत रत्न। डॉक्टर CNR राव ने अपनी पत्नी के साथ डैन डेविड पुरस्कार राशि का उपयोग करके CNR राव शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की। राव ने अंतर्राष्ट्रीय सामग्री विज्ञान केंद्र की स्थापना की जो 2010 से उन्नत सामग्री में CNR राव पुरस्कार व्याख्यान प्रदान करता है। विश्व विज्ञान अकादमी ने 2006 में सबसे कम विकसित देशों के वैज्ञानिकों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु TWAS CNR राव पुरस्कार की स्थापना की। सन्मुग्धा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी ने 2014 में रसायन विज्ञान और सामग्री विज्ञान के लिए शास्त्रा CNR राव पुरस्कार की स्थापना की। श्रोताओं, विज्ञान के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने के लिए विज्ञान वाणी टीम डॉक्टर CNR राव के विज्ञान के क्षेत्र में योगदानों को न सिर्फ याद करती है बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखने वाले सभी लोगों को इस महान वैज्ञानिक से प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हमें उम्मीद है कि इनके प्रेरणादायी जीवन से विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखने वाले, वैज्ञानिक बनने वाले की सोच रखने वाले सभी युवाओं को काफी प्रेरणा मिलेगी। श्रोताओं, विज्ञान रत्न के बाद अब वक्त है हमारे कार्यक्रम के स्तंभ विज्ञान मंजूषा का। श्रोताओं, योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का एक प्राचीन विज्ञान है। यह जीवन जीने की कला है जो तनाव कम करती है और हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और निरोगी जीवन प्रदान करने में मदद करती है। योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। हमारी बदलती जीवन शैली में चेतना बनकर यह हमें मदद करता है। श्रोताओं, आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है जो पूरी दुनिया को भारत की देन है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 देशों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। भारत के इस प्रस्ताव को 90 दिनों के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया था। 2026 में यह 12वां योग दिवस है जिसका मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित हुआ। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग है। देश के 100 प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक स्थलों पर विशेष आयोजन हो रहे हैं। देश भर में लोग कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत सामूहिक प्रदर्शन में भी भाग ले रहे हैं। श्रोताओं, योग के मुख्य लाभ और महत्व की बात करें तो बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति, रोगों से बचाव, बेहतर नींद, आध्यात्मिक और भावनात्मक संतुलन के लिए भी योग आवश्यक है। तो श्रोताओं, स्वास्थ्य, ज्ञान और विश्व शांति के लिए योग क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं इस विषय पर विस्तार से एक वार्ता के माध्यम से। वार्ताकार हैं सुरेश कुमार।
1: हम लोग भारतवासी महावीर, बुद्ध, अशोक, पतंजलि, विश्वामित्र, दानवीर, कर्ण, वशिष्ठ जैसे ऋषि मुनियों के संतान हैं जिन्होंने भारत के साथ विश्व में भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग, प्राणायाम, शांति, सेवा, कल्याण, दान, सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के विनाश से सारी

मियां त्राहिमाम हो गई थी, जिसे आज की पीढ़ी जनरेशन ने वैसा युद्ध नहीं देखा है। आज भी कई वर्षों से हम लोग रूस, यूक्रेन, ईरान, इजराइल, अमेरिका जैसे देशों में युद्ध की विभीषिका को देख रहे हैं एवं दुनिया के अन्य देश परोक्ष या अपरोक्ष रूप में भुगत रही है। इस युद्ध में हजारों निरपराध इंसान मर रहे हैं एवं अपंग हो रहे हैं। यह सुनकर हम लोगों का शरीर भी सिहर जाता है। इस युद्ध की विभीषिका से हमारा देश भारत भी अछूता नहीं है। इन्हीं देशों पर गैस, पेट्रोल, डीजल, खाद, सोना जैसे सामानों पर भारत भी आत्मनिर्भर है। क्या हम नई पीढ़ी के लोग भी विश्व शांति के लिए गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर सकते हैं? आज युद्ध जहां हो रहा है वहां के आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। दूषित पर्यावरण के कारण आँख, नाक, कान, फेफड़ा, किडनी, तनाव एवं दिमाग पर भी भारी असर पड़ रहा है। वृद्ध महिला एवं बच्चों पर तो विशेष असर पड़ रहा है। आज पूरी दुनिया में अच्छे स्वास्थ्य हेतु स्वास्थ्य ज्ञान विषय पर विशेष अभियान चलाना चाहिए। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अनवरत अच्छा कार्य को जेहन में लाकर छोटा या बड़ा कार्य कर सकते हैं, विश्व में शांति हेतु भी सोच सकते हैं और हम अपने हित के साथ दूसरों का हित भी परोपकार कर सकते हैं। इस कार्य में योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत के यशस्वी एवं तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 ईस्वी को यूएनओ अमेरिका में अच्छे स्वास्थ्य हेतु विश्व को एक सूत्र में जोड़ने हेतु योग के महत्व पर विशेष व्याख्यान दिए और विश्व स्तर पर उसके बाद योग छा गया। आज अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया, ईरान, क्यूबा, सऊदी अरब, भूटान, नेपाल, ब्रिटेन, इंग्लैंड, कुवैत, रूस, मॉरिशस, नॉर्वे जैसे 178 से ज़्यादा देशों ने यूएनओ के आह्वान पर 21 जून 2015 ईस्वी से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में कार्यक्रम कर अपनाया है। श्री नरेंद्र मोदी को विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं कि उनके अथक प्रयास से आज योग विश्व में यादगार बन गया है। अब अच्छे स्वास्थ्य के लिए आम लोगों का प्रतिदिन योग करने की दिनचर्या बनते जा रहा है। भारत के कई विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों ने योग एक विषय के रूप में क्लास में पढ़ाई शुरू करा दिए हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग पटना ने स्नातक बीए में योग विषय को अन्य विषयों की तरह भी छात्रों को पढ़ाई करवा रहे हैं। अब सुबह पार्क या सड़कों पर टहलना एवं आधा घंटा योग करना जीवन का अंग बना लिया है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिस तरह पौष्टिक खाना, पानी, शिक्षा, नौकरी या रोजगार जरूरी है, उसी तरह से योग भी जरूरी है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के सामने महावीर, बुद्ध, अशोक, पतंजलि जी के अमृत विचारों के संदेश को विश्व में फैलाए हैं। इससे भारत को विश्व गुरु बनने का रास्ता साफ करता है। आज आर्थिक रूप से भी भारत बहुत आगे बढ़ रहा है और भारत आज विश्व क्षितिज पर 1 से 5 अब में अपना स्थान बना लिया है। विश्व शांति के लिए ध्यान, मेडिटेशन, योग के महत्व को 4 चांद लगा सकता है। यदि हम योग सीख लेते हैं तो 3 पीढ़ियों को स्वस्थ रख सकते हैं। पहला, हम खुद स्वस्थ रहेंगे। दूसरी पीढ़ी, माँ, पिताजी, सास, ससुर जी एवं पत्नी, और तीसरी पीढ़ी अपने बाल बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं। हम यदि आधा घंटा प्रतिदिन योग करेंगे तो साथ ही दिनचर्या को सही रखेंगे, खान पान शाकाहारी रहेगा तो हम डॉक्टर के पास नहीं दौड़ेंगे

0: हॉस्पिटल एवं दवाई दुकान की ओर नहीं दौड़ेंगे। हमें प्रकृति से जुड़ना चाहिए, योग नेचुरोपैथ एवं आयुर्वेद विधि से चिकित्सा करनी चाहिए। इसे करने से शरीर पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है और हम स्वस्थ रहकर लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं। योग का अर्थ है स्वयं से जुड़ना और वो अपने जीवन को समग्र रूप से देखने की दृष्टि का होना। योग का मुख्य लक्ष्य है सत्य की प्राप्ति, जहाँ व्यक्ति की आत्मा स्वयं को ईश्वर से जोड़ती है। योग भारतीय दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन है। योग दर्शन का केंद्र बिंदु साधना है। योग एक ऐसा मार्ग है जो जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात योग से कर्म में कुशलता आती है। योग के 8 अंग निम्नलिखित हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एवं समाधि। योग के भी विभिन्न प्रकार होते हैं। कर्मयोग जो कर्मों अथवा क्रिया पर आधारित है, ज्ञान योग जो ज्ञान एवं विवेक के मार्ग पर ले जाता है, राजयोग आत्मा की जागरूकता एवं सुविधाओं के चैतन्य ज्ञान के विषय में बताता है, मंत्रयोग मंत्रयोग द्वारा मन को मुक्ति देता है, हठयोग आत्मा को शुद्ध करने का में सहायक है, लय योग द्वारा द्वेत को समाप्त करके और द्वेत चेतना जागृत करना। योग में आसन योग खड़े होकर बैठकर एवं लेटकर भी करते हैं। पवन मुक्त आसन या सूक्ष्म व्यायाम 32 तरह से किया जाता है। सूर्य नमस्कार सुबह करते हैं, यह 12 तरह से योग करते हैं। लोग कहते हैं कि जो 10 बार सुबह सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करते हैं उसे कोई रोग नहीं होता है। जो शरीर में रोग रहता है वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ताड़ासन चक्रासन शलभासन मंडुकासन शीर्षासन ब्रजासन पद्मासन सिंह गर्जन आसन मकरासन शवासन एवं सूर्य नमस्कार आदि आसन प्रमुख है। प्राणायाम मुख्य प्राणायाम कपालभाति अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन भस्त्रिका प्राणायाम शीतली प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम उज्जायी प्राणायाम आदि प्रमुख हैं। ध्यान मेडिटेशन ध्यान योग का एक महत्वपूर्ण योग है। इससे हमें स्वयं को खोजने का एकमात्र विकल्प देता है। सृष्टि को ध्यान की आवश्यकता है और बल की प्राप्ति होती है। मस्तिष्क का शुद्धिकरण होता है, निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, भय का नाश होता है, तनाव एवं मानसिक थकान से मुक्ति मिलती है, नई ऊर्जा की प्राप्ति होती है, खराब विकारों को की समाप्ति करते हैं एवं शांति प्राप्त करने में सहायक भूमिका निर्वाह करती है।
1: श्रोताओं, ऊँटों को हजारों साल पहले पालतू बनाया गया था और रेगिस्तानी क्षेत्रों में इनका व्यापक रूप से पशुधन और काम करने वाले जानवरों के रूप में उपयोग किया जाता है। इनके महत्व को देखते हुए ही ऊँटों के लिए एक विशेष दिवस समर्पित है, विश्व ऊँट दिवस, जो प्रतिवर्ष 22 जून को मनाया जाता है। ऊँट सम पैर वाले खुर वाले जानवर हैं जो कैमेलिडे परिवार के कैमेलस जीनस में आते हैं, जिसमें अल्पाका गुआनाको लामा और विकुना भी शामिल है। विश्व ऊँट दिवस की शुरुआत 2009 में ऊँट विशेषज्ञ निर्जातीय पारिस्थितिकीविद और कम कार्बन वाले पशुधन विशेषज्ञ डॉक्टर अब्दुल रजीक ठकाकर ने की थी। विश्व ऊँट दिवस का मुख्य उद्देश्य ऊँटों को बढ़ावा देना, उनकी अनुकूलन क्षमता का जश्न मनाना और हजारों लोगों की खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए उनके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। श्रोताओं, ऊँटों का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। मांस और दूध, ऊन और चमड़े के स्रोत के रूप में, बोझ ढोने और तेल मिलों में प्रसंस्करण के लिए और सवारी के लिए, रेगिस्तानों में माल और यात्रियों के परिवहन के लिए ऊँट एक महत्वपूर्ण साधन है और उनका दूध रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाली खानाबदोश जनजातियों का मुख्य भोजन है। 20वीं शताब्दी के मध्य तक रेगिस्तानी युद्धों में भी ऊँटों का उपयोग किया जाता था। श्रोताओं, ऊंट अत्यंत अनुकूलनीय जानवर हैं जो अत्यधिक गर्म मौसम में भी लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। वे शरीर के तापमान में होने वाले उन परिवर्तनों को भी सहन कर सकते हैं जो अधिकांश अन्य स्तनधारियों के लिए घातक साबित हो सकते हैं। अपनी अनुकूलन क्षमता के कारण ऊंट गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण श्रमिक और पशुधन है। ड्रोमेडरी और बैक्ट्रियन ऊंट हजारों वर्षों से पालतू बनाए जा रहे हैं। जंगली ऊंट बैक्ट्रियम ऊंट से निकटता से संबंधित है, लेकिन इसे एक अलग प्रजाति माना जाता है। हालांकि कभी कभी इसे जंगली बैक्ट्रियन ऊंट भी कहा जाता है। यह गंभीर रूप से लुप्त प्राय है। चीन और मंगोलिया के कुछ हिस्सों में ही लगभग 1000 जंगली ऊंट बचे हैं। श्रोताओं, ऊंट की 3 जीवित प्रजातियां हैं। एक कुबड़ वाला ड्रोमेडरी ऊंट, जो विश्व की ऊंट आबादी का 90% से अधिक हिस्सा है, 2 कुबड़ वाला बैक्ट्रियन ऊंट और 2 कुबड़ वाला जंगली ऊंट। श्रोताओं, हमने ऊंट दिवस की बातें की, ऊंट के महत्व की बातें की, क्योंकि इस दिवस का मुख्य उद्देश्य ही ऊंटों को बढ़ावा देना, उनकी अनुकूलन क्षमता का जश्न मनाना और हजारों लोगों की खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए उनके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। श्रोताओं, शास्त्रों की माने तो संगीत को ईश्वर का दर्जा प्राप्त है। यह तन और मन दोनों को शांत करता है। यह भी योग की तरह ही हमारे शरीर, मन और मस्तिष्क को साध कर हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। आज पूरी दुनिया में योग दिवस के साथ ही संगीत दिवस भी मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1982 में फ्रांस में हुई थी। संगीत की खूबियों को लोग जानें तथा अधिक से अधिक लोग संगीत को अपने जीवन में उतार कर अच्छा, सुखी और खुशियों भरा जीवन जिए, यही विश्व संगीत दिवस का उद्देश्य है। सुगंध, स्पर्श से लेकर संगीत द्वारा भी बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जाने लगा है। बहुत से शोधों के उपरांत चिकित्सा विज्ञान भी अब मानने लगा है कि प्रतिदिन 20 मिनट अपनी पसंद का संगीत सुनने से रोजमर्रा की होने वाली बहुत सी बीमारियों से निजात पाई जा सकती है। कई दिनों से कोमा में पड़ा एक बच्चा अपनी माँ की लोरी सुनकर होश में आ गया। इस तरह की घटनाएं यह सिद्ध करती है कि ध्वनि तरंगों के माध्यम से भी उपचार किया जा सकता है। श्रोताओं, ऐतिहासिक प्रमाणों की बात करें तो ज्योतिष में जिस प्रकार हर रोग का संबंध किसी न किसी ग्रह विशेष से होता है, उसी प्रकार संगीत की हर ध्वनि या हर सुर और राग का संबंध किसी न किसी ग्रह से अवश्य होता है। गंधर्व वेद, जो उपवेद भी कहलाता है, संगीत पर ही आधारित है। इसमें भी रोगियों के उपचार के लिए संगीत का उपयोग किए जाने का उल्लेख है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार यदि किसी जातक को किसी ग्रह विशेष से संबंधित रोग हो और उसे उस ग्रह से संबंधित राग, सुर अथवा गीत सुनाए जाएं, तो जातक जल्दी ही स्वस्थ हो जाता है। कुछ प्रमुख रोगों की बात करें तो हृदय रोग में राग दरबारी और राग सारंग से संबंधित संगीत सुनना, अनिद्रा में मध्यम बांसुरी वादन सुनना, पित्त रोग में राग खमाज सुनना, इन सबसे लाभ मिलता है। इसके अलावा कमजोरी महसूस होने पर राग जयवंती सुनना और जिन लोगों की याददाश्त कम हो रही है उन्हें राग शिवरंजनी सुनने से भी लाभ मिलता है। तो श्रोताओं, हम ये देखते हैं कि चाहे डिप्रेशन की समस्या हो, शारीरिक कमजोरी हो, ब्लड प्रेशर हो, तनाव हो, संगीत स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मनोरंजन के लिए। हमें उम्मीद है कि आज जब पूरी दुनिया में विश्व संगीत दिवस मनाया जा रहा है तो हम सभी संगीत के महत्व को समझेंगे और रोजमर्रा के जीवन में अपने मनपसंद संगीत सुनकर खुद को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेंगे। श्रोताओं, अब वक्त है हमारे कार्यक्रम के स्तंभ माइंड टेस्ट का। इस स्तंभ में हम हर सप्ताह 2 सवाल पूछते हैं जिसके जवाब आपको डाक या ईमेल के द्वारा हमें भेजने होते हैं और सही जवाब भेजने वालों के नाम हम अपने कार्यक्रम में भी शामिल करते हैं। तो इंतजार किस बात का, आइए सबसे पहले जान लेते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए सवालों के बारे में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह का हमारा पहला सवाल था कि रक्त वर्गीकरण के लिए किस वैज्ञानिक को जाना जाता है, जिसका सही जवाब है कार्ल लैंडस्टाइनर। और पिछले सप्ताह का हमारा दूसरा सवाल था कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, जिसका सही जवाब है 7 जून। और इन सवालों के सही जवाब हमें लिख भेजे हैं आप सभी श्रोताओं ने। आव्या सिंह और आत्मिक सिंह ने रेड क्रॉस के निकट भागलपुर से, स्नेहा कुमारी और मुस्कान कुमारी ने नाथनगर भागलपुर से, और आशीष कुमार यादव ने बरियारपुर मुंगेर से। आप सभी श्रोताओं को हमारा कार्यक्रम ध्यान से सुनने के लिए और सही जवाब हमें लिख भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आइए अब नोट कर लें आज के सवालों को। आज का हमारा पहला सवाल है कि विश्व योग दिवस 2026 की थीम क्या थी। सवाल एक बार फिर से सुन लें, विश्व योग दिवस 2026 की थीम क्या थी। और आज का हमारा दूसरा सवाल है कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। सवाल एक बार फिर से सुन लें, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। श्रोताओं, सवाल तो आपने नोट कर ही लिया होगा, अब नोट कीजिए हमारा पता और लिख भेजिए इन सवालों के सही जवाब हमें डाक या ईमेल द्वारा। हमारा पता है कार्यक्रम विज्ञान वाणी अनुभाग, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी भागलपुर, पिन 812001। और हमारा ईमेल है phairbhagalpur@gmail.com, यानी phairbhagalpur@gmail.com। हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों और ईमेल्स का। तो श्रोताओं, यह था हमारा आज का विज्ञानवाणी कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि विज्ञानवाणी का अंक आपको

पसंद आया होगा। विज्ञान वाणी के माध्यम से आपको बहुत सारी विज्ञान के क्षेत्र में नई जानकारियां मिली होंगी और इन रोचक जानकारियों से आप विज्ञान के अपने ज्ञान को और बढ़ा पाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो श्रोताओं, घड़ी की सुई इशारा कर रही है और वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो इस वादे के साथ ये होगी आपसे फिर मुलाकात इसी दिन इसी जगह इसी समय यानी आकाशवाणी केंद्र भागलपुर पर। तब तक के लिए मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त पीयूष आनंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: विज्ञानवाणी कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सुर संगम कार्यक्रम। आज सुर संगम की गायिका हैं गिरिजा देवी। आइए इनसे सुनते हैं इनका गायन राग देव गंधार में।

सुर संगम कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके अंतर्गत आप सुन रहे थे गिरिजा देवी का गायन राग देवगंधार में। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजा है। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग। आज लोकरंग के गायक कलाकार हैं गोपाल भगत। आइए इनसे सुनते हैं झूमर।

0: गोपाल भगत से अब आपको हम सुनवाते हैं श्रृंगार गीत।
1: देखल चलो भोला रो श्रृंगार हो, फूलों

लोकरंग कार्यक्रम को हम देते हैं थोड़ी देर के लिए विराम। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:10 होने वाले हैं। कुछ पल में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, इसे हम अपने रांची केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। योग दिवस पर राज्य भर में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल संतोष गंगवार, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी ने योग के नियमित अभ्यास का किया आह्वान। स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए झारखंड को 2 राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड मिले। जच्चा बच्चा की डिजिटल निगरानी और रेफरल व्यवस्था में सुधार के लिए मिला सम्मान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज होने वाली नीट परीक्षा में शामिल हो रहे छात्रों को दी शुभकामनाएं। कहा, परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी, बिना किसी भय के परीक्षा दे अभ्यर्थी। शहीद पुलिस कर्मियों और जवानों के बच्चों के लिए रांची में बनेगा दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 22 करोड़ रुपए की योजना को दी मंजूरी। और खूंटी में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान PLFI कमांडर घायल होकर गिरफ्तार। अभियान में 6 अन्य उग्रवादी भी दबोचे गए। जंगल में तलाशी अभियान जारी। और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज राज्य भर में बड़े पैमाने पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल संतोष गंगवार ने लोक भवन में बिरसा मंडप में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में 253 लोगों के साथ योग किया। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि आज योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाए जाने की जरूरत है। उन्होंने झारखंड में योग को आगे बढ़ाए जाने की भी घोषणा की। डॉक्टर अंसारी आज रांची में आयोजित योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने योग के महत्व को रेखांकित किया।
1: आप योगा करोगे तो स्वस्थ रहोगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। योगा करने से मन स्वस्थ, बुद्धि बढ़ेगी और अनुशासन आएगा और आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपकी एनर्जी लेवल हाई होगी। तो योगा तो भारत की संस्कृति, महर्षि पतंजलि का जो योगा है आज हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के घर घर में पहुंच दिया। कोरोना में देखा हम सब के योगा के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से देश स्वस्थ रहा, कोरोना का युद्ध हम सब।
0: वहीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में आयोजित एक कार्यक्रम में योग को स्वस्थ जीवन के लिए बेहद जरूरी बताया।
2: स्वस्थ जीवन के लिए योग बहुत ही आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी ने विश्व स्तर पर इस बात को सिद्ध किया है और विश्व ने माना है और आज लगभग 177 देश अंतर्राष्ट्रीय विश्व योगा दिवस के रूप में मना रहा है। स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ तन के लिए स्वस्थ मन होना जरूरी है और स्वस्थ मन के लिए योगा करते हैं। जब नियमित रूप से योग अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे।
0: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज राज्य के विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। साहिबगंज, खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, बोकारो, देवघर, जामताड़ा, गुमला, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा सहित कई जिलों में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों, सुरक्षा बलों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने योगाभ्यास में भाग लिया। कार्यक्रमों में योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया गया तथा लोगों को योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि नियमित योगाभ्यास से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, तनाव कम होता है तथा कई बीमारियों से बचाव संभव है। राज्य भर में आयोजित कार्यक्रमों में हजारों लोगों ने भाग लेकर योग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए झारखंड को 2 श्रेणियों में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहला पुरस्कार जच्चा बच्चा की डिजिटल निगरानी के माध्यम से रेफरल दर में 50% वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए मिला है, जबकि दूसरा पुरस्कार स्वास्थ्य जागरूकता वाहनों के जरिए जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए प्रदान किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि आज आयोजित नीट UG पुनर्परीक्षा में 22 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दे। इधर रांची समेत राज्य भर के 67 केंद्रों पर स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के टेंडर ग्राम स्थित झारखंड जगुआर कैंप में शहीद पुलिस कर्मियों और जवानों के बच्चों के लिए दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। करीब 22 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस विद्यालय में पहले से 12वीं कक्षा बारहवीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध रहेगी। 6 एकड़ भूमि में बनने वाले संस्थान में शिक्षकों और कर्मियों के लिए आवास की व्यवस्था भी होगी। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @handle@AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @handle@AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है।
3: ये तीनों पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: धनबाद में कोयला परियोजनाओं से विस्थापित हुए लोगों के लिए कपड़ा उद्योग लगाया जाएगा। इसके तहत एक फैक्ट्री स्थापित होने से 1100 लोगों को रोजगार मिलेगा। BCCL के CMD मनोज कुमार अग्रवाल ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि उद्योग के लिए जमीन समेत अन्य सुविधाएं भारत कोकिंग को लिमिटेड उपलब्ध कराएगा, जबकि उद्योग की स्थापना निजी कंपनियां करेंगी। उन्होंने कहा कि इस मामले पर निजी कंपनियों और भारत कोकिंग को लिमिटेड के बीच सैद्धांतिक सहमति बन गई है। खूंटी जिले से पुलिस ने एक अभियान के दौरान नक्सली कमांडर समेत 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि इलाके में सर्च अभियान जारी है।
4: को सूचना प्राप्त हुई है और इसके साथ ही कुछ एक बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से इकट्ठा हुए हैं। तो छापेमारी किया गया तो वहां पे व्यक्ति हम लोगों को पकड़ा गया और उनके पास से 2 हथियार मिले। हथियारों के साथ 21 गोलियां भी प्राप्त हुई। पूछताछ के क्रम में इसके द्वारा बताया गया कि इसके पास कुछ और भी हथियार और गोलियां हैं। कुल मिला के 4 हथियार हम लोगों को बरामद हुए हैं। 28-29 गोलियां भी हम लोगों ने बरामद। इनके पास से जब भी हम मोबाइल भी मिले हैं, VLFI के बहुत सारे पर्चे मिले हैं।
0: देवघर जसीडी बाईपास लाइन के निर्माण कार्य के कारण आसनसोल रेल मंडल में कल और परसों कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि अगले 2 दिनों के लिए जसीडी झाझा, जसीडी क्यूल तथा देवघर झाझा पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों का परिचालन आंशिक रूप से किया जाएगा। धनबाद पटना एक्सप्रेस, आनंद विहार डांकुनी स्पेशल और हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस को भी रास्ते में नियंत्रित कर चलाया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पूर्व ट्रेनों की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज से अगले 2 दिनों तक के लिए आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। योग दिवस पर राज्य भर में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल संतोष गंगवार, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी ने योग के नियमित अभ्यास का किया आह्वान। स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए झारखंड को 2 राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड मिले। जच्चा बच्चा की डिजिटल निगरानी और रेफरल व्यवस्था में सुधार के लिए मिला सम्मान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज होने वाली नीट परीक्षा में शामिल हो रहे छात्रों को दी शुभकामनाएं। कहा, परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी, बिना किसी भय के परीक्षा दे अभ्यर्थी। शहीद पुलिस कर्मियों और जवानों के बच्चों के लिए रांची में बनेगा दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 22 करोड़ रुपए की योजना को दी मंजूरी। और खूंटी में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान PLFI कमांडर घायल होकर गिरफ्तार। अभियान में 6 अन्य उग्रवादी भी दबोचे गए। जंगल में तलाशी अभियान जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार से पहले आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग। लोकरंग कार्यक्रम को अब हम बढ़ाते हैं आगे और गोपाल भगत के स्वर में आपको हम सुनवा रहे हैं ये गंगा गीत।

गोपाल भगत के गाए इस सोहर गीत के साथ ही संपन्न होता है लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है अंगिका पत्रिका कार्यक्रम अंग दर्पण। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अतुल कुमार प्रियदर्शन।

अंग दर्पण कार्यक्रम सुनय वाला सब श्रोता भाई बहन के गैरू के नमस्कार। स्वागत छे श्रोता बंधु अपना सबके पसंदीदा कार्यक्रम अंग दर्पण में। श्रोता भाई बहन अपना सब जाने छो कि संसार में स्वास्थ्य से बढ़ी के आरु कोनो धन नहीं होय छे। यही लेली कहलो जाय छे कि स्वास्थ्य ही उत्तम धन छिके। आदमी के स्वस्थ रहे लेली जे मूलभूत आवश्यकता छे, जे जरूरी छे, उचके स्वच्छ हवा, साफ सुथरा वातावरण, पौष्टिक आहार आरु एकरो साथे साथ जँ लंबा जीवन जिये ले चाहे छो आरु स्वस्थ रहे ले चाहे छो, जकरा में कि कोई बड़ बीमारी नहीं हुआ, परेशानी नहीं हुआ, मोटापा नहीं आबा, तो एकरा लेली जे सबसे जरूरी अंग छिके दैनिक दिनचर्या के हौ छिके योग। योग करो, आसन करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, छे कि नहीं, तो ई सब करला से मनुष्य स्वस्थ रहे छे। श्रोता बंधु आय यानी कि 21 जून का समूचा विश्व योग दिवस मना रहलो छे। ई दिवस वर्ष 2015 से मनाना शुरू भेले। साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूएन में प्रस्ताव रखल के, यानी कि यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव रखल के कि योग भारत के प्राचीन देन छिके, ये के माध्यम से जे छे कि तन मन का जोड़लो जाय छे। यही लेली विश्व का योग करना चाहिए, समुच्चे विश्व का ये पद्धति के अपनाना चाहिए और एक दिन जरूर निर्धारित होना चाहिए जे कि दै दिन की योग दिवस के रूप में मनैलो जाय के चाहिए। यह प्रस्ताव का 11 दिसंबर 2014 का यूएन के 177 देश ने बिना वोटिंग करन है जे छे कि एकरा मानी लेलके आरो एकरो पर स्वीकृति दे देलके। और जब स्वीकृति भेले त जे छे कि साल 2015 से समुच्चे विश्व में योग दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनैलो जावे लगले। आरु कहे छे कि जे छे कि योग केवल शरीर के ही नहीं बल्कि मन का भी शांत करे छे और मन का स्थिर करे लेली, मन का एकाग्र करे लेली, जेकरा में कि मन के भटकाव नहीं हुआ ओकरा लेली भी योग जरूरी छे। अब अपना सनी के मनो में एक प्रश्न उठी रहलो होते कि 21 जून कहीं कहना चुनलो गेले ये दिवस के मनाबे के लिए, यानी कि 21 जून कहीं विश्व योग दिवस मनैलो जाए, तो एकरो उत्तर में ई कहलो जा सके छे कि 21 जून जे छे साल के सबसे लंबा दिन होय छे आरो एकरा ग्रीष्म संक्रांति कहलो जाय छे। योग में भी एकरा सूर्य के दिन मानलो जाय छे। योग करला से फायदा ही फायदा छे, एको को नुकसान नहीं छे। जब बात करलो जाए तो सबसे पहना तो योग करला से शरीर चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहे छे, स्वस्थ रहे छे आरो हरदम तरोताजा रहे छे, तनाव कम होय छे। और यदि योग के दौरान 10 मिनट अनुलोम विलोम यानी सांस का नाभि के पास से एकदम से ऊपर खींचना आरो फिर तेजी से पेट के अंदर करते हुए खींचना आरो छोड़ी देना, ई प्रक्रिया जँ 10 मिनट प्रतिदिन भी कर लो जाए तो दिमाग शांत होय छे आरो शरीर में ऑक्सीजन लेवल जे छे, ऑक्सीजन के जे मात्रा होय छे हौ बढ़ी जाय छे। मोटापा में जँ पेट बहुत आगू बढ़ी गेलो छे, बहुत बडौल भए गेलो छे, तो ओकरा में बहुत तेजी से कमी आवे छे, श्वास के बहुत बीमारी एनहै ठीक भए जाय छे, नींद अच्छा आवे छे, भ्रामरी जेना भमरा बोले छे ना भौरा करी का, तो उन्हें भ्रामरी करला से दिमागी हलचल शांत रहे छे, यानी मस्तिष्क यानी मन जे होय छे हौ स्थिर होय छे, इधर उधर भटकाव नहीं होय छे। योग प्राणायाम करला से शरीर के रोग रोधक प्रतिरोधक क्षमता होय छे
हाव बढ़ी जाए छे। कई प्रकार के योग होय छे, कई प्रकार के आसन होय छे, भुजंगासन, शलभासन, हैसनी करला से पीठ के दर्द में आराम मिले छे आरो स्पाइनल मजबूत होय छे। ध्यान जे कि योग के ही एक अगली कड़ी छे, ओकरा में ध्यान करला से एकाग्रता बढ़े छे आरो खास करी के विद्यार्थी सिनी के लेली यादाश्त शक्ति बढ़ावे लेली योग आसन प्राणायाम आरो ध्यानाभ्यास यानी एक बिंदु पर दृष्टि के टिकाई करी के आँख बंद करी के देखना एकरो जे छे कि यादाश्त बढ़ावे के लिए हो रामबान उपाय के। योग हरदम खाली पेट ही करना चाहिए, जो चाय कॉफी कुछ भी जे पेय पदार्थ होय छे हो पीवी लेले छो तो कम से कम 2 घंटा के बाद ही योग करना चाहिए। कुछ खाए पीवी के योग करे के कोई नियम नहीं छे और ओकरा से नुकसान होय छे। योग करे वक्ती सूती और ढीला कपड़ा पहनना चाहिए। पीठ गर्दन में जो बेसी दिक्कत छे, बेसी तकलीफ छे, कोनो सर्वाइकल समस्या छे तो योग प्रशिक्षक के देखरेख में ही और निर्देश में ही साथ ही साथ चिकित्सीय सलाह के साथ ही योग करना चाहिए। योग के कोनो धर्म विशेष के जोड़ी के बिल्कुल नहीं देखे के चाहिए। बहुत एहनो बात सुने ले मिले छे कि धार्मिक आयोजन एकरा लोग कुछ लोग नाम दे दे छे तो एहनो बिल्कुल नहीं छे। कहने कि योग कोनो धर्म के नहीं छे बल्कि एक व्यायाम छिके जे UN के 193 देश एकरा मनावे छे, यही लेली योग वैश्विक छे। आरो ये भारतीय संस्कृति के प्राचीन परंपरा पुरानो समय से ही लोग आसन दंड बैठक है ना ये सब चीज करले आइलो छे, जेकरा में कि मुगदर घुमाना उठक बैठक लगाना तो व्यायामशाला पहले अपनो हरेक गांव में हुए रहे। आबे के समय में नया तौर तरीका में भलो जिम वगैरह खुली गलो छे लेकिन व्यायामशाला जे रहे हो ताकत के एक केंद्र होय रहे, हरेक गांव में रीर होय रहे। तो अभी जे छे योग एकरा पूरे विश्व ने मान लेले छे। जो एक लाइनों में कहलो जाए तो योग के मतलब दुनिया से जुड़ना छिके, सांस से शरीर, शरीर से मन आरो मन से दुनिया, यह छिके योग। अपना सब श्रोता भाई बंधु के विश्व योग दिवस के शुभकामना दे छिए आरो निवेदन करे छिए कि खाली जैन दिन मानि लो कि योग दिवस अले वह दिना योग करना छे एहनो विचार नहीं करना चाहिए और एहनो नहीं कि केवल देखावा के लेली कोनो फोटो खिंचावे लेली, तस्वीर खिंचावे लेली, कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट करे लेली, अखबार में फोटो छपी जा ऐ लेली अलिली योग नहीं करना चाहिए। कने देखो कि डेली देखो कि प्रतिदिन जे होय छे कि ओत्ता लोग नहीं व्यायाम करल को लेकिन कोनो दिवस आवे छे तो वह दिन देखो कि बहुत भीड़ हो जाय छे। तो एहनो ई देखावा के चीज नहीं छे, ई व्यक्तिगत जीवन के उद्धार के लेली आरो शरीर के स्वस्थ रखे के जे छे ई रामबाण इलाज के बिना दवाई के दर्जनों बीमारी समाप्त करे के, ओकरा जो बीमारी छे तो ओकरा खत्म करे के, आ जो बीमारी नहीं होलो छे शरीर स्वस्थ छे तो बीमारी के नहीं आवे दे लेली योग करना आवश्यक छे। आरो तभीये है योग दिवस मनाना घोषित जे छे कि मनाना जे छे सार्थक होते। 2026 जे आइ खना अपनो सनी योग दिवस मना रहल छे एकरो आधिकारिक थीम अभी UN आयुष मंत्रालय ने घोषित नहीं करना छे आरो लेकिन 2025 में जे थीम रहे वो योगा फॉर ऑन अर्थ वन हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ यानी एक पृथ्वी के लिए वैश्विक योग जे छे थीम हालांकि हर साल बदले छे आरो योग के कोई एक पहलू पर फोकस रहे छे, ओकरा पर केंद्रित रहे छे ताकि ओकरा से की हुआ कि योग के ग्लोबल पहचान मिला आरो तमाम आदमी तनाव डिप्रेशन लाइफस्टाइल जे चली रहलो छे बीमारी से बचा शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य में संतुलन आवे आरो अपनो सनी के जे परंपरा छे जेकरा में मानी रहलो छे आरो भारत प्राचीन समय से यही व्यवस्था में विश्वास करे छे कि वसुधैव कुटुंबकम यानी
पूरे दुनिया जे छे पूरे धरती जे छे हौ हमरो किछ के परिवार छिके, सब एक साथ मिली जुली कर रहना छे। यह संदेश ये योग दिवस पर ये अपना सनी के हम अपना के रेडियो जे पसंदीदा कार्यक्रम छे अंग दर्पण एकरो माध्यम से अपना सनी के दे रहल छी और फेनू से एक दाव सब का जे छे कि विश्व योग दिवस के बधाई देता हुआ कार्यक्रम में बढ़े छे आगू आरो जे छे कि एक सुंदर रंग देवी गीत सुने छे एक बढ़िया रंग मन के भक्ति भाव में जे छे कि कुछ देर डुबाबे छे तकरो बाद आरो सनी कार्यक्रम में अपना सनी के चीज सुनबे।

मंदिरवा धुवते धुवते हे मैया हथवा खियले हे अतयो नहीं गोदिया भराई। एक भक्तिन जै कहे छे कि कौवा बोले से पहने सूरज के किरण फूटे।

0: से पहिने हुनी माता के मंदिर में जाय छे आरु झाड़ू बोहारू करी के पोछा लगाय के धोय धखारी के प्रतिदिन पूजा करे छे और तैयो माय दरबी नहीं रहलो छे। तो गीत के माध्यम से जे छे कि कलाकार सुनी कुमारी जी ने है अपनो जे मनौन कहे छे माता के मनाना माता से अपनो बातचीत करना हो अपनो गीत के माध्यम से करी रहलो रहे। कलाकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम में आगू बढ़ता हुआ अब एक अंगिका काव्य पाठ सुने छे जिकरो कविच के धीरज कुमार पंडित।
1: हमरो पहलो कविता के शीर्षक छे लकड़ी के बेंट। लकड़ी के बेंट लगे लोहा में तभी गाछ गिरावे छे, बोलो ऐसनो के छे जे अपनो जात बचावे छे। लकड़ी के बेंट लगे लोहा में तभी गाछ गिरावे छे, बोलो ऐसनो के छे जे अपनो जात बचावे छे। और देखो कि बिन भेदी के कोई नहीं जाने केकरो घर में की होय छे, और रावण के घर में भी आखिर एगो विभीषण होय छे। बिन भेदी के कोई नहीं जाने केकरो घर में की होय छे, रावण के घर में भी आखिर एगो विभीषण होय छे। कोई कोई होय छे कुलदीपक जे अपनो लाज बचावे छे, आ लकड़ी के बेंट लगे लोहा में तभी गाछ गिरावे छे। और देखो कि प्रेम रहे छे उबर खाबर, प्रेम रहे छे उबर खाबर तभी न झगड़ा हुए, आ भाई भाई में साथ रहे त कथी लफड़ा हुए। प्रेम रहे छे उबर खाबर तभियो ने झगड़ा हुए, आ भाई भाई में साथ रहे त कथी लफड़ा हुए। आ घर में भौजी कहे ते ही सबटा भाई लजावे छे, आ लकड़ी के बेंट लगे लोहा में तभी गाछ गिरावे छे, बोलो ऐसनो के छे अपनो जे अपनो जात बचावे छे। आगू छे कि नारी खुद नारी के दुश्मन, नारी खुद नारी के दुश्मन कहीं कहीं हो जाय छे, करी घिनौना काम कहीं पर आखिर में पछताय छे। नारी खुद नारी के दुश्मन कहीं कहीं हो जाय छे, करी घिनौना काम कहीं पर आखिर में पछताय छे। वही सफल नारी दुर्गा छे, वही सफल नारी दुर्गा छे जे अपनो भाल बचावे छे, लकड़ी के बेंट लगे लोहा में तभी गाछ गिरावे छे, बोलो ऐसनो के छे जे अपनो जात बचावे छे। और अंतिम छे की करिए केकरा कहिए, की करिए केकरा कहिए सुंदर अपनो देश लेली, हरा भरा सगरो रहे अपनो ई परिवेश लेली। की करिए केकरा कहिए सुंदर अपनो देश लेली, हरा भरा सगरो रहे अपनो ई परिवेश लेली। वही जीवित छे देश का जौना, वही जीवित छे देश का जौना की खुशहाल बनावे छे, लकड़ी के बेंट लगे लोहा में तभी गाछ गिरावे छे, बोलो ऐसनो के छे जे अपनो जात बचावे छे, बोलो ऐसनो के छे जे अपनो जात बचावे छे। हमरो दोसरो कविता छे नारी के सम्मान लेली। हमरो दोसरो कविता के शीर्षक छे नारी के सम्मान लेली। देखो कि जिंदगी के सम्मान लेली नारी लड़े छे मान लेली, जिंदगी के सम्मान लेली नारी लड़े छे मान लेली। आँखी केरो लोर पोछी हँसे छे, आ दूसरा के सुख आरनी बाँचे छे, ढूबे छे रिश्ता वंश का बढ़ावे छे, आ दुनिया मतर की होकरे चिढ़ावे छे। देखो कि आँखी केरो लोर पोछी हँसे छे, दूसरा के सुख आरनी बाँचे छे, ढूबे छे रिश्ता वंश के बढ़ावे छे, आ दुनिया मतर की होकरे चिढ़ावे छे। मुरझैली छे खुशी के दान लेली, आ जिंदगी के सम्मान लेली नारी लड़े छे मान लेली। अपनो सब दुख दावी कर रखे छे, अपनो सब दुख दावी कर रखे छे, आ देखी सुख दूसरा के जिंदगी बितावे छे। सभ्यता नारी के एक कहानी तभियो त पूजित छे माय दुर्गा भवानी। अपनो सब दुख दावी कर रखे छे, आ देखी सुख दूसरा के जिंदगी बितावे छे। सभ्यता नारी के एक कहानी तभिये त पूजित माय दुर्गा भवानी। जिये छे दूसरा के गान लेली, जिंदगी के सम्मान लेली नारी लड़े छे मान लेली। और देखो कि युग युग से छे ई बेचारी, युग युग से छे ई बेचारी, नारी के छे की लाचारी,

0: प्रेम के वास रहे छे, भरलो घर परिवार रहे छे, मानो ने मानो भगवान लेली, जिंदगी के सम्मान लेली, नारी लड़े छे मान लेली, जिंदगी के सम्मान लेली। आरो तेसरो एगो गीत छे, सुनिए अपना, देशभक्ति गीत छे।
1: तीन रंगी चोला कमाल बबुआ,

के ऐसनो कमाल बबुआ, कोई पीने ई भारत के लाल बबुआ, कोई पीने ई भारत के लाल बबुआ।

0: काल बबुआ। श्रोता सुनिकर धीरज पंडित रो प्रणाम।
1: वाह, कोई पीन है ई भारत के लाल बबुआ, कते बढ़िया हिनी जे छै कि है काव्य पाठ से देशभक्ति के जे रंग होय छै हौ चढ़ेलके। सच में दुनिया में जत्ता महंगा से महंगा कपड़ा पिन्हिला, जे वस्त्र आभूषण पिन्हिला, लेकिन तिरंगा ओकरे नसीब होय छै जे शहीद होय छै, जे देश के सीमा के रक्षा करते हुए अपना प्राण के न्यौछावर कर दे छै भारत माय के लेली, ओकरे नसीब होय छै। तो बहुत ही सुंदर कविता हिनी सुनेलके। एकरो पहिने भी हिनी बड़ी बढ़िया बढ़िया दो कविता सुनेलके, जेकरा में कि नारी के सम्मान के, अस्मिता के आरो की स्थिति छै वर्तमान में, ओकरा पर भी हिनी बात करलके। साथे साथ हमरा समाज में जे आय भाईचारा कमी रहलो छै, एक दूसरा के प्रति लोग जलन भावना रखे छै, भाई भाई एक एक दू दू बित्तो जमीन लेली या थोड़ा बहुत पैसा के लिए एक दूसरा के मारी बैठे छै या मारी दे छै जानो से, ओकरा पहिन को कटाक्ष यानी व्यंग हौ कहो ये कविता में झलकले, जेकरा में कहलके कि कोई गाछ तभिये कटे छै जब लोहा के साथ ओकरा पीछू में जे बैंत लगे छै हौ लकड़ी के लगे छै तभिये कटे छै। तो यानी आपस में मिली जुली के रहना चाहिए। तो खैर, बहुत बढ़िया बढ़िया संदेश सुनलिए, योग दिवस पर हमने सुनी बात करलिए, अपना सबका एकदम फेनु

सा है कहता हुआ कि करो योग रहो निरोग। एक बार फेनू से दै छी अपना सबके योग दिवस के शुभकामना और घड़ी के सुई कही रहल छे अपना सबसे लिए अब इजाजत। तो सबका गैरू के नमस्कार।

अंग दर्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2 बजने वाले हैं। कुछ पल में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से।

अभी आप सुन रहे थे सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। थीम की संस्कृति। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। योग दिवस का मुख्य आयोजन आज सुबह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वयं तारासन, अर्ध चक्रासन, भद्रासन, त्रिकोणासन सहित कई योग मुद्राओं का अभ्यास किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि योग आज दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन गया है। प्रधानमंत्री ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य योग के माध्यम से शरीर को स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय बनाए रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित योग कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने लोगों से योग को अपनी जीवन शैली में शामिल करने की अपील की है। राष्ट्रपति ने कहा कि योग बढ़ती आयु में भी व्यक्ति के सक्रिय और आत्मनिर्भर बने रहने में सहायक होता है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में विश्व कल्याण के एक सशक्त माध्यम के रूप में योग पद्धति की पहचान और भी मजबूत हुई है। इधर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने लोकभवन में आयोजित योग शिविर में भाग लिया। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि योग शारीरिक स्फूर्ति, मानसिक संतुलन तथा स्वस्थ एवं गरिमापूर्ण जीवन का आधार बन सकता है। इधर राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न स्थानों पर योग दिवस के अवसर पर योग शिविर और योगाभ्यास का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित शिविर में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और रामनाथ ठाकुर, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों ने योगाभ्यास किया। वहीं विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से भी योग शिविर कार्यक्रम आयोजित किए गए। पटना उच्च न्यायालय में भी इस अवसर पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभिन्न शिक्षण संस्थानों में भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए आज देश भर में नीट यूजी पुनर्परीक्षा का आयोजन कर रहा है। ये परीक्षा स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही है। परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा शुरू हो चुकी है। प्रदेश के 34 जिलों में 331 केंद्रों पर नीट यूजी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। पटना में कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा भवन के आसपास विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है। साथ ही कई मार्गों पर आज परीक्षा की समाप्ति तक वन वे ट्रैफिक सिस्टम लागू रहेगा। इधर परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग की ओर से विशेष बसों का परिचालन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों के लिए इन बसों में यात्रा निःशुल्क है। साथ ही रेलवे की ओर से 7 विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की बैठक आज पटना स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित की जा रही है। बैठक में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज सुबह सबसे पहले राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, इसके बाद राज्य परिषद की बैठक आयोजित की गई। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपराह्न 3:30 बजे से राष्ट्रीय परिषद की बैठक का दूसरा सत्र आयोजित होगा। बैठक में पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल होने की संभावना है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: और भी मुस्तहकम हुई है। इधर गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन ने लोक भवन में मुनाक़दा योगा कैंप में शिरकत की। गवर्नर ने रियासत के बाशिंदों को बैनुल अक़वामी यौमी योगा की नेक ख्वाहिशात पेश की। उन्होंने कहा कि योगा जिस्मानी चुस्ती, जहनी तवाज़ुन और सेहतमंद और पुरवकार ज़िंदगी की बुनियाद बन सकता है। इधर राजधानी पटना समेत रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर यौमे योगा के मौके पर योगा कैंप और योगा एक्सरसाइज का इनाकात किया गया। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मुनक़दा कैंप में शिरकत की। मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह और रामनाथ ठाकुर, नायब वज़ीर आला विजय कुमार चौधरी, वज़ीर सेहत निशांत कुमार समेत कसीर तादाद में मौजूद लोगों ने योगा किया। वहीं मुख्तलिफ समाजी इदारों की जानिब से भी योगा कैंप का इनाकात किया गया। पटना हाई कोर्ट में भी इस मौके पर मुश्तरका योगा एक्सरसाइज प्रोग्राम का इनाकात किया गया। मुख्तलिफ तालीमी इदारों में भी योगा प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA आज पूरे मुल्क में नीट UG री एग्ज़ाम का इनाकात कर रहा है। ये इम्तहान ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिला के लिए मुनाकिद किया जा रहा है। ये इम्तहान भारत के 551 और बैरून मुल्क के 14 शहरों में मुनाकिद किया जा रहा है। इम्तहान में 22,79,000 से ज़ायद उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ताज़ा इत्तला के मुताबिक सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान सभी मराकज़ पर पुरअमन तरीक़े से इम्तहान शुरू हो चुका है। रियासत के 34 अजला में 331 मराकज़ पर नीट UG इम्तहान का इनाकात किया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने नकल से पाक इम्तहान को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए हैं। पटना में कुम्हरार वाक़े बापू परीक्षा भवन के आसपास खसूसी ट्रैफिक इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही कई रास्तों पर इम्तहान के खात्मे तक 1-way ट्रैफिक नाफिज रहेगा। इधर उम्मीदवारों की सहूलत के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से खसूसी बसें चलाई जा रही हैं। साथ ही रेलवे की जानिब से 7 खसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जनता दल यूनाइटेड की कौमी कौंसिल और रियासती कौंसिल का इजलास आज पटना में पार्टी दफ्तर में मुनक़द किया जा रहा है। इजलास में कौमी और रियासती सतह के मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किए जाने की उम्मीद है। हमारे नामा निगार ने बताया कि आज सुबह से सबसे कबल कौमी कौंसिल का इजलास हुआ, इसके बाद रियासती कौंसिल का इजलास मुनक़द किया गया। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे से कौमी कौंसिल का दूसरा सेशन मुनक़द होगा। इजलास में पार्टी सदर और साबिक वज़ीर आला नीतीश कुमार के शामिल होने का इम्कान है। पार्टी के कौमी कारगुजार सदर संजय कुमार झा, नायब वज़ीर आला विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, पार्टी के रियासती सदर उमेश कुशवाहा समेत कई वज़रा अराकीन असम्बली और कानून साज कौंसिल के अराकीन इजलास में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।
1: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी परीक्षा देश के 5000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलीबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है, बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
3: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
0: दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
4: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पार्क कॉर्पोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
5: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
6: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
6: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई की 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री वेंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
7: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरों मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामबुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से

0: शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष MB कलिबाफ शांति के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:30 बजे हैं। प्रस्तुत है आपके पत्रों और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहले गाने की फरमाइश आप सबों ने भेजी है। ये है मुंदीचक भागलपुर से विशाल कुमार, ऋतिक रोशन, डोलू बैजानी, चौबे टोला से हैं वर्षा, वंदना, कन्हैया, मेघा, साहब जी, शालू, सानू, निहाल, साक्षी, कुकू, चिकू, पवन, कुल्लू, मल्लू, सोनी, नीतू, मीतू, ईशु, अनु और आद्या। बूढ़ानाथ रोड भागलपुर से हैं गोपाल प्रसाद साह और इनके परिवार के सभी सदस्य। धोरैया गंगदौरी से रामविलास, रविकांत, नीरज, अमर, मारुति, सावित्री देवी, कवित्री देवी, तनुजा और सांदेव हरि। बड़ी खंजरपुर एकता रेडियो श्रोता संघ से हैं गुलफराज आलम, शमा आरा, जमालुद्दीन नेपाली और सिटीजन मास्टर सादाब। ये हैं कहलगांव पूरब टोला वार्ड नंबर 15 पांडे गली से सुजीत रॉय, दीपांकर रॉय और तमाम रॉय परिवार। नवगछिया मुमताज मोहल्ला से हैं जफर अंसारी, अथर अंसारी, शौकत अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य। मधेपुरा अनिरुद्ध चौक से हैं प्रेमचंद्र ठाकुर, मीना ठाकुर, राज ठाकुर, मुरारी ठाकुर, ऋषि ठाकुर, संजू मिश्र, सुभाष मिश्र, भवानी, लवकुश और अरुण झा। आप सबों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार का गाया ये गीत। फिल्म है याराना। गीतकार अनजान और संगीतकार हैं राजेश रोशन।

अगले गाने की फरमाइश आप सबों ने भेजी है, ये है मोहल्ला सदरुद्दीन चक से मोहम्मद शहजाद हाशिम, मोहम्मद हाशिम उद्दीन और इनके परिवार के सभी सदस्य शैल बाग भागलपुर से हैं, अभिजीत, अभिषेक, सोनी, भाव्या, सोमू, पारस, आदित्य, प्रीति और मोनी, दिल्ली शहर से हैं हीना नाज, आदिबा और फातिमा नाज, सुल्तानगंज सीतारामपुर से हैं प्रमोद पासवान, सुष्मिता सागर, दीपा करीना और सूरज, भट्टा बाजार पूर्णिया से हैं लीनू, निशु और उनके मम्मी पापा, कुनौती बांका से हैं बबलू, डब्लू, नीपू और ललन, ग्राम कुड़रो से हैं पप्पू, लीली, अपरा, वैष्णो और कौशिक। ये हैं उत्तम नगर नई दिल्ली से गौरव, मदन, अनिल, मानसी और कविता अरोड़ा, बीकानपुर भट्टा रोड से हैं गणेश पासवान और सुधा पासवान, मोंदीचक भागलपुर से हैं दिलीप कुमार सोनी, ममलका लैलक से विनोद यादव, सहरसा से राधे विद्यार्थी और भागलपुर से हैं डॉक्टर हेमंत कुमार। आप सबों ने सुनना चाहा है फिल्म उमराव जान का ये गीत, जिसे गाया है आशा भोसले ने। गीतकार हैं शहरयार और संगीतकार खयाम।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, जो कि आधारित है आपके पत्रों और ईमेल पर। कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
4: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
3: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
4: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
3: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
5: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
6: तिलका मांझी तो बहुत।
5: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
7: बख्शी जगबंधु तो
6: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
8: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
3: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
4: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
3: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
4: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
3: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
0: आप सुन रहे हैं आपके पत्रों और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया जा रहा है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप भी अपने पत्र और ईमेल हम तक भेज सकते हैं। उसके लिए हमारा पता आप जान लें। पत्र आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। फिल्म संगीत कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर, पिन कोड है 812001। और ईमेल के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है phaiarbhagalpur@gmail.com। तो आप भी अपने पत्र और ईमेल हम तक भेजिए और सुनिए अपनी पसंद के गीत हमारे केंद्र से। ये अगले गाने की फरमाइश की कुछ चिट्ठियां हैं। ये है मुजाहिदपुर पुरपटुला भागलपुर से मोहम्मद राजू खान, मोहम्मद जहांगीर खान, शबनम जानम, खैरू भाई, रूबी बेगम, अरबाज खान, अयाज खान और महमूदा खातून। बसवारा पुंसिया से पवन कुमार सिंह, सचिन छोटू, राजा सौरभ और गोलू। लालूचक भागलपुर से हैं सागर, बादल, चेतना, श्रीमती गायत्री देवी और विष्णु कुमार चौधरी। कटोरिया से हैं शहादत अली, शालिक शहादत, सिदरा शहादत, शाहीन परवीन। चंपानगर से हैं शब्बीर अहमद, खालिद अंसारी, जाहिद अनवर और तारिक अनवर। ये है बांका से रमेश साह और इनके परिवार के सभी सदस्य। गोरा डी से हैं डॉक्टर हिमंत, जीवेश नंदन, नीलेश नंदन। ततारपुर से हैं नावा कौशर, अरशान अहमद, जरीश अहमद और हासिक अहमद। इन्होंने सुनना चाहा है येसुदास के स्वर में ये गीत। गीतकार हैं पी पंकज, संगीतकार राजकमल और फिल्म है सावन को आने दो।

और ये फरमाइश आई है हबीबपुर से, भेजने वाले हैं फिरोज खान और इनके परिवार के सभी सदस्य। राजस्थान झलवाड़ा से हैं हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर बाई एवं प्रभुलाल। साहिब गंज से हैं छोटू, सृष्टि, मोहित राज, सोनम और डॉक्टर सुभट कुमार मंडल। नाथनगर भागलपुर से हैं हीवा फैजल, मायरा उमर, उमर फारूक, मोहम्मद फैजल, जुबैर अंसारी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं मीका वीरक, बलविंदर वीरक, जैतिक वीरक और हरदीप वीरक। भानपुर भोपाल मध्य प्रदेश से हैं राम गोपाल विश्वकर्मा, उमेश विश्वकर्मा, हुमायूं विश्वकर्मा और योगिता विश्वकर्मा। और आज के कार्यक्रम की आखिरी चिट्ठी है सैनिक रेडियो श्रोता संघ बबूरा, वार्ड नंबर 10, धनकुंड।

इस गीत के साथ ही संपन्न होता है आपके पत्रों और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बजे हैं। प्रस्तुत है सामुदायिक गान शिक्षा पाठ कन्नड़ भाषा में।

0: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
1: हाँ, आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते हैं?
1: मारुति संगीत पाठशाला।
0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएंगे।
1: हाँ, सिखाएंगे।
0: किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
1: दोड्ड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ, तैयार है।
0: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्कीगळु। क्या है?
1: कडल हक्कीगळु।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते, है ना?
1: हाँ।
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है।
1: हाँ।
0: रख लिया है?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप हाँ। सब लिख लीजिए। हाडु तिहवु हारु तिहवु
1: हारु तिहवु हारु तिहवु
0: कडल करेय खगकुला
1: कडल करेय खगकुला यनी तो मुगिला
0: उद्द अगला
1: उद्द अगला
0: जी
1: की दनी तू
0: बांदड़ा
1: बांदड़ा।
0: अच्छा, तो एक पहला स्टैंजा है।
1: हाँ?
0: आगे का स्टैंजा है, बान लोक नगुव नाका
1: बान लोक नगुव नाका
0: हारो हक्की पालीगे
1: हारो हक्की पालीगे
0: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
1: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
0: चुक्की मुट्टो हम्मीगे
1: चुक्की मुट्टो हम्मीगे।
0: लिख लिया?
1: हाँ।
0: सब लोग लिख लिया?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो अगला स्टैंजा, दूर दूर हारी हारी
1: दूर दूर हारी हारी
0: व्योम कानुवा बगे
1: व्योम कानुवा बगे हसीव मरेसी
0: वांछे मेरेसी
1: वांछे मेरेसी
0: दिगंत सेरो लघु बगे
1: दिगंत सेरो लघु बगे।
0: तो अब बच्चा आखिर स्टैंजा,
1: हाँ।
0: वो भी सुना दो।
1: हाँ।
0: लिख लेते हैं।
1: हाँ।
0: याव नाडो यंथ काडो
1: याव नाडो यंथ काडो
0: हारो आसे हक्कीगे
1: हारो आसे हक्कीगे
0: मुक्त गगन नूरु काला
1: मुक्त गगन नूरु काला
0: ईजो शक्ति रेक्केगे
1: ईजो शक्ति रेक्केगे।
0: तो सब लोग एक गाना तो लिख लिया।
1: हाँ। हाँ।
0: अब इसे कैसे गाना, किस तरह गाना, ये तो मालूम हो रहा है ना?
1: हाँ।
0: अच्छा जी, जरा चुपके रहना, गीता जी आ रही है दीदी।
1: हाँ?
0: इसी को हम रिक्वेस्ट कर देंगे। हाँ?
1: हाँ।
0: गीता जी आइए यहाँ, हमारे बच्चे सब ये गाना सीखना चाहते हैं। पहले इसके आरोह अवरोह क्या है ये बताएंगे?

0: कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तीसर नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नागपुर जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजे के दिखाते हैं ना।
1: धादिना धातिना धादिना धातिना धादिना धातिना धादिना धातिना।
0: अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।
2: ता किता ता किता ता

हाँ, दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना। तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती हैं।

अब ये आखिर का अंतर जो है ना वो पहली अंतर था ना, बान लोक नगुवना का, उसी के जैसे ही है। अच्छा तो गाते हैं।

0: तो बच्चों, अब इस पूरे गाने की धुन आपको याद होगी, है ना? अब घर पे जाके खूब प्रैक्टिस करना, तो आप सब लोगों को ये गाना बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी, करेंगे ना? अच्छा बच्चों, तो नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे सामुदायिक गान शिक्षा पाठ कन्नड़ भाषा में। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है समूह स्वर में देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे सामवेद स्वर में देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3:25 हुए हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर एवं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। संध्या 5 बजे से आप सुनेंगे आकाशवाणी भागलपुर के कार्यक्रम।

लता मंगेशकर का गाया फिल्म आंखें का गीत आप सुन रहे थे। साइलुधान बोल थे, रवि का संगीत है बताओ ये। और इस गीत को पसंद किया इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धामतरी छत्तीसगढ़ चंद्रकांत सीमा साहू सूर्यकांत राकेश साहू शुभम और सावित्री साहू।

इस गीत को सुनना चाह शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नईम इदरीसी, नदीम इदरीसी, और इस गीत के लिए सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, प्रकाश वेद प्रकाश चौहान की फरमाइश आई। और गीत प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज, विकास सक्सेना और चंचला कश्यप। मन चाहे गीत, ये कार्यक्रम श्रोताओं अब यहीं संपन्न हो। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को और भेजते रहिए पत्र मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए।

0: यह है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवा रहे हैं नाटक मृत्युहीन प्राण का दूसरा और अंतिम भाग। आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का ये हिंदी अनुवाद है। हिंदी अनुवादक हैं दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार।
2: जुडू।
3: यस सर।
2: बेंजामिन कुछ बता रहा है? कुछ मुंह खोला उसने?
3: नहीं सर, कुछ नहीं बोलता।
2: व्हाट, 48 घंटे हो गए और अभी तक मुंह से बोल नहीं फूटे? ओह, दरअसल बात यह है जुडू कि तुम्हारे शरीर में काले लोगों का खून भी तो कुछ कुछ मौजूद है, ये उनके मामलों में रहम की मात्रा जरा कुछ बढ़ सी जाती है।
3: क्या क्या कह रहे हैं आप सर?
2: मैं ये कह रहा हूं कि जरा सख्ती के साथ दवा का डोज तो अपने आप मुंह से बोल फूट पड़ेंगे।
3: मिस्टर थॉमसन, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, पर क्या करूं, कंबख्त मुंह से एक बात तक नहीं निकल रही, बात के बदले कस के सिर्फ खून निकल रहा है।
2: खून के साथ साथ दांतें भी निकालनी होगी, इट्स मस्ट, कमिश्नर साहब का हुक्म है। चलो एक बार मैं खुद ही कोशिश करता हूं।
3: यस सर।

0: मिस्टर मोलाइज, अपने बारे में नए सिरे से सोचा आपने?
1: अपने बारे में बाबा मुझे सोचने की क्या जरूरत है? इसकी जिम्मेदारी तो आप लोगों ने खुद ही ले रखी है।
0: फिलिस सेट्टी का खून आपने नहीं किया?
1: नहीं।
0: तो फिर किसने? इन लोगों ने किया, इसे तो आप जरूर जानते होंगे।
1: नहीं जानता।
2: हमारे पास ऐसी खबर है कि उस निरीह भले आदमी फिलिप्स को जान से मार डालने के लिए आप लोगों की एक गुप्त मीटिंग हुई थी।
1: एक काले आदमी के लिए अचानक आप लोगों को इतना दर्द क्यों होने लगा है?
0: ये देश की कानून व्यवस्था का प्रश्न है।
1: कानून व्यवस्था या आप लोगों के प्यारे जासूस की मौत हो गई है, इसलिए बहुत तकलीफ हो रही है आपको मिस्टर थॉमसन।
0: जासूस समझकर उसे बुलेट से छलनी बना डाला। वाह, बहुत खूब।
1: बुलेट चलाना तो आप लोगों का खानदानी पेशा है, मेरा हाथ कलम से सिर्फ कविताएं लिखता है।
0: कविताएं लिखता है? क्यों? यू ब्लैकी रास्कल, उस साथ को हम जॉन्स पर पेजरी लूटते वक्त इसी हाथ में राइफल थी ना? क्यों थी ना?
1: नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं थी। अगर अगर किसी दिन रही तो समझिएगा, उसे ऐसा करने के लिए आप लोग ही मजबूर किया है।
0: हम लोगों ने?
1: हाँ, आप लोगों ने। आप लोग बहुसंख्यक काले लोगों के पैरों में बेड़ियां डालकर सारे देश को लूट रहे हैं। मार खाते खाते दीवारों से लग गई है पीठ हमारी, लेकिन लेकिन जिंदा रहने की खातिर अगर कोई अपनी

0: आवाज उठाता है तो क्या ये अन्याय है?
1: 100% अन्याय है।
2: जिडो, इस तरह काम नहीं चलेगा, इसके लिए खास इंतजाम करने की जरूरत है। देखते हैं कैसे।
1: यस सर।
2: बोलिए, कुछ तो बोलिए मिस्टर मुलेज, नहीं तो जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा। आग की तरह लाल दो सलाखें आपके बदन के कुछ खास हिस्सों पर तबाह कर रखी जाएंगी। कुचला जाएगा उन हिस्सों को सलाखों से। अब आप समझ ही रहे होंगे कि वो नजारा क्या होगा।
0: आप लोग खुद को शिष्ट समझते हैं, शिष्टाचार का दम भरते हैं, लेकिन जी, जंगल के पशु भी शर्माते हैं आप लोगों के व्यवहार से।
1: सर, मैं रेडी हूं।
2: देन स्टार्ट।
1: कहिए, फिलिप्स का खून किसने किया? बताइए, कब खून किया? किया?
0: नहीं मालूम, नहीं मालूम,
1: नहीं मालूम,
0: नहीं मालूम,
1: नहीं मालूम, नहीं मालूम।
2: बोलिए, बोलिए, अरे कुछ तो बोलिए ना। ये तो बेहोश हो गया, लगता है सहन शक्ति बहुत ही कम है। होश मिलाओ इसे, बाद में फिर कोशिश करेंगे।

0: ना ना जिनी, तुम मुझे खाने के लिए जिद ना करो बेटी। कोई भी खाना मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा।
1: जरा सा दूध तो पी लो मौसी।
0: ना ना, इस वक्त कुछ नहीं लूंगी बेटी।
1: तुम बैठो, मैं गरम करके लाती हूँ।
0: जेल में भेज को शायद खाने को भी नहीं देते होंगे। अब फिर कौन आ गया? क्या बात है, आप लोग फिर आ गए?
2: सॉरी मिसेस मोरेल, आपको थोड़ी सी तकलीफ देने आ गए।
0: आखिर आप लोग चाहते क्या हैं?
2: बस दो एक बातें पूछना चाहते हैं आपसे।
0: उसके पहले मेहरबानी करके बताएंगे कि किस जुर्म में मेरे बच्चे को जेल के सीखचों के अंदर बंद किया गया है?
2: फिलिप सिलेपी की हत्या के जुर्म में।
0: झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मेरे बच्चे ने हत्या नहीं की है। क्यों झूठ मूठ मेरे बेटे को खून के इल्जाम बता रहे हो?
2: हम लोग तो कानून के गुलाम हैं।
0: आप लोगों के कानून तो हमारे जैसे काले लोगों की गर्दन दबोचने के लिए हैं।
2: ओह नो नो नो नो, ये आप लोगों की गलत धारणा है।
0: अच्छा साहब बहादुर, क्या आप लोग कोई ऐसी दवा नहीं दे सकते जिसे बदन पर लगाने से हमारे शरीर के रंग भी सफेद हो जाएं?
2: सुन रहे हो जुडू, मिसेस मोलाइज क्या फरमा रही हैं?
3: हाँ सर, सुन रहा हूँ।
4: अच्छा मान लीजिए अगर आप लोग सफेद चमड़ी के होते तो क्या करते मिसेस मोलाइज?
0: तो हमारे लिए कांटे वाले तारों से घिरा बांडुस्तान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।
3: सर लगता है बेंजामिन ने अपनी माँ को भी तैयार कर पक्का कर दिया है।
2: अरे वो तो करेगा ही जुडू, मैं तो खून खराबा करके आने के बाद हाथ धोने के लिए पानी कौन देगा?
0: आप लोगों को जो कुछ भी कहना है कह डालिए और मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए, मुझे खुशी होगी।
2: ओह यस यस यस, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपका बेटा बेंजामिन किन लोगों के साथ मिलता जुलता था?
0: बहुत के साथ, उसके बहुत से दोस्त हैं।
2: हाँ, बहुत से दोस्तों को तो हम पहचानते हैं, खास दोस्तों में जैसे समझिए जेने रोयांगा, रॉबिन खाबड़कर, मिस्टर।
0: नहीं, ये सारे नाम मैंने पहले कभी नहीं सुने।
5: मौसी दूध ठंडा हो रहा है, ले आऊं?
0: नहीं, मैं ही आऊंगी थोड़ी देर बाद।
2: ये कौन बोल? किसी युवती की आवाज लगती है।
0: मेरे एक पड़ोसी दोस्त की लड़की है।
2: जरा उसे बुलाइए।
0: क्यों, उसकी क्या जरूरत है?
2: घर में आपके सिवा और तो किसी को देखा नहीं इसके पहले, इसीलिए अब जरा हमें ये भी देखने की जरूरत है कि इस घर में किस किस का आना जाना है।
5: ये लीजिए, मैं आ गई, देखिए।
2: क्या नाम है तुम्हारा?
5: पैराम्बा।
2: क्या करती हो?
5: कॉलेज में पढ़ती।
3: सर लगता है इसे कहीं देखा है।
5: कहीं सर बाजार या कॉलेज जाते समय देख लिया होगा।
3: ऐसे नहीं, कहीं और देखा है।
2: यस, याद आया, अभी कुछ दिनों पहले एक सुनसान पार्क में तुम्हारे साथ हमारी मतलब हम दोनों के साथ तुम्हारी मुलाकात हुई थी।
3: हाँ वहाँ चुप चुप के प्रेम करने या किसी से मिलने गई थी? क्यों गई थी ना?
2: क्वाइट इंटरेस्टिंग अफेयर। अच्छा मिस पैराम्बा, तुम जरूर बेंजामिन को चाहती हो? अच्छा तो फिर उसकी कविताओं को भी जरूर चाहती होंगी?
5: जी हाँ चाहती हूँ, बहुत तेरे चाहते हैं।
2: पर क्या तुम ये जानती हो कि बेंजामिन जिस हाथ से कविताएं लिखता है उसी हाथ से आदमी का खून भी लिखता है?
5: मुझे यकीन नहीं है इस बात पर।
2: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुझे भी यकीन नहीं है, पर कोई चारा भी तो नहीं है, इसीलिए मुझे जरूरत है तुम्हारी।
5: जी मेरी?
0: इसे बीच में क्यों घसीट रहे हैं अफसर साहब?
2: प्लीज मिसेस मोलाइज, जिनी तुम ये जरूर चाहोगे कि बेंजामिन बेगुनाह साबित होकर फिर तुम्हारे बीच वापस आ जाए?
5: आप कहना क्या चाहते हैं?
2: मैं ये कह रहा हूं, मतलब ये चाहता हूं सिर्फ थोड़ी सी मदद जो तुम्हारे बेंजामिन को तुम्हारे पास ही वापस ला देगी। मेरे साथ आओ।
0: नहीं, वो क्यों जाएगी?
2: ओहो डरने की कोई बात नहीं है।
5: मैं कहां जाऊंगी?
4: मेरे साथ?
0: नहीं,
3: सर मैं ये कह रहा
2: हूँ। जिडू फिर वही बात। आओ चलो जिनी, डरने की कोई बात नहीं है, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ बेंजामिन का रिश्ता किस ढंग का है। हाँ देखो ना, अब इस बात को उसकी माँ के सामने तो पूछा नहीं जा सकता ना।
0: नहीं वो नहीं जाएगी। जिनी तुम अंदर जाओ।
2: नहीं वो मेरे साथ ही जाएगी।
3: सर मैं कह रहा था कि
2: समस्ती पकड़ के ले चलो इसे। इट्स माय ऑर्डर।
5: नहीं, छोड़ दो मुझे।

0: लगता है बाहर से मेरा तन, सुलग रहा अंदर से मेरा मन। हर अश्वेत माओं के घर घर में, धरती के कण कण में, अंबर में उमड़ पड़ा लाशों का एक जुलूस, काले ताबूतों का एक जुलूस, रंग भेद के कुत्सित लिए विचार मिले श्वेत गिद्धों को नए शिकार। माओ के कोमल अंशों को नोच, खून सनी है इनकी पैनी चोंच, इन सफेद गिद्धों के दल छाए मन की आग ज्वाला सी बन जाए, फैले चारों ओर आग की ज्वाल, अंगारे बन जाए जयमाल। लगातार 2 सालों से चल रहा है शारीरिक उत्पीड़न और जारी है स्वीकारोक्ति वसूलने की असफल चेष्टाएं, लेकिन
1: क्या सोच रहे हैं मिस्टर मोलेस?
0: कौन? ओह नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूं।
1: जरूर कुछ ना कुछ आप सोच रहे हैं। हाँ,
0: ये भी क्या आप लोगों का ऑर्डर है जो कुछ ना कुछ मुझे सोचना ही रहना होगा? नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूं मैं। आप लोग जा सकते हैं।
1: किसी के बारे में सोचना क्या आपको अच्छा नहीं लगता मिस्टर मुलाज? मान लीजिए चीनी के बारे में। कितने दिन हो गए चीनी से आपकी मुलाकात नहीं हुई?
0: चीनी?
1: जी हाँ, चीनी आपकी महबूबा, जिसे लेकर ना जाने कितनी कविताएं आपकी कलम से अब तक निकल चुकी हैं।
0: तो अब आप लोग मेरे व्यक्तिगत जीवन की खोज लेने आए हैं? धन्यवाद
1: मिस्टर मोलाय। आज मैंने ये तय किया है कि आपको कोई जबरदस्त सरप्राइज दूं।
0: सरप्राइज मुझे?
1: हाँ। गार्ड, 4 नंबर सेल का दरवाजा खोल दो।

0: जिनी?
1: पेच।
0: ये जिनी को यहाँ क्यों लाए हैं? क्यों लाए हैं जिनी को यहाँ?
1: तुम कैसे हो गए?
0: जिनी, जिनी, मैं जिंदा हूँ जिनी। तुम कैसी हो? माँ कैसी है? अच्छे हैं ना सब?
1: हाँ, पेच। ये लोग मुझे पकड़ कर ले आए हैं।
0: इसे यहाँ क्यों लाए हैं? कहिए, कहिए क्यों लाए हैं इसे यहाँ?
2: फिलिप सिलेपी का खून किसने किया?
0: नहीं मालूम।
2: आपने नहीं किया, इसका मुझे यकीन है। लेकिन दल में कौन कौन थे
3: ये तो आपको निश्चित रूप से मालूम है। बस
2: उतना ही बता दीजिए।
1: बेंच, बेंच, मुझे नहीं मालूम ये लोग मुझे क्यों पकड़ कर लाए हैं। मुझे डर लग रहा है।
0: जी,
2: कल कोर्ट में फाइनल हियरिंग है, वहां कोर्ट के सामने कहने से भी चलेगा।
1: जिनी, बचाओ।
0: जिनी, जिनी,
1: बेंच, मुझे तुम बचाओ।
0: मिस्टर थॉमसन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिनी क्या क्या कसूर है? उसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? उसे क्यों लेकर आए हैं बताइए।
2: सिर्फ लेकर ही नहीं आए हैं,
3: अभी तो आपकी आंखों के सामने बहुत कुछ होने वाला है।
2: हाँ, बता डालिए, फिलिप्स की हत्या के समय वहां कौन कौन थे? कहिए, बोलिए।
0: मिस्टर थॉमसन, मेरे कमजोर पक्ष पर चोट कर आप लोग सोचते हैं कि मैं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप उनकी मर्जी बात कर सकते हैं। मिस्टर थॉमसन, जितना भी सताना हो मुझे सताइए, पर उसे छोड़ दीजिए।
2: सॉरी मिस्टर बेंच, आपकी वजह से,
0: सिर्फ
2: आपकी की वजह से
0: मिस्टर थॉमसन,
2: आपकी फूल जैसी जिनी को कीड़ों ने काट खाया।
0: मिस्टर थॉमसन, मिस्टर थॉमसन, थॉमसन।

0: taking as well all other aspects into account, Benjamin Molloy has been proved guilty in the eye of law.
1: दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया सरकार द्वारा गठित सर्वोच्च अदालत ने अश्वेत तरुण कवि बेंजामिन मोलेस को जघन्य नरहत्या, राष्ट्रद्रोहिता एवं सरकार विरोधी षड्यंत्रों में लिप्त रहने के अपराध में प्राण दंड से दंडित किया है।

0: मिस्टर मोलेस, मुझे सख्त अफसोस है।
1: कौन? मिस्टर थॉमसन।
0: इस वक्त बीती बातें याद कर आपको पछतावा नहीं हो रहा मिस्टर मोलेस?
1: नहीं, कोई पछतावा नहीं, वजह भी तो नहीं, बल्कि मुझे गर्व है।
0: अब भी वक्त है मिस्टर मोलेस, अपनी राय बदल कर अगर आप सच्चाई बता दें तो।
1: धन्यवाद। आपको और कोई जरूरी बात न करनी हो तो आप जा सकते हैं।

0: दंडित कवि की मां ने प्रेटोरिया की बोखा सरकार से पुत्र की प्राण भिक्षा के आवेदन किया था, लेकिन सरकार ने उस आवेदन को ठुकरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत कवि बेंजामिन मोरेस को दी गई मौत की सजा को माफ कर देने के लिए विश्व के अनेक राष्ट्र नेताओं ने प्रिटोरिया सरकार से निवेदन किया है।
1: वो इंसान नहीं है जी, वो इंसान नहीं है। आवेदन निवेदन किसी का भी कोई मूल्य नहीं है उनके पास, कोई चीज उन्हें नहीं छूती।
2: इतने बड़े झूठ को उन्होंने जबरदस्ती अपनी मनमानी जालसाजियों से सच साबित कर दिया। इस तरह का जुल्म नहीं चल सकता।
1: उनके लिए सच नाम की कोई चीज नहीं है बेटी, ना इंसाफी और झूठ। उनके कानून है, उनके औजार है।
2: तुम्हारी कविताएं कब सच होंगी बेंच?
1: कब कब?

मुझे गर्व है अपने ऊपर, मेरा जीवन गौरव मंडित, जितना जीवन मैंने भोगा मुझे गर्व है उस जीवन पर। मातृभूमि के मस्तक पर लो मैंने अपने शुद्ध रक्त से तिलक किया है, बंदी गृह की लौह सलाखा मेरे प्राणों को बंधन में रख सकने में कभी नहीं हो सकती सक्षम। निकल पड़ूंगा मुक्ति राह पर, मुझे मिला था मात्र एक जीवन जो मैंने सौंप दिया है स्वतंत्रता को।

उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे ने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। बातचीत श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचती एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना, फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है युवाओं का अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुत करता है सौरभ कुमार।

दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी मेरी ही तरह कुशलता से होंगे। दोस्तों आज के कार्यक्रम के रूपरेखा के बारे में बताऊं तो आरंभ में आप जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में, फिर होगा डेली ट्रिविया एंड फन फैक्ट। इसके इतर आज आप भारतीय संविधान को भी जानेंगे एवं अंत में कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर भी प्रकाश डालेंगे और कार्यक्रम के दौरान हम लोग हिंदी फिल्मी गीतों का भी लुफ्त लेंगे। तो आइए आरंभ में सुनते हैं गदर 2 फिल्म का ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं सैयद कादरी ने, संगीत दिया है मिथुन ने, आवाजें हैं विशाल मिश्रा, सहनाज अख्तर, साहिल अख्तर और नीति मोहन की।

इस गीत के बाद अब आइए बढ़ते हैं चर्चा की ओर एवं जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। योग कर्मसु कौशलम अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। योग हमारे प्यारे देश भारत की एक अत्यंत प्राचीन और अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है, जो शरीर मन एवं आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करती है। आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव एवं अस्वस्थ जीवन शैली के बीच योग एक वरदान सिद्ध हुआ है। वैश्विक स्तर पर इसके महत्व को स्वीकार करते हुए हर साल 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आधिकारिक वैश्विक थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। इस थीम का मुख्य फोकस बढ़ती उम्र यानी बुढ़ापे में भी लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं स्वस्थ बनाए रखना है। यह विषय न केवल जीवन की अवधि को बढ़ाने पर बल्कि स्वस्थ जीवन काल को बेहतर करने पर जोर देता है। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष का मुख्य राष्ट्रीय समारोह पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व किया। आयुष मंत्रालय ने बुजुर्गों और विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के लिए विशेष रूप से तैयार 10 योग प्रोटोकॉल लॉन्च किए हैं, ताकि हर उम्र के व्यक्ति सुरक्षित रूप से योग अपना सकें। दोस्तों, इस दिवस को वैश्विक मंच पर लाने का मुख्य श्रेय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। 27 दिसंबर 2014 को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया भर के लोगों से योग अपनाने का आह्वान किया था। भारत के इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड 177 देशों का समर्थन मिला। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 2014 को आधिकारिक रूप से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। दुनिया का पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था, जिसमें करोड़ों लोगों ने एक साथ योग किया था। 21 जून को चुनने के पीछे का एक विशेष वैज्ञानिक और भौगोलिक कारण है। यह दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। इस दिन सूर्य जल्दी उदय होता है और देर से ढलता है, जिससे धरती पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। भारतीय संस्कृति में इस समय को आध्यात्मिक सिद्धियों और सकारात्मक ऊर्जा के लिए बेहद अनुकूल माना गया है। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग अष्टांग योग बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। छात्रों के लिए योग बेहद फायदेमंद है, क्योंकि यह मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बेहतर कर एकाग्रता और याददाश्त बढ़ाता है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि यह दुनिया को स्वस्थ तथा शांतिपूर्ण बनाने का एक निरंतर चलने वाला अभियान है। यह भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी चरितार्थ करता है। हमें केवल योग दिवस के दिन ही नहीं, बल्कि हर दिन योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ नागरिक से ही एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण संभव है। दोस्तों, चर्चा में आज इतना ही। अब आइए लेते हैं कार्यक्रम में सैयारा फिल्म के इस गीत का आनंद, जिसकी शब्द रचना की है इरशाद कामिल ने, धुन बनाई है तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला एवं अरसलन निजामी ने, और गायक कलाकार हैं फहीम अब्दुल्ला।

0: साथियों, इस गीत के बाद डेली ट्रिविया में आज का प्रश्न है, वर्तमान में आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक कौन हैं? इस प्रश्न का सही जवाब आज के कार्यक्रम में ही आपको जानने मिलेगा, इसलिए आप बने रहिएगा कार्यक्रम युववाणी के साथ। अब आइए बढ़ते हैं आज के साप्ताहिक स्तंभ की ओर एवं जानते हैं संविधान के भाग 18 के बारे में। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। ये प्रावधान मुख्य रूप से भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अनुच्छेद 352 में ये निहित है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कार्यक्रम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संदेशों को।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
2: 870-001-4242।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
4: अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी साथियों का पुनः स्वागत है। क्या आपको पता है वर्तमान में प्रसार भारती के CEO कौन हैं? दोस्तों, वर्तमान में प्रसार भारती के CEO हैं गौरव द्विवेदी। फन फैक्ट के इस सेगमेंट के बाद अब लीजिए सुनिए भेड़िया फिल्म का ये गीत, जिसके गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार हैं सचिन जिगर और गायक कलाकार हैं अरिजीत सिंह एंड सचिन जिगर।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों अब आइए जानते हैं देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। 52वें G7 समिट 13 से 15 जून 2026 को फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित किया गया। यह समूह ग्लोबल इकोनॉमी, ट्रेड, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज और इंटरनेशनल सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर चर्चा करता है। इंडियन गवर्नमेंट ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को इंडियन आर्मी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया है। वे वर्तमान में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर कार्यरत हैं और 30 जून 2026 को जनरल उपेंद्र द्विवेदी के रिटायर होने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। साइंटिस्ट ने दुनिया की पहली वर्किंग न्यूक्लियर क्लॉक डेवलप की है, जो थोरियम 229 के न्यूक्लियस की एनर्जी में होने वाले सटल चेंजेस का यूज करके समय मापती है। यह उपलब्धि चाइना और यूरोप के रिसर्चर्स द्वारा प्राप्त की गई है। काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व ने पहली बार ग्रेटर हॉग बैजर पर वैज्ञानिक आकलन रिपोर्ट जारी की है। यह एक रात्रिचर सर्वाहारी और जमीन में बिल बनाने वाला स्तनधारी है। असम में इसे स्थानीय रूप से माती गाहोरी कहा जाता है, क्योंकि इसकी थूथन सुअर जैसी होती है और यह मिट्टी खोदता है। इंडिया की पहली 8-लेन ट्विन ट्यूब टनल राजस्थान के मुकुंद्र हिल्स टाइगर रिजर्व से नीचे बनाई गई है। यह लगभग 4.9 किलोमीटर टनल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना का हिस्सा है और 20 जून 2026 से शुरू होने वाली है। इस सुरंग का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि सड़क यातायात भूमिगत रहे एवं टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की आवाजाही पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। दोस्तों करंट अफेयर्स के इस सेगमेंट में आज बस इतना ही। आप सभी से अब से कुछ ही देर पहले डेली ट्रिविया में एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न था, वर्तमान में आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक कौन हैं? इसका जवाब है, वर्तमान में आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक हैं राजीव कुमार जैन। डेली ट्रिविया के बाद अब लीजिए सुनिए युववाणी कार्यक्रम का ये आखिरी गीत, जिसकी पंक्ति लिखी है अमिताभ भट्टाचार्य ने। इन पंक्तियों को संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने। आवाजें हैं अरिजीत सिंह एवं जोनिता गांधी की और फिल्म का नाम है ब्रह्मास्त्र।

इस गीत के साथ ही आज का युवावाणी कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर है। आशा करता हूँ आप सभी साथियों को हमारी ये प्रस्तुतिकरण पसंद आई होगी। अगले कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने दोस्त प्रशांत कुमार आर्य को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

युवावाणी कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। प्रस्तुतकर्ता थे सौरभ कुमार। 5:30 हो चुके हैं। पेश है फिल्म संगीत। आरंभ में सुनिए आप आए बहार आई फिल्म का नगमा, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: आन मिलो सजना। इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार हैं आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीतकार हैं।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: क्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: फिल्मी गीत आप इस वक्त सुन रहे हैं आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। अब सुनिए कश्मीर की कली फिल्म में मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को। गीतकार हैं एसएच बिहारी और संगीतकार हैं ओपी नैयर।

0: प्रजाति, फफूंद, वायरस, जीवाणु एवं हार्मोन। ट्राइकोग्रामा द्वारा कीट नियंत्रण। ट्राइकोग्रामा एक अत्यंत सूक्ष्म कीट है जो अनेक प्रकार के शत्रु कीटों पर आक्रमण करता है। यह एक अंड परजीवी है जो शत्रु कीट के अंडों में अपना अंडा देकर उन्हें नष्ट कर देता है। इस प्रकार यह एक जैविक कीटनाशी का काम करता है जो सिर्फ अपने लक्षित शत्रु कीट को मारता है और मनुष्य या पशुओं के स्वास्थ्य पर कुभाव छोड़े बिना पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है। खेत में छोड़ने की विधि। इसके लिए ट्राइकोकार्ड को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पत्तियों की निचली सतह पर स्टेपलर द्वारा लगा देते हैं। इस विधि से ट्राइकोग्रामा का समान वितरण पूरे खेत में हो जाता है। ट्राइकोग्रामा को शाम के समय छोड़ना चाहिए क्योंकि दिन का उच्च तापमान इन कीटों के प्रतिकूल होता है। लगाने के कुछ ही घंटों में ट्राइकोकार्ड स्थित परजीविक अंडों से ट्राइकोग्रामा के वयस्क निकलने शुरू हो जाते हैं। सावधानियां। इस कार्ड को परजीवी निकलने की तिथि से एक दिन पहले प्रयोग करें। कार्ड को 16 टुकड़ों में फाड़ने के निशान से फाड़कर अलग करें तथा धागे की सहायता से पत्तियों की निचली सतह पर बांधे ताकि सूर्य की सीधी किरण न पड़े। ट्राइकोकार्ड को शाम के समय खेत पर छोड़े। ट्राइकोकार्ड छोड़ने के एक सप्ताह पहले एवं एक सप्ताह बाद किसी तरह का रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग न करें। ट्राइकोकार्ड को एक समान रूप से खेत पर फैलाएं। जैविक नियंत्रण से लाभ। इसमें कम लागत में अधिक लाभ होता है। इस विधि द्वारा लक्षित कीटों का ही नियंत्रण होता है। कीटों में प्रतिरोधात्मक क्षमता के बढ़ने, पर्यावरण प्रदूषण एवं लाभकारी कीटों के नष्ट होने का भय नहीं रहता है। जैविक नियंत्रण के समय अधिक गर्मी, तेज हवा, अधिक आर्द्र वातावरण नहीं होना चाहिए। जैविक कीटनाशी। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया से बना कीटनाशी जैसे बायोलेप, हाल्ट, डेल्फिन, डाइपेल इत्यादि के व्यवहार से गोभी का पतंग, चना का फली छेदक, तंबाकू के पिल्लू को नियंत्रित किया जा सकता है। वायरस से बना जैविक कीटनाशी जैसे हेलियोकिल द्वारा चना के फली छेदक एवं तंबाकू के पिल्लू को नियंत्रित किया जा सकता है। वायरस से बने कीटनाशी जो बाजार में उपलब्ध है वे है हेलियोकिल या हेलिसाइट। यह चना के फली छेदक, टमाटर एवं मिर्च के फल छेदक कीटों का नियंत्रण करते हैं। यह तंबाकू के पिल्लू के नियंत्रण के लिए काफी उपयुक्त कीटनाशी है। नीम से बना कीटनाशी बाजार में उपलब्ध है जैसे अचूक, निम्बिसिडिन, नीम गोल्ड, नीमोल आदि, जिसके व्यवहार से रस चूसने वाले कीड़े एवं पिल्लू को भी नियंत्रित किया जा सकता है। कीट प्रबंधन।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी की बातों को हम लोगों ने सुना और इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय भी यहीं समाप्त होता है। लेते हैं आप सबों से विदा। सबको सोना का नमस्कार।
2: सबका गैरू के भी नमस्कार।

ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। 7 बजे हैं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: मंत्री संजय सेठ और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी समेत कई गणमान्य लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुई और योग को स्वस्थ जीवन के लिए बेहद जरूरी बताया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के मोरहाबाद स्थित ऑक्सीजन पार्क में बच्चों के साथ योगाभ्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है। श्री मरांडी ने योग को सभी से अपनाने का आग्रह किया।
1: अगर आदमी सुबह उठा आधा घंटा एक घंटा समय देता है तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया आप इस अंगीकार के और पूरी दुनिया में आप सार्वजनिक रूप से आप सभी जो करते हुए आपको लोग दिखाई।
2: राज्य के साहिबगंज, खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, बोकारो, देवघर, जामताड़ा, गुमला, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, दुमका, धनबाद और गोड्डा सहित सभी जिलों में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और प्रशासनिक अधिकारियों, सुरक्षा बलों, विद्यार्थियों और आम लोगों ने भी सामूहिक योगाभ्यास किया। राजधानी रांची समेत राज्य भर के 67 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा ली गई। सभी परीक्षा केंद्रों पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था किए गए थे। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए एनटीए और जिला प्रशासन की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए थे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची संसदीय क्षेत्र के कांके में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। 4,54,00,000 रुपए की लागत से पादगाई से बंटोली तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। श्री सेठ ने कहा कि यह सड़क क्षेत्र के आवागमन को सुगम बनाने के साथ विकास को नई गति प्रदान करेगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत छतरपुर और नौडीहा बाजार प्रखंड में कई महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम भी मौजूद थे। इस दौरान श्री किशोर ने कहा कि इन योजनाओं के पूर्ण होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलेगी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्पष्ट किया है कि SIR के प्रारूप मतदाता सूची में अनकलेक्टेबल इन्यूमरेशन फॉर्म की 5 श्रेणियां शामिल नहीं की जाएंगी। उन्होंने आज कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक और गलत जानकारी फैलाई जा रही है कि मौजूदा मतदाता सूची से कुछ मतदाताओं के नाम हटा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 30 जून से 29 जुलाई तक वर्तमान मतदाता सूची के सभी मौजूदा मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म प्रदान किया जाएगा और वे सभी मतदाता जो हस्ताक्षर इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करेंगे उन्हें SIR की प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने आज देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर श्री दुबे ने बताया कि कल से उनके संसदीय क्षेत्र में निःशुल्क नमो एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा ATM के जरिए प्रत्येक परिवार को 20 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।
3: इस लोकसभा के 14 से 15 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा और जो गांव में लगेगा उसमें सबको ATM कार्ड देंगे तो 20 लीटर से ज्यादा एक परिवार को शुद्ध पीने का पानी मिलेगा। और तीसरा हमने ये तय किया है कि अब प्रत्येक विधानसभा में निःशुल्क एम्बुलेंस मिलेगा, उसका एक टोल फ्री नंबर हम जारी करेंगे और 24 घंटे 365 दिन जब भी लोगों को आवश्यकता होगी वो एम्बुलेंस मिलेगा।
2: राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की करारी हार के बाद इंडी गठबंधन में बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि कांग्रेस, माले और राजद के नेताओं द्वारा दिया जा रहा बयानबाजी उचित नहीं है। श्री पांडे ने इस मामले पर महागठबंधन के नेताओं के साथ समीक्षा।
4: इसके तरफ से क्या बयान आ रहा है, आरजेडी के तरफ से क्या बयान आ रहा है और माले के तरफ से क्या बयान आ रहा है, ये सभी चीजें हम लोगों के संज्ञान में है। लेकिन इस तरह से गठबंधन में अगर हम लोग सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पे आरोप लगाएं तो उससे बेहतर होगा कि हम गठबंधन की बैठक करें और उस गठबंधन की बैठक में हम चर्चा कर लें और उसके बाद जो भी निर्णय हो गठबंधन में उस निर्णय को हम लागू।
2: धनबाद में आम उत्पादकों को बाजार से जोड़ने और बागवानी को बढ़ावा देने की दिशा में जिला प्रशासन ने आज आम उत्सव की शुरुआत की है। जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि स्थानीय किसानों द्वारा प्राकृतिक तरीके से उत्पादित आम लोगों द्वारा खूब पसंद किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आम बागवानी के जरिए किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
5: इस साल हम लोग टारगेट लिए हैं कि जितना हर साल आम बागवानी होता है इस साल उसका कम से कम 2 से 3 गुना आम बागवानी हम लोग करेगा से करेंगे। मेन समस्या जो झारखंड की है पठारी क्षेत्र है पानी का, तो वो हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 एकड़ से बड़ा का पैच हो, वहाँ हम लोग पानी के लिए DMFT से जिला योजना से पानी का स्रोत जो है डीप बोरिंग करके या चापाकल बना के देंगे।
2: मौसम विभाग केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक 23 जून तक राज्य के कुछ और इलाकों में मानसून प्रवेश कर सकता है। केंद्र के मुताबिक राज्य में 27 जून तक बारिश आंधी और वज्रपात की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान धनबाद के तोपचांची में सर्वाधिक 40.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। हॉकी, भारत ने FIH महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। भारतीय टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर दूसरी बार यह प्रतियोगिता जीती है। गौरतलब है कि इस टीम में झारखंड की 3 बेटियां कप्तान सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और दीपिका सोरेंग शामिल थी। इस खिताबी जीत के साथ ही भारत ने महिला FIH प्रो लीग में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला हॉकी टीम को जीत के लिए बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर झारखंड समेत देश दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा का हुआ संचार। प्रधानमंत्री ने कहा बेहतर भविष्य के लिए योग जरूरी। राजधानी रांची समेत राज्य के 67 केंद्रों पर NEET UG की परीक्षा संपन्न। केंद्रों पर दिखे कदाचार मुक्त परीक्षा के व्यापक इंतजाम। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची संसदीय क्षेत्र के सड़कों की दी सौगात। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने छतरपुर में सड़क निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा SIR के प्रारूप मतदाता सूची में अनकलेक्टेबल इन्यूमरेशन फॉर्म की 5 श्रेणियां नहीं की जाएंगी शामिल। और भारत ने जीता FIH महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब। मेजबान न्यूजीलैंड को एक तरफा मुकाबले में 2 गोल से किया पराजित। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 7:11 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोकगीत रूपा सिंह से। आरंभ में इनसे सुनिए ये देवी गीत।

लोकगीत आप सुन रहे थे रूपा सिंह से, प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:30 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: फैन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच।

0: 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: AIR at 90. आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट दर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने संदेश में कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की घोषणा, अगले वर्ष से योग राज्य के स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नीट यूजी पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न, राज्य के 34 जिलों के 331 केंद्रों पर किया गया परीक्षा का आयोजन। और वैभव सूर्यवंशी के नाम नया विश्व रिकॉर्ड, श्रीलंका ए के खिलाफ एक दिवसीय मुकाबले में 11 गेंदों पर सबसे तेज अर्धशतक लगाया। अब समाचार विस्तार से। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज देश विदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष का विषय है, बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। योग दिवस का मुख्य आयोजन आज सुबह पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वयं तारासन, अर्ध चक्रासन, भद्रासन, त्रिकोणासन सहित कई योग मुद्राओं का अभ्यास किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि योग आज दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन माना जाना चाहिए।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित योग कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने लोगों से योग को अपनी जीवन शैली में शामिल करने की अपील की है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने लोक भवन में आयोजित योग शिविर में भाग लिया और योगाभ्यास किया। इधर राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न स्थानों पर योग दिवस के अवसर पर योग शिविर और योगाभ्यास का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित शिविर में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और रामनाथ ठाकुर, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों ने यहां योगाभ्यास किया। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से भी योग शिविर कार्यक्रम आयोजित किए गए। पटना उच्च न्यायालय में इस अवसर पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि अगले वर्ष से बिहार के स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में योग को शामिल किया जाएगा। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग भारत की प्राचीन और अमूल्य सांस्कृतिक विरासत है तथा स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन का आधार है। उन्होंने लोगों से नियमित योगाभ्यास को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है। श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से योग को वैश्विक पहचान मिली है। आज दुनिया के अनेक देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे। इससे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने मुख्यमंत्री से राज्य के स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में योग को शामिल करने का अनुरोध किया था। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री कुमार ने कहा कि आधे घंटे का योग कार्यक्रम वैकल्पिक तौर पर पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए।
2: आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध की है कि योग को बिहार के जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उसके पाठ्यक्रम में शामिल करें। आधे घंटे का एक प्रोग्राम होना चाहिए योग का, जिसमें योग ध्यान योग निद्रा कराई जाए। और वो कोई बात ही नहीं है आप करने के लिए, हम इलेक्टिव रखेंगे, आपको करना है करें, ना करना है ना करें। उसके लिए कोई अटेंडेंस बनाने की जरूरत नहीं है, क्लास करने की जरूरत नहीं है, अगर करें तो करें, कोई एग्जाम नहीं लेंगे बस।
0: मुंगेर स्थित बिहार योग विद्यालय के पादुका दर्शन आश्रम में विद्यालय के अध्यक्ष स्वामी कैवल्यानंद महाराज के संचालन में योगाभ्यास किया गया। इसमें योग साधकों, श्रद्धालुओं और आम नागरिकों ने भाग लिया। औरंगाबाद के सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित योग कार्यक्रम में पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। कटिहार के फणीश्वर नाथ रेणु ऑडिटोरियम में रेल मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग शिविर में भाग लिया। शिविर का उद्घाटन DRM किरेंद्र नरह ने किया। लखीसराय के बड़ैया प्रखंड अंतर्गत BNM कॉलेज परिसर में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त समेत कई वरीय अधिकारी शामिल हुए। भभुआ व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित योग कार्यक्रम में न्यायिक पदाधिकारियों ने योगाभ्यास किया। पटना के इको पार्क में सशस्त्र सीमा बल सीमांत मुख्यालय पटना और SSB की 40वीं वाहिनी के संयुक्त तत्वाधान में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अरवल के समाहरणालय पार्क में आयोजित योग कार्यक्रम में जिलाधिकारी अमृता बैंस समेत विभिन्न पदाधिकारियों ने योगाभ्यास किया। भोजपुर जिला मुख्यालय आरा स्थित खेल भवन में आयोजित योग शिविर में विभिन्न खेल संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों और खिलाड़ियों ने योग किया। सुपौल के महात्मा गांधी चिल्ड्रन पार्क, दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर, अररिया के व्यवहार न्यायालय प्रांगण और खेल भवन, बक्सर के रामरेखा घाट समेत सभी जिलों में योग शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के तत्वावधान में आज NEET UG पुनर्परीक्षा का आयोजन किया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा भारत के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई। परीक्षा में 2,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए। प्रदेश के 34 जिलों में 331 केंद्रों पर NEET UG परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो गई। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू हुई और अपराह्न 5:15 बजे समाप्त हुई। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। पटना में कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा भवन के आसपास विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई। इसके साथ ही कई मार्गों पर परीक्षा की समाप्ति तक वन वे ट्रैफिक लागू रहा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की आज पटना में आयोजित बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर निर्वाचन की विधिवत घोषणा की गई। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इससे संगठन को नई वैचारिक ऊर्जा मिलेगी। बैठक में उमेश सिंह कुशवाहा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर निर्वाचन को भी औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया। राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि अन्य राज्यों में भी जदयू को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वे स्वयं अन्य राज्यों में जाकर पार्टी के विस्तार के लिए कार्य करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
5: राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी के निर्वाचन का अनुमोदन किया गया। इस बैठक में 4 प्रस्ताव पेश किए गए।
0: बैठक में पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, विधायक और विधान पार्षद शामिल हुए। समस्तीपुर के रहने वाले युवा क्रिकेटर खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। वैभव ने श्रीलंका के दाम्बुला में खेले जा रहे त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में आज श्रीलंका ए के खिलाफ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 11 गेंदों में अर्धशतक बनाया। इनमें 5 चौका और 5 छक्का शामिल है। वैभव ने 29 गेंदों में 94 रन बनाए। इधर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और प्रसिद्ध खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने वैभव की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत को अगला स्टार मिल गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यह खिलाड़ी कई और रिकॉर्ड ध्वस्त करेगा। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल की कप्तानी में 15 सदस्यीय टीम में विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल की वापसी हुई है। दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन ने टीम में अपनी जगह बनाए रखी है। सीरीज का पहला मैच 14 जुलाई को एजबेस्टन में खेला जाएगा। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार हो रही हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मानसून की एक ट्रफ रेखा राज्य के जमुई और मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर भागों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश हो सकती है।
6: 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। अररिया, कटिहार एवं किशनगंज जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा उष्ण लहर के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा एवं सुपौल जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर राज्य के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आज भी बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर समेत विभिन्न जिलों में लू की स्थिति बनी रही। प्रचंड गर्मी के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी स्कूलों में 30 जून तक शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन प्रातःकालीन सत्र में ही करने का निर्देश दिया है। इधर पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने 8वीं कक्षा तक सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 27 जून तक शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। भोजपुर जिला प्रशासन ने कक्षा 8 तक सभी स्कूलों में 24 जून तक पठन पाठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने अपने आदेश में कहा है कि वर्ग 9 से 12 तक की कक्षाएं सुबह 11 बजे तक ही संचालित की जाएंगी। दरभंगा और जयपुर के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस सेवा आज से शुरू हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान की राजधानी जयपुर के खातीपुरा में आयोजित समारोह में सप्ताह के 6 दिन चलने वाली इस नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस ट्रेन का नियमित परिचालन कल से शुरू होगा। नई ट्रेन सेवा से मिथिलांचल और उत्तर बिहार के यात्रियों, विशेषकर कामगारों, व्यापारियों और पर्यटकों को राजस्थान आने जाने में अधिक सुविधा मिलेगी। पटना जिले के दानापुर अनुमंडल अंतर्गत शाहपुर दियारा के हेतनपुर गांव में गंगा नदी में स्नान के दौरान डूबने से 3 किशोरों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नहाते हुए ये किशोर गहरे पानी में चले गए और डूब गए। अंचलाधिकारी चंदन कुमार ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दानापुर से भाजपा विधायक और सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मृतक के परिजनों को नियमानुसार उचित मुआवजा और सरकारी सहायता दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वैशाली जिला प्रशासन द्वारा संचालित जियो नन्ही परी पहल को बालिका सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रतिष्ठित एस्कॉच अवार्ड मिला है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने यह सम्मान प्राप्त किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने संदेश में कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की घोषणा, अगले वर्ष से योग राज्य के स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नीट यूजी पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न, राज्य के 34 जिलों के 331 केंद्रों पर किया गया परीक्षा का आयोजन। और वैभव सूर्यवंशी के नाम नया विश्व रिकॉर्ड, श्रीलंका ए के खिलाफ एक दिवसीय मुकाबले में 11 गेंदों पर सबसे तेज अर्धशतक लगाया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है गोपालगंज जिले की हलचल। गोपालगंज जिले की हलचल को पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता मदीश कुमार तिवारी।
9: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज जिले में विभिन्न स्थानों पर योग शिविरों का आयोजन किया गया। शहर के मिंज स्टेडियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सदर विधायक सुभाष सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और योगाभ्यास किया। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी री एग्जाम का आयोजन जिले के 7 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। परीक्षा को कदाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई तथा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई। परीक्षा में कुल 3,906 अभ्यर्थियों ने शामिल होने की व्यवस्था की गई थी। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बीते दिनों प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास कार्य हुए हैं। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें बिना सीटेट या टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों को वर्ष 2028 तक यह योग्यता प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। मंत्री ने कहा कि बिहार की स्थिति अन्य राज्यों से अलग है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक, शिक्षा मित्र और टीआरई के माध्यम से नियुक्त शिक्षक कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है।
10: क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के हम भी चिंतित हैं और सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो देश भर के मामले को देख करके और कोई ना कोई डायरेक्शन हमेशा वहां से पास होता रहा है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर न हम हैं न हमारी सरकार है, उसका अध्ययन करेंगे। हमने अपने लीगल टीम को कहा है कि उसका अध्ययन करिए।
9: जिले में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार जारी है। गर्म हवाओं और उमस भरे मौसम के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। वर्षा नहीं होने के कारण कृषि कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि सारण नहर में पानी छोड़े जाने के बाद नहर क्षेत्र के किसानों ने धान की नर्सरी तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन ने लोगों से दोपहर में अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यालयों के संचालन को लेकर विशेष निर्देश जारी किया है। जिला पदाधिकारी ने आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में प्री स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र तथा कक्षा 1 से 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 27 जून तक रोक लगा दी है। वहीं कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई केवल सुबह 11 बजे तक ही संचालित करने का निर्देश दिया गया है। इधर जिले में प्रशासनिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। गोपालगंज के जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा का स्थानांतरण कर दिया गया है। उनकी जगह पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समीर सौरभ को नया जिलाधिकारी बनाया गया है। बीते दिनों जिले में भी सूत्री कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार तथा अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की गई तथा जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
11: जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है और NDA सरकार केंद्र और राज्य की योजनाओं का हमारी जनता तक सही रूप से पहुंचे, इसको गंभीरता के साथ अगली बैठक के पूर्व अनुपालन को लिए निर्देश दिया गया
9: है। इधर रेल यात्रियों के लिए जिले में एक महत्वपूर्ण सुविधा शुरू हुई है। छपरा थावे रेलखंड के दिघवा दिघोली स्टेशन पर थावे सूरत ताप्ती गंगा एक्सप्रेस का ठहराव प्रारंभ हो गया है, जिसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने किया। उन्होंने कहा कि इस ठहराव से क्षेत्र के लोगों को बड़े शहरों में आने जाने की सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। पिछले दिनों जिले के सभी न्यायिक पदाधिकारी पैदल चढ़कर न्यायालय पहुंचे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गीता गुप्ता ने बताया कि ईंधन की उपलब्धता में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए ऊर्जा संरक्षण और देश हित के संदेश के रूप में यह पहल की गई है। गोपालगंज को पश्चिम चंपारण से जोड़ने वाले मंगलपुर सेतु में पिलर संख्या 5 के समीप स्पेन में गैप पाए

0: जाने के बाद प्रशासन ने बड़े मालवाहक वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। सेतु की तकनीकी जांच के लिए IIT और NIT पटना के विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है, जिनकी निगरानी में मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। मुकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह को गोपालगंज न्यायालय से बड़ी राहत मिली है, उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है। विशेष MP MLA न्यायालय ने शर्तों के साथ उन्हें जमानत प्रदान की है। उन पर मीरगंज थाना में हथियार लहराने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
1: अभी आप सुन रहे थे गोपालगंज जिले की हलचल। गोपालगंज जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मदेश कुमार तिवारी।
2: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 7:53 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर लहरी। कलाकार हैं डॉक्टर अजय राय। आरंभ में इनसे सुनिए निराला की ये रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में आप सुन रहे थे डॉक्टर अजय राय को। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। 8 बजे हैं विशेष भेंट वार्ता के अंतर्गत स्वस्थ आयु के लिए योग विषय पर भेंट वार्ता सुनिए। भेंट वार्ताकार हैं कुलदीप गोस्वामी और भेंट करता है मोहम्मद सरशार अहमद।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, जो कि हर साल 21 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और योग के शारीरिक व मानसिक लाभों से परिचित कराना है। जैसा कि हमें पता है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और 21 जून 2015 से पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। आज हम सब मिलकर 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। इस साल के योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। आज योग दिवस के मौके पर हमने आकाशवाणी परिसर में योग का अभ्यास किया और हमने आमंत्रित किया योग गुरु कुलदीप गोस्वामी जी को। उनके साथ ये छोटी सी भेंट वार्ता। गुरु जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आज हम आकाशवाणी में, हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ योग प्रशिक्षण कराने का, और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आप लोग मिलकर हमारे साथ बहुत ही अच्छा योग किए।
0: गुरुजी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि योग की परिभाषा क्या है।
1: योग एक साधना है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, और योग हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, अपने जीवन में बेहतर

0: बनने के लिए योग ही हमको पहचान देता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। और योग में महर्षि पतंजलि द्वारा एक सूत्र भी बताया गया है कि योगः चित्ति वृत्ति निरोधः, आत्मा परमात्मा का मिलन ही योग कहलाता है। योग जो है आप जैसे करना शुरू करेंगे, आज से ही आप शुरू किए हैं अगर योग, तो आज से ही आपको लाभ मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आज के युवा भारती जितने भी हैं, युवा हमारे सब नशे के लत में जा रहे हैं। यदि हम योग करते हैं तो हमें नशा से दूर होना पड़ जाता है, अपने आप दूर होते चले जाएंगे, आप स्वस्थ, एकदम शरीर आपका स्वस्थ, मन स्वस्थ, एकदम चित्त विचार आपका एकदम शुद्ध होता चला जाता है।
1: पॉजिटिव की तरफ आप जाएंगे, नेगेटिव से दूर होते जाएंगे,
0: नेगेटिव की तरफ से आप दूर होते चले जाएंगे। जी,
1: आपकी जीवन यात्रा में योग की शुरुआत कैसे हुई?
0: शुरुआत यात्रा में, ये जीवन में योग जो है बहुत ही अच्छा लगा हमें, क्योंकि हम शुरुआत में तो योग के बारे में उतना जानते नहीं थे। हम इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे थे और मैं बीमार भी पड़ा, घर की हालत भी कुछ इतना ज़्यादा गड़बड़ थी कि आपसे क्या बताएं। वहाँ क्या है कि हमारे जो गुरु जी हैं, माननीय श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी, जो हमारे ज़िले के हैं, अम्बेडकर नगर ज़िले के, पूरा प्रचारक योग के थे वो पतंजलि की तरफ से। और सुबह सुबह 4 बजे मैं रनिंग कर रहा था तो उनसे मुलाकात हुई और योग जो है उन्हीं के द्वारा हमने सीखा। और आज आपके इस भागलपुर की पावन धरती पर, अंग प्रदेश में, हमें शुभ अवसर मिला योग जिले में पूरा कराने के लिए। और शुरुआती दौर से ही हम बीमार भी थे, योग में पहले से ही बीमार थे, तो योग जब करना शुरू किए तो हम स्वस्थ हुए और इसको अपना जीवन का एक आधार बना लिए।
1: किस तरह का बीमार थे? सर्दी खांसी? हाँ, या
0: नहीं, सर्दी खांसी नहीं, तो केवल क्या था कि पित्त की थैली में 4 mm की पथरी होना
1: जी,
0: ये हमारे लिए सबसे दुखदायक पल था उस समय। और हम ठीक हुए तो केवल योग से ही।
1: जब आप फौज में जाने की तैयारी कर रहे थे, ये उस समय की बात?
0: हाँ, उसी समय की बात है। उसी समय हम बीमार पड़े और ऐसा लग रहा था कि ना फौज में हो पाएंगे, ना कहीं का हो पाएंगे, क्योंकि ये बीमारी आ गई है
1: जी।
0: और बहुत ही दुख के पल थे उस समय।
1: जैसा कि इस साल के योग दिवस का थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग, तो अक्सर बढ़ती उम्र में
0: जी,
1: जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी और संतुलन खोने जैसी समस्याएं होती हैं
0: जी,
1: इनके लिए कौन कौन से योगासन सुरक्षित हैं और प्रभावी हैं?
0: जी, अब देखिए, उम्र बढ़ते के समय क्या है कि हर व्यक्ति को कमजोरी महसूस होता है। पहले से मॉर्निंग वॉक ना करना और योग साधना ना करना, मतलब खाने पीने पे और सही तरीके से ना उसको लाना। और हम एक ही चीज़ बताते हैं, अगर जोड़ों में दर्द हो रहा, पेन हो रहा है, तो आप क्या है कि खड़े होकर पानी ना पिए, पहला चीज़। आप सुधार करिए, बैठ के पानी पीजिए, वो भी घूट घूट करके आराम आराम से पानी पीना। इससे क्या है कि आपकी जोड़ों में दर्द नहीं होगा। और आसन तमाम हैं जो आप करेंगे तो आपको तुरंत ही लाभ मिलेगा। जैसे घुटना संचालन हुआ, घुटने के लिए हो गया, सूक्ष्म व्यायाम हुआ, पैर की दिक्कत, हाथ का सूक्ष्म व्यायाम हुआ, और ग्रीवा संचालन हुआ गले के लिए, सिर का सूक्ष्म व्यायाम हुआ, सिर में कभी दर्द नहीं होगा। तो आपको योग में अगर जुड़ेंगे तो आपको बेहतर ही लाभ मिलेगा।
1: तो बॉडी जैसे बैलेंस करके रहना है कि मतलब थरथराहट ना हो,
0: थरथराहट नहीं होगा। जब शुरुआत में आप करेंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो होंगी
1: जी,
0: क्योंकि पहले से तो किए नहीं है, लेकिन जब आप शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे आपको जो फील है, कमजोरी महसूस हो रही है,
1: वो ठीक होती जाएगी,
0: चले जाएंगे आप। जैसे आप 2-4-10 दिन करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे अंदर जो है अलग सी एनर्जी आ रही है, अलग से ताकत ऊर्जा मिल रहा है, जो हम स्वस्थ बन रहे हैं।
1: तो जैसे याददाश्त यानी मेमोरी को दुरुस्त रखना, अल्जाइमर रोग, डिमेंशिया जैसी बीमारियों, इनके प्रभाव को कम करने के लिए वो कौन से योग साधना या योगासन है जिसको हम लोग अपना सकते हैं?
0: हाँ, इसमें याददाश्त के लिए और मानसिक के लिए जो है, आप एक प्राणायाम बताया गया है और एक आसन भी बताया गया है, जिसे अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये हर व्यक्ति जानता है, समान है, हर आदमी को पता है, हर व्यक्ति को पता है कि लेफ्ट से सांस को लेना, राइट से बाहर छोड़ना, फिर राइट से सांस को लेना, लेफ्ट से बाहर छोड़ना, लेकिन लोग करते नहीं। जैसे आज योगा डे है तो आज तमाम लोग भीड़ लगा के करेंगे योग, बहुत से अच्छे अच्छे फोटो खींच के भेजेंगे व्हाट्सएप फेसबुक पे, लेकिन वो अपने जीवन में उतारते नहीं
1: जी, जो 365 दिन करना है उससे दूर रह के सिर्फ एक दिन करने की कोशिश करते हैं।
0: आज के दिन ही केवल वो दिखाएंगे कि हम योग साधना कर रहे हैं, फिर आज के बाद उनसे पूछा जाए कि भैया आप योग किए हैं तो कहेंगे नहीं।
1: अगर वो प्रतिदिन लेकिन रियल
0: में हीरो बनने के लिए नहीं,
1: 365 दिन अगर अपनाएंगे दिनचर्या में अपने जीवन में तो वो तो आगे लाभ मिलेगा।
0: देखिए अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है कि आपको याददाश्त से लेकर हर चीज आपका दुरुस्त करता है, नर्वस सिस्टम ही दुरुस्त कर देता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। और एक वृक्षासन है जो याददाश्त मजबूत करने के लिए वृक्षासन करें और अपने शरीर को ही बैलेंस बनाता है वो।
1: तो जैसे ये बीपी वगैरह है उनको कंट्रोल करने के लिए
0: बीपी वगैरह भी अनुलोम विलोम से भी कंट्रोल होता है। वैसे आप अगर एक्यूप्रेशर के अनुसार चल रहे हैं तो ताली वादन करें, ताली बजाएं, स्वस्थ रहें।
1: तो अनुलोम विलोम जो साधना है, जो योग है, उसको करने के कुछ हमारे श्रोताओं को टिप्स बताएं कैसे करें।
0: केवल क्या है कि राइट नसका को बंद करेंगे जी, राइट थंब से, और लेफ्ट से श्वास को अंदर भरेंगे फिर राइट से बाहर छोड़ेंगे।
1: मतलब सांस को रोकना भी है बीच में?
0: हाँ, सांस को रोकना नहीं है, केवल राइट लेफ्ट से सांस को अंदर लेना है नक्शा से, और लेफ्ट वाले को बंद करके राइट से बाहर छोड़ना है, फिर राइट से अंदर लेना है, लेफ्ट से बाहर छोड़ना है। इस प्रक्रिया को यदि हम 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक प्रतिदिन करते हैं तो हम क्या है कि आपके अंदर जो भी बीपी की समस्या, मानसिक तनाव, ये सब दूर होंगे, आपको अच्छी नींद भी आएगी। जब नींद आएगी तो आपका अपने आप विचार अच्छा होगा। तमाम लोग हमसे ऐसे मिले हैं कि जो नींद आती ही नहीं, हमसे बोलते हैं कि सर मैं बहुत डिप्रेशन के शिकार हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती, रात रात भर मैं दवा खा के सोता हूँ लेकिन तब भी नींद नहीं आती जी। तो उनको क्या है कि केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, अपने जीवन को बेहतर बनाएं।
1: और लोग आज का जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है उसमें खान पान लोगों का बदल गया है, तो उसके वजह से लोगों को डायबिटीज वगैरह भी हो रही है।
0: डायबिटीज
1: तो उसके लिए
0: जी, डायबिटीज हो रहा है अगर तो केवल खाने पीने पे ही नहीं, वो अपने शरीर पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं जी। जैसे मोटापा बढ़ना, मोटापे से भी आपको क्या है कि डायबिटीज हो जाना, आपको चलने फिरने में दिक्कत है ना। तो केवल क्या है कि योग ही एक ऐसा माध्यम है कि आप डायबिटीज से दूर हो सकते हैं, बीपी समस्या, शुगर से भी निजात पा सकते हैं। उसमें मंडूक आसन बताया गया है, आप गैस संबंधित अगर बीमारियां हो रही है तो पवन मुक्त आसन करिए। जब आप एक योग की तरफ चलेंगे तो आपको एक बेहतर मिलेगा, एक एक स्टेप आप सीखते जाएंगे, आपको हर एक बीमारी जो है आपका दूर होता चला जाएगा। लेकिन आपको करना पड़ेगा, योग कहता है कि हमको करिए तब आप बेहतर बनेंगे, केवल कहने से योग नहीं होता,
1: करने से। गुरुजी, योग के साथ साथ स्वस्थ रहने के लिए या स्वस्थ आयु के लिए किस तरह के खान पान को हम लोग अपनाएं?
0: देखिए हम तो कहते हैं सात्विक भोजन करिए जी। पहली चीज, आप इस भाग दौड़ जीवन में अपने मन विचार पे भी कंट्रोल करिए, उसके लिए आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ें। जैसे आप अखंड ज्योत हुआ, रामायण के कुछ पाठ हुए, और आप जो है खान पीन पे ध्यान दें कि आपको सुबह में डाइट के समय, आप हर आदमी के पास चने हैं, घर में चना होता है खेत में, तो आप चने का सेवन करिए, भिगोइए रात में, सुबह उसको छान कर खाइए। आप क्या है कि इसको खाने से आपका शरीर जो है कमजोरी जो है दूर होगी जी। और अगर बहुत ज़्यादा शरीर में वीकनेस महसूस हो रहा है तो आप किशमिश जानते हैं, किशमिश का प्रयोग करिए। किशमिश को क्या है कि किशमिश को भिगोइए रात में, सुबह उठ के मंजन करके किशमिश का पानी पीजिए, किशमिश खाइए, और थोड़ा क्या है टहलिए, घूमिए, सुबह के समय योग करिए। यदि आप सुबह में नहीं समय पा रहे हैं किसी कारणवश, तो शाम को भी बैठ के प्राणायाम आसन कर सकते हैं आप, खाना खाने से 2 घंटा पहले।
1: तो जैसे आपने चना और किशमिश की बात की, तो उसकी मात्रा क्या रखें?
0: मात्रा जैसे आप क्या है कि अगर आप इसे नॉर्मली ले रहे हैं तो 100 ग्राम चने ले लीजिए, और किशमिश जो है 20 ग्राम 25 ग्राम, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, जितना आप पचा सकें उतना ही खाइए। क्योंकि देखिए अगर आप योग करेंगे तो भूख आपको अच्छी लगेगी, नींद अच्छी आएगी, और आप जो स्टूडेंट लाइफ है वो पढ़ाई भी बहुत अच्छा भी कर सकते हैं, क्योंकि योग में सभी चीज़ का संभव है। और योग हमको क्या सिखाता है, जोड़ना सिखाता है। योग जो है हमको सबसे सर्वप्रथम चीज क्या सिखाता है, जोड़ना। योग शब्द ही उत्पन्न हुआ है जोड़ने के लिए, चाहे हम एक दूसरे को जोड़े चाहे उस परम पिता परमेश्वर से जुड़े।
1: यानी कि अगर आप अच्छी नींद लेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे, तो आप अपनी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, कार्यालय में अच्छा काम कर सकते हैं, जो आपका प्रतिष्ठान है वहाँ पूरा समय दे सकते हैं, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो सारा काम कर पाएंगे।
0: शरीर स्वस्थ रहेगा, सबसे बड़ी काया होती है शारीरिक काया, जो स्वस्थ काया है वही सबसे बड़ी काया है। आप धन कितना भी रख लीजिए, यदि आप स्वस्थ नहीं है तो सब उसके आगे फेल है।
1: गुरु जी, आजकल की जो भागदौड़ जिंदगी है, तो लोगों को जब समय मिलता है वो योग करना चाहते हैं, लेकिन शास्त्रों और विज्ञान के अनुसार योग करने का परफेक्ट समय कौन सा है?
0: परफेक्ट समय यही है, देखिए योग शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो सुबह का ही समय योग किया जा सकता है, जो ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में आप 4:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, 6 बजे तक आप सूर्य उगने से पहले स्नान कर लीजिए, दिनचर्या में अपने लाइए कि गुनगुना पानी सुबह पीना है, टहलना है, घूमना है, क्योंकि सुबह का जो हवाएं होती हैं, जो वायुमंडल होता है वो बहुत शांत रहता है। उस समय यदि हम योग करते हैं तो हमको 100% लाभ मिलता है।
1: यानी सूर्योदय के पहले हम जागे, स्नान करें
0: और
1: नित्य कर्म क्रिया करें, स्नान करें
0: जी,
1: उसके बाद
0: टहल के योग आप करिए, आधा घंटा 40 मिनट जो भी कर सके, आपके पास जितना पर्याप्त मात्रा में समय है। और आप यदि सुबह के समय योग करते हैं तो आपको आप बहुत बेहतर ही आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि देखिए 9 बजे के बाद 8 बजे के बाद क्या है, वायुमंडल दूषित होने लगते हैं, गाड़ी घोड़ा चलने लगते हैं, तो इसलिए वायुमंडल जब शुद्ध रहे, साफ रहे, तब आप करते हैं योग तो आपको 100% लाभ मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में आपकी बॉडी में होगा और आपको कोई बीमारी टच नहीं कर पाएगा।
1: और जो लोग सुबह वक्त नहीं दे पाते हैं और दिन भर ऑफिस रहते हैं, जैसे आप आजकल का वो दौर है बीपीओ का कि लेट नाइट जॉब है, सुबह सोते हैं, तो शाम में अगर कोई योग करना चाहे तो
0: योग करना चाहे सुबह में, तो दिन डूबने के बाद जैसे शाम हो जाए तो उसके बाद आप करिए
1: जी,
0: जैसे क्या सूर्य अस्त होने के बाद यदि हम योग करते हैं
1: जी,
0: तो हमको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है
1: जी,
0: क्योंकि क्या है कि आप शाम को, जैसे सुबह में हम बताते हैं सभी को सूर्य नमस्कार करिए
1: जी,
0: सबसे बेस्ट आसन है सूर्य नमस्कार, जिसमें 12 स्टेप होते हैं, और यदि आप सुबह में नहीं समय पाए हैं किसी कारणवश, तो शाम को चंद्र नमस्कार करिए, और सारी बॉडी का आपका आसन हो जाएगा एक साथ में
1: जी,
0: और आप उसमें प्राणायाम भी कर सकते हैं जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, लेकिन खाना खाने से 1-2 घंटा पहले ही करें, क्योंकि खाना खाने के बाद केवल एक ही आसन किया जाता है, वो भी वज्रासन। वज्रासन में आप बैठेंगे तो आपका भोजन पचेगा आराम से और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, गैस मुक्त रहेंगे। या तो खाना खाने के बाद आप कम से कम 1000 कदम चलना चाहिए।
1: बड़े बूढ़े कहते भी थे कि बेटा खाना खाओ तो चलो,
0: चलो टहलो, थोड़ा टहलना चाहिए, लेकिन अब आज इस भाग दौड़ जीवन में जो भी खाया तुरंत बिस्तर पकड़ लिया, कहाँ योग कहाँ क्या, बस वो दवा के ही सहारे जी रहे हैं
1: जी।
0: हम यही चाहेंगे कि हर व्यक्ति, पूरा भारतवर्ष आज देखिए, आज विदेशों तक योग साधना कर रहे हैं, पूरा अंतर्राष्ट्रीय योग लेवल तक गया है,
1: और हम से लोग यहाँ आ रहे हैं सीखने के लिए,
0: लोग आ रहे हैं योग करने
1: के लिए, योगासन सीखने के लिए। गुरु जी, जो नए अभ्यासी, जो बिगनर्स हैं योग के लिए
0: जी,
1: तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: जैसे उन्हें अष्टांग योग बताया गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उन्हें क्या है कि अपने प्रति जो है बहुत जागरूक रहना है, कि हमें जिसे गुरुदेव के ही, आप जब भी योग साधना करें किसी गुरु के ही संपर्क में करें
1: जी,
0: जो हानि बता रहे हैं जो लाभ बता रहे हैं उसको कंटिन्यू रखना होगा दिमाग में,
1: कब श्वास लेना है, कब छोड़ना है,
0: इस चीज को बहुत नियमित तरीके से उनको सीखना चाहिए, क्योंकि नियमित तरीके से जब तक वो नहीं सीखेंगे तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कौन से रोग में कौन सा योग करें
1: जी,
0: ये चीज को ध्यान रखना होगा, क्योंकि कब सांस लेना है, कब छोड़ना है, खाना खाने से पहले कौन सा योग करना है, खाना खाने के बाद कौन सा योग करना है, इस चीज को बहुत ध्यान रखना है।
1: ये बीमारी अगर हो गई है तो इस बीमारी में कौन सा योग ना करें,
0: ना करें,
1: ध्यान दें, तो वो सब चीजें गुरु ही बताएंगे।
0: हाँ, वो गुरु बताएंगे, तो उस पर उनको कंटिन्यू कंठस्थ रखना होगा कि इस चीज को हम करें या ना करें, इस चीज को उनको दिमाग में रखना पड़ेगा।
1: जैसे किसी को नी पेन हो गया तो नी पेन ठीक करने का तो योग है, लेकिन कोई नी पेन बढ़ा ना दे, उससे भी बचना है, तो वो योग बताने के लिए गुरु का पहले
0: जैसे गुरु क्या है,
1: अटैचमेंट रहे,
0: अटैचमेंट रहे। जैसे कोई कभी कभी क्या होता है कि जैसे कमर में पेन हो रहा है, कमर में पेन हो रहा है तो कुछ आसन ऐसे हैं कि आगे झुकना ही नहीं है, कमर में दिक्कत है तो आगे झुके ना, अब केवल पीछे झुकने वाला काम करेंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे आसन हैं उनमें बताया गया, जैसे भुजंगासन बताया गया, धनुरासन बताया गया है कि कमर में दिक्कत अगर हो रही तो तिर्यक भुजंगासन बताया गया है। तो ऐसे तमाम आसन है कि जो उनको बताया जाए कि भैया हो ऐसा आप करेंगे तो इससे ये लाभ होगा
1: जी।
0: तो कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं समझ पाते हैं
1: जी।
0: और जो कंठस्थ ध्यान देता है लड़का या लड़की, वो आगे चल के अपने आप को भी स्वस्थ रखता है, दूसरों को भी स्वस्थ प्रदान करता है
1: जी। आज की जो युवा पीढ़ी है, आपका उनके लिए क्या संदेश रहेगा ताकि वो अभी से योग अपना कर एक स्वस्थ बुढ़ापे की नींव रखें?
0: जी, हम यही कहेंगे समस्त युवा से कि आप सभी लोग जो है, योग जरूरी है, हर व्यक्ति को जरूरी है, वैसे युवा को तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के युवा अधिक से अधिक हमसे मिले जो कि नशे की लत में चले गए हैं, नशा उनके जीवन में ही बैठ गया है। अगर वो नशे से बचना चाहते हैं तो केवल योग पे ध्यान दें, क्योंकि योग जैसे उन करना शुरू करेंगे, मंत्र का उच्चारण करेंगे और स्वस्थ शरीर होगी उनकी, और जो है सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे तो नशे से धीरे धीरे दूर होंगे और वो बेहतर एक अपना लाइफ बनाएंगे अपना, कि अपनी लाइफ स्टाइल बदल जाएगी उनकी योग से। और योग जो है बहुत ही पवित्र चीज़ है, हर किसी की बस की बात नहीं कि योग कर ले और योग करा ले, क्योंकि योग करने के लिए बहुत से नियम है उनको फॉलो करना पड़ता है कि आपने रात में कितना देर तक सोना है, कितना देर जगना है
1: जी।
0: उसका नियमित है कि आप 10 बजे तक सोइए, फिर सुबह 4 बजे तक आपको जगना है
1: जी।
0: किसी भी हर हालत में
1: जी।
0: चाहे वो ठंड का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो या बरसात का मौसम हो, उसमें आपको क्या है, जगने की जरूरत है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी बोले हैं उठो जागो तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और इसी के सिद्धांत पे हर व्यक्ति को चलना चाहिए। और जो भी हमारे युवा साथी हैं, हम उन सभी से कहेंगे कि आप लोग एक बार योग को जरूर आजमाइए। योग करेंगे तो आपके अंदर जो है कभी भी निगेटिव एक्टिविटी नहीं आएगी कि हम ये गलत करें। आज के युवा क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो निगेटिव में जा रहे हैं, पॉजिटिव में बहुत कम आ रहे हैं। तो हम सभी से यही कहेंगे कि आप योग जरूर करें और अपने आप को बेहतर बनाएं।
1: चलते चलते हमारे रेडियो श्रोताओं के लिए कोई योग मंत्र जो वो अपने जीवन में उतार सकें?
0: जी जी, हम तो एक ही श्लोक बोलते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। हे प्रभु, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, इस जगत में कोई दुखी ना हो। और महामृत्युंजय मंत्र है कि जो आप एक संजीवनी मंत्र का भी रूप दिया गया है महामृत्युंजय मंत्र को, जैसे अकाल मृत्यु आपको कभी टच नहीं कर पाएगा। ओम हूम जूम सह, ओम भूर भुवस्वा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर मोक्षी मामृतात्। इस मंत्र का यदि यथाविधि जाप करते हैं या पढ़ते हैं तो कभी भी वो नशा नहीं करेंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे।
1: गुरु जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी अच्छी लाभजनक बातें बताई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आज हमको इस भागलपुर के अंग प्रदेश में हमको अवसर मिला और आकाशवाणी में बोलने का भी अवसर प्राप्त हुआ और योग कराने का भी अवसर प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं बहुत ही आभार प्रकट कर रहा हूँ कि हमको बहुत ही अच्छा लगा कि हम यूपी से चल के आए, यहाँ हमको मिला, योग कराने का अवसर प्राप्त हुआ और भी 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। और हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि कम से कम हमारे बीच में श्री अतुल सर हैं और जो हमें इस लायक समझे कि यहाँ आप आए हैं तो कम से कम आप हम लोग को भी साक्षर करें। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
1: धन्यवाद
0: जी।
2: विशेष भेंटवार्ता के अंतर्गत आप सुन रहे थे स्वस्थ आयु के लिए योग। इस विषय पर भेंटवार्ता, भेंटवार्ताकार थे कुलदीप गोस्वामी और भेंटकर्ता थे मोहम्मद सरशार अहमद। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। 8:21:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं रजनीगंधा कार्यक्रम में फिल्म संगीत। आरंभ में सुनिए नितिन मुकेश और साधना सरगम को, फिल्म का नाम है खून भरी मांग। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

शोर फिल्म का गीत सुनिए, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, श्यामा चित्तर और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार हैं राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
1: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
2: बख्शी जगबंधु तो
1: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। भारत

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: सीता और गीता, इस फिल्म का गीत सुनिए।

0: आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं राहुल देव परमन।
1: अरे अरे ए ए

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए जमीर फिल्म का गीत आशा भोसले के साथ किशोर कुमार को। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं सपन चक्रवर्ती।

रजनीगंधा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे फिल्म संगीत आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली से समाचार संध्या।

0: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है, इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: का टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
3: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या 0 सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमरीका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड

महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: More than 200 MSMEs contributed to their construction, generating substantial employment and economic activity across the country. Highlighting recent achievements, the Prime Minister said more than 40 indigenously built warships and submarines have been inducted into the Indian Navy over the past few years. The National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026 re-examination for admission to undergraduate medical courses was conducted today amid tight security arrangements. The National Testing Agency, NTA, said more than 20 lakh candidates appeared for the re-examination at 5,440 centres in the country and 14 centres abroad. The examination was conducted in 13 languages, including Hindi and English. The NTA said that extensive arrangements were made for all candidates, including more than 10,000 persons with disabilities. We have more from our correspondent.
1: Aadhaar-based biometric and facial authentication, CCTV surveillance, signal jammers and two-layer frisking with the support of state police were implemented at all examination centres. Command and control centres for CCTV monitoring were established at the NTA headquarters, the Ministry of Education, 34 centrally funded institutions under the Department of Higher Education, as well as in every state and at district collectorates. The examination was conducted with support of Central Armed Police Forces, the Ministry of External Affairs, the Department of Posts, the Indian Air Force and the Ministry of Home Affairs, among others. Several state governments also made arrangements for students and parents, including the provision of shade, drinking water, food, ambulances and standby medical facilities at examination centres. Around 7 lakh officials, including police personnel, observers and examination staff, were mobilised across the country to conduct the examination, which was completed in a record 37 days. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
0: In Tamil Nadu, 7 people have been killed and more than 70 workers affected after an ammonia gas leak at a seafood export company in Periyapalayam today. According to preliminary reports, the death toll may rise as rescue and medical operations continue. The NDRF, along with specialized chemical, biological and nuclear response teams, launched an immediate rescue operation and worked to contain the leak under strict safety protocols. Chief Minister C. Joseph Vijay ordered a high-level inquiry into the incident and directed a 3-member committee to submit a report within 24 hours. The Chief Minister also announced an ex gratia of 2 lakh rupees for the families of each deceased. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the loss of lives in the ammonia gas leak incident at a seafood export unit in Tiruvallur, Tamil Nadu. In social media posts, Mr. Radhakrishnan and Mr. Modi extended their condolences to the bereaved families and prayed for the speedy recovery of those undergoing treatment. The International Day of Yoga is being observed throughout the globe today. The main event in India was held in Kolkata's Red Road, led by Prime Minister Narendra Modi, who performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi emphasized yoga's role in providing pathways from mental wellness to physical wellness.
2: Yoga keval hamare sharirik swasthya par hi focus nahi karta. Yog manasik swasthya se शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है. इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है. यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है.
0: President Draupadi Murmu performed yoga at the Garrison Ground in Jabalpur, Madhya Pradesh. Highlighting the International Yoga Day theme for this year, Yoga for Healthy Aging, she said it underlines the importance of yoga is a celebration of India's great tradition and it has shown humanity the path to a healthy, balanced and meaningful life.
3: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग. ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है. आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है.
0: Vice President C.P. Radhakrishnan participated in the Yoga Day celebrations in Leh. He said yoga is much more than a form of physical exercise and represents an ancient gift from India to humanity. Thousands of residents across the UAE marked International Yoga Day today with mega yoga sessions that transform community venues into hubs of wellness and cultural exchange. In Dubai, the Consulate General of India organized a yoga session at the Dubai Police Officers Club in association with Dubai Police. In Abu Dhabi, around 1,000 yoga enthusiasts and members of the diplomatic corps gathered under the iconic dome of the Louvre Abu Dhabi for a serene sessions organized by the Embassy of India to mark the occasion. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back to the news at 9. The United States and Iranian delegation have begun high-level direct talks at Bürgenstock in Switzerland aimed at strengthening the fragile interim agreement and consolidating efforts to end the West Asia conflict. U.S. Vice President J.D. Vance is leading the U.S. delegation, while Iran's delegation is being led by Speaker Mohammad Bagheer Ghalibaf and Foreign Minister Abbas Araghchi. The talks are being mediated by Qatar and Pakistan. Here is more in this desk report.
4: The meeting is taking place amid Tehran's claim to again close the Strait of Hormuz over Israel's continued attacks on Lebanon, which has been countered by the U.S. military, saying that the waterway is open to all vessels. Ahead of the talks, the U.S. delegation, which also comprises Special Envoy Steve Witkoff and President Donald Trump's son-in-law, Jared Kushner, held a meeting with the Pakistani mediating team. The first clause of the 14-point Memorandum of Understanding between U.S. and Iran published last week requires a ceasefire on all fronts, including Lebanon, where fighting has escalated between Israel and the Iranian-backed armed group Hezbollah. Reshma Tiwari, News Desk.
0: British Prime Minister Keir Starmer is facing increasing pressure to step down as leader of the Labour Party, with some critics calling for Andy Burnham to succeed him. The calls intensified after Burnham secured a decisive victory in the Make a Field by-election in Northern England earlier this week, defeating a challenge from Nigel Farage's Reform UK and strengthening his credentials as a potential future leader. Meanwhile, Starmer says he will continue to lead the party and contest any leadership challenge rather than step aside. He's facing mounting pressure from within his own party for stepping down. And back home, the Central Consumer Protection Authority, CCPA, has imposed penalties of 1 lakh rupees each on Storia Foods and Beverages Private Limited and Bector's Food Specialities Limited for misleading advertisements and unfair trade practices arising from the use of the expression 100% in relation to their food products. The authority has also directed both companies to immediately discontinue the impugned claims from their product packaging websites and all digital platforms. CCPA said that the expression 100% is a precise and absolute numerical expression and cannot be used loosely, approximately, or as a marketing slogan. Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw and Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma today flagged off the Jaipur-Darbhanga Amrit Bharat Express from Khatipura Railway Station in Jaipur. They also inaugurated the mega coaching terminal at Khatipura and dedicated upgraded passenger amenities at several railway stations. The India Meteorological Department has forecast extremely heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Sikkim and sub-Himalayan West Bengal till Saturday, while heavy rainfall is expected in rest of northeast Bihar, Odisha, southern states and Konkan and Goa for the next 4 to 5 days. Thunderstorms conditions will prevail over Rajasthan, Bihar, Jharkhand and Odisha till tomorrow. The thunderstorm, accompanied with lightning and gusty winds, may occur in northern states, Andaman and Nicobar Islands, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Gangetic West Bengal, Madhya Pradesh and Maharashtra for the next 4 to 5 days. Indian women hockey team has lifted the FIH Women's Nations Cup for the second time, defeating host New Zealand 2-0 in the final in Auckland today. With this, Indian team also secured entry to the FIH Women's Pro League. The team produced a stellar defensive display to protect the lead provided by Navneet Kaur and Sunilita Topper. Today's win also marked the return to the Pro League next season. Lalrem Siami was awarded the player of the match, while Deepika finished as the joint top scorer with 6 goals to her name. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian team on their win and praised them for their exceptional performance throughout the tournament. Hockey India has announced a cash award of 3 lakh rupees for each player and 1.5 lakh rupees for each member of the support staff. In cricket, India A defeated host Sri Lanka by 66 runs in the summit clash of the Tri-Nation A series in Dambulla today. Put into bat, India A posted 377 runs for the loss of 9 wickets in the stipulated 50 overs. Indian teenage sensation Vaibhav Suryavanshi smashed a half century in just 11 balls before striking 94 in just 29 balls. In reply, Sri Lanka were bowled out for 311 in 47.1 overs. And in women's cricket, India were 19 for no loss in 4 overs against South Africa in a Group A match of the ICC T20 World Cup in Manchester when reports last came in. India won the toss and opted to bat first. This match marked a major milestone for Captain Harmanpreet Kaur, who became the first cricketer, male or female, to play 200 T20 internationals. The 19th Mumbai International Film Festival 2026 concluded today, bringing down the curtains on a 7-day celebration of non-fiction cinema. The closing ceremony was held at Mumbai's Ravindra Natya Mandir in the presence of Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma, Additional Secretary in the Ministry of Information and Broadcasting, Prabhat, and other dignitaries. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi asserts strong maritime capabilities key to country's economic and strategic influence, commissions 3 indigenous naval warships in Kolkata. NEET re-examination for admission to undergraduate medical courses conducted amid tight security arrangements. In Tamil Nadu, 7 people killed and over 70 affected in ammonia gas leak at a seafood export company in Periyapalayam. US-Iran talks underway in Switzerland to strengthen the interim government and consolidate efforts to end the West Asia conflict. IMD forecasts extremely heavy rainfall in Arunachal Pradesh, Assam, Sikkim and Sub-Himalayan West Bengal till Saturday. Indian women hockey team lifts FIH Nations Cup, defeating host New Zealand 2-0 in final. And in cricket, India lift the Tri-Nation A series, beating host Sri Lanka by 66 runs in the final. And that's all in the news at 9. Good night.
5: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मजबूत बहरी सलाहियतें मुल्क के इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक असर और रसूख के लिए निहायत अहम हैं। उन्होंने कोलकाता में मुल्क में ही तैयार किए गए 3 बहरी जंगी जहाजों को पानी में उतारा। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट का दोबारा इम्तिहान आज सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान मुनक्किद किया गया। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में समुद्री खुराक फराहम करने वाली एक कंपनी में अमोनिया गैस के अखराज के 22 7 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में मुजाकरात जारी हैं, जिसका मकसद अबूरी मुआहदे को मजबूत बनाना और मगरबी एशिया के तनाजे के खात्मे की कोशिशों को मुस्तहकम करना है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम और मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खित्ते में हफ्ते तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने फाइनल में मेजबान न्यूजीलैंड को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराकर FIH नेशंस कप जीत लिया है। और क्रिकेट में भारत ने फाइनल में मेजबान श्रीलंका को 66 रन से हराकर 3 मुल्कों की ए सीरीज जीत ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जदीद दुनिया में समुद्री ताकत की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि मजबूत बहरी सलाहियतें किसी भी मुल्क की इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक असर और रसूख का फैसला कुन उनसुर होती हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस हकीकत को बखूबी समझता है और इसी के मुताबिक वो अपनी तैयारी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर मुल्क में ही डिजाइन और तैयार करदा भारतीय बहरिया के 3 जंगी जहाजों को पानी में उतारा। इनमें जदीद स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, अहम सर्वे जहाज INS संशोधक और आबदोज शिकन जंगी सलाहियत से लैस कम गहरे पानी का जहाज INS अग्र शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन जहाजों की तैयारी में 200 से ज्यादा MSMEs ने हिस्सा लिया, जिससे मुल्क भर में रोजगार के मौके पैदा हुए और माशी सरगर्मियों को फरोग मिला।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं।
5: अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए अहलियत और दाखिले से मुतालिक कौमी इम्तिहान नीट UG 2026 आज सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान दोबारा मुनाकिद किया गया। इम्तिहानात का इनेकाद करने वाली कौमी एजेंसी NTA ने कहा है कि मुल्क भर के 5,440 इम्तिहानी मराकज और बैरूनी मुल्क के 14 मराकज पर होने वाले दोबारा इम्तिहान में 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। अंग्रेजी और हिंदी समेत 13 जबानों में मजकूरा इम्तिहान का इनेकाद किया गया। NTA ने कहा कि 10,000 से ज्यादा माजूर अफराद समेत तमाम उम्मीदवारों के लिए वसी इंतजाम किए गए थे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
6: इम्तिहानात के तमाम मराकिस पर आधार पर मबनी बायोमेट्रिक और चेहरे की शिनाख्त, CCTV निगरानी, सिग्नल जैमर्स और रियासती पुलिस की मदद से दो सतही जांच जैसे सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए। CCTV निगरानी के लिए NTA हेडक्वार्टरों, वजारत तालीम, महकमे आला तालीम के तहत मरकज की मुआवनत से चलने वाले 34 इदारों के साथ साथ तमाम रियासतों और जिला कलेक्ट्रेट में कमांड और कंट्रोल सेंटर कायम किए गए थे। इम्तिहानात का इनेकाद मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्स, उमूर खारजा की वजारत, महकमा डाक, भारतीय फिजाइया और वजारत दाखिला समेत दीगर इदारों की मदद से किया गया। मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों ने भी तलबा और वालदेन के लिए इंतजाम किए। इनमें इम्तिहान के मराकज पर धूप से बचने के लिए इंतजाम, पीने का पानी, खाना, एम्बुलेंस और जरूरी तिब्बी सहूलियात शामिल थी। आकाशवाणी से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
5: CBSE ने 12वीं जमात की तस्दीक और दोबारा जांच के नतीजे मरहलावार जारी करना शुरू कर दिए हैं। आज मौसूल होने वाली दरखास्त में से 87% से ज्यादा नतीजे का ऐलान कर दिया। बोर्ड ने कहा कि बाकी नतीजे भी जल्द अज जल्द जारी दिए जाएंगे और तलबा से अपील की है कि ताजा मालूमात के लिए सिर्फ CBSE के सरकारी जराए और डिजी लॉकर से ही राब्ता करें। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में आज समुद्री खुराक बरामद करने वाली एक कंपनी में अमोनिया गैस के अखराज के 22 कम से कम 7 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा वर्कर्स जख्मी हो गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है क्योंकि इमदादी और तिब्बी कार्रवाइयां जारी हैं। आफात की सूरत में काम करने वाली कौमी फोर्स NDRF और केमिकल, हयातियाती और न्यूक्लियाई खतरात से निमटने वाली खसूसी टीमों ने फौरी तौर पर बचाव की कार्रवाई शुरू की और सख्त हिफाजती जवाबित के तहत गैस के अखराज पर काबू पाने की कोशिश की। वजीर आला सी जोसेफ विजय ने हादसे की आला सतही तहकीकात का हुक्म दिया है और 3 रुकनी कमेटी को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि मजकूरा वाकये की जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर आला ने महलुकीन के अहले खाना के लिए 2-2 लाख रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के त्रिवल्लूर में समुद्री खुराक की बरामदाती इकाई में अमोनिया गैस लीक होने के वाकये में जानी नुकसान पर ताजियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब राधाकृष्णन और जनाब मोदी ने मुतासिरा खानदानों के तई अपनी ताजियत का इजहार किया और जेर इलाज जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। योग का बैन अक्वामी दिन आज दुनिया भर में मनाया गया। इसकी मरकजी तकरीब वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में कोलकाता के रेड रोड में मुनाकिद हुई। वजीर आजम ने इस तारीखी तकरीब गाह पर हजारों शुरका के साथ योग किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने जोर दिया कि योग जहन को तंदुरुस्त रखने से लेकर जिस्म को सेहतमंद बनाने तक की राहें हमवार करता है।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है।
5: اس سال کے یوگ کے بین الاقوامی دن کے موضوع صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگ پر روشنی ڈالتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یوگ محض جسمانی ورزش نہیں ہے اور نہ ہی یہ عمر کے کسی طبقے تک محدود ہے بلکہ یہ ایک انسانی جذبے کا اظہار ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مدھیہ پردیش کے جبل پور میں گیریسن گراؤنڈ میں یوگ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یوگ بھارت کی عظیم روایت کا جشن ہے اور اس نے انسانیت کو صحت مند، متوازن اور بابانی زندگی کا راستہ دکھایا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت 2026 کی برکس کی اپنی صدارت کے تحت اس مہینے کی 25 اور 26 تاریخ کو ہریانہ کے گروگرام میں برکس ملکوں کے توانائی کے وزیروں کی 11ویں میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ میٹنگ میں 3 اہم ترجیحات، توانائی کی یقینی فراہمی اور پائیداری، توانائی تک مساوی رسائی، نیز ٹیکنالوجی اور اختراع پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ برکس کے تمام 11 رکن ملکوں کے توانائی کے وزراء اور سینئر حکام اس میٹنگ میں شرکت کریں گے تاکہ توانائی کی یقینی فراہمی، پائیداری اور جدت ترازی کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔ یہ میٹنگ بھارت کو عالمی خطے جنوب کی ترجیحات کو آگے بڑھانے اور ایک جامع عالمی توانائی مستقبل کی تشکیل میں اہم رول ادا کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارتی معاہدہ اس سال کے دسمبر تک ہونے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے کے اگلے برس فروری اور مارچ کے درمیان نافذ ہونے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے سے بھارتی کاروباریوں کو یورپی بازار تک تقریباً صفر درآمدی ڈیوٹی کے ساتھ رسائی حاصل ہوگی۔ مغربی ایشیا تنازع کو ختم کرنے کی کوششوں کو آگے بڑھانے اور عبوری معاہدے کو مضبوط بنانے کی خاطر آج سوئٹزرلینڈ کے برگن اسٹاک میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے۔ امریکی وفد کی قیادت امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کر رہے ہیں، جبکہ ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر محمد باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کر رہے ہیں۔ اس مذاکرات میں قطر اور پاکستان ثالثی کا رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ بات چیت ایسے وقت ہو رہی ہے جب ایران نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کے جاری رہنے کے باعث دوبارہ آبنئے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم امریکی فوج کے مطابق یہ اہم آبی گزرگاہ اب بھی تمام بحری جہازوں کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ ایرانی حکومت کے مطابق امریکہ، قطر اور پاکستان کے ساتھ مجوزہ 4 فریقی مشترکہ مذاکرات سے قبل بات چیت کرنے والی ٹیم نے برگن اسٹاک میں قطر کے ثالثوں کے ساتھ بات چیت کی۔ 4 فریقی مذاکرات سے پہلے امریکی وفد نے بھی پاکستان کی ثالثی ٹیم سے ملاقات کی۔ گزشتہ ہفتے جاری کیے گئے 14 نکاتی سمجھوتے کی پہلی شک تمام محاذوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کرتی ہے، جس میں لبنان بھی شامل ہے، جہاں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی میں حالیہ دنوں میں شدت آ گئی ہے۔ ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو اور راجستھان کے وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما نے آج جے پور دربھنگا امرت بھارت ایکسپریس کو جے پور سے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اور کھاٹی پورا میں اہم کوچنگ ٹرمینل کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اشونی ویشنو نے کہا کہ نیا ٹرمینل ریلوے کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مضبوط بنائے گا اور مسافروں کو بہتر سہولیات فراہم کرے گا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اس مہینے کی 27 تاریخ کو آسام اور میگھالیہ میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ اروناچل پردیش، مغربی بنگال کے ہمالیائی علاقوں اور سکم میں بھی اسی طرح کی صورتحال رہے گی۔ اروناچل پردیش، بہار، کرناٹک، کیرالا، اڑیسہ، تامل ناڈو اور تلنگانہ سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بھی اگلے 5 دنوں تک موسلادھار بارش ہونے کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے دلی اور دیگر ریاستوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ آندھی طوفان کی بھی پیشگوئی کی ہے، جبکہ مدھیہ پردیش، شمالی اتر پردیش، تلنگانہ اور ودربھ کے الگ الگ علاقوں میں اس مہینے کی 25 تاریخ تک شدید گرمی پڑنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ہاکی میں بھارت نے ایف آئی ایچ خواتین کے نیشنز کپ میں نیوزی لینڈ کو 2-0 سے ہرا کر خطاب جیت لیا اور خواتین کی پرو لیگ میں اپنی جگہ یقینی بنا لی۔ نونیت کور اور سنیلیتا ٹوپو نے بھارت کی طرف سے گول کیا۔ پورے ٹورنامنٹ میں بھارت ناقابل شکست رہا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ جیت نوجوان کھلاڑیوں کو ہاکی کو اپنانے کی ترغیب دے گی۔ کرکٹ میں سری لنکا کے دامبولا میں 3 ملکوں کی سیریز میں آج بھارت اے نے میزبان سری لنکا کو 66 رن سے شکست دی۔ بھارت اے نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹ پر 377 رن بنائے۔ भारतीय ने पहली विकेट की शराकतदारी में शानदार 130 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 11 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाई और सिर्फ 29 गेंदों में 94 रन बनाए। श्रीलंका ए के लिए कोगाथास मेथुलन, रविंद्र फर्नांडो और वनुजा सहान ने दो दो विकेट हासिल किए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 47 ओवर्स एक गेंद में 311 रन बनाकर आउट हो गई। दौलते मुश्तरका खेलों के लिए मुंतखब

शक्ति धन। आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतर। रूपांतरकार हैं श्री बी एस भटनागर। तो लीजिए सुनिए नाटक मुक्ति धन।

0: रहमान मियां के नाम कचहरी से नोटिस आया है।
1: रहमान चौपाल की तरफ गए थे, आते ही होंगे।
2: किसे पूछते हैं सरकार?
0: रहमान मियां के नाम कचहरी का नोटिस है, क्या तुम ही हो रहमान?
2: जी हाँ जमादार साहब, क्या लिखा है इसमें आप ही बता दें।
0: वीर बाहू सिंह जिमीदार साहब ने इजाफा लगान का दावा दायर किया है। तुम्हें पेशी पर पहुंचना है कचहरी में इसी महीने की 25 तारीख को।
2: जी बहुत अच्छा,
0: अभी 3 हफ्ते हैं। और हाँ ये लो दस्तखत कर दो, ये लो कलम।
3: जी रहमान बकलम खुद, ये लीजिए।
0: खूब, तुम तो पढ़े लिखे मालूम होते हो।
2: बस इतनी ही उर्दू आती है जनाब।
0: अच्छा तो मैं चलता हूँ,
2: कुछ देर सुस्ता लीजिए, शरबत पीकर जाइएगा।
0: नहीं नहीं अभी मैं जल्दी में हूँ, 2-3 और गांव के संबंध भी देने।
2: सलाम जमादार साहब।
0: सलाम।
4: अब तुम वकील करोगे बेटा?
3: और कर ही क्या सकता हूँ अम्मा, इधर फसल खराब हो गई, उधर से ये खर्चान पड़ा है।
4: इतने रुपए कहाँ से लाओगे?
3: कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा अम्मा।
4: बहू से पूछ देखो, शायद उसके पास कुछ रुपए निकल आए।
5: अम्मा मेरे पास 4 चूड़ियां थी, वो पिछले साल लगान अदा करने के वक्त गिरवी चली गई, उधार ले लूँ ना कहीं से?
2: उधार किससे ले लूँ, महाजन ज्यादा सूद लेते हैं, जमानत भी लेते हैं।
5: घर में ले देकर ये 2 बैल हैं।
2: बैलों के बगैर किसान क्या खेती करेगा?
5: फिर इस गाय ही को?
4: बहू
3: तुम जानती हो मुझे जान से भी बढ़कर है।
5: तो फिर करोगे क्या?
3: कुछ तो करना ही होगा।
5: या, या।

0: ये ना ही
1: गाय तो कितना इसके नीचे भैया, कितना दूर इस गाय के नीचे।
2: अरे हाँ हाँ हम समझ गए, तुम गऊ बेचना ही नहीं चाहते, यह बेकार हम लोगों के साथ मजाक कर रहे हो।
3: बेचना न होता तो इसे साथ लिए गांव गांव न घूमता।
4: अरे लाला छोड़ गाय को, भगैया मुझे थमा, ये ले 30 रुपए नगद है, ला रस्सी दे। अरे खड़ा खड़ा क्या सोच रहा, ला
3: रस्सी। रस्सी गौ कुछ ही नहीं लेते हो भाई,
4: पैसे दे रहे हैं।
3: ये भी कुछ
2: मैं इस गाय के 32 रुपए लगाता हूँ, बोल क्या इरादा है। मैं तुम चुप रहा, मुझे
1: दे रहा बात ही।
5: अरे ऐसी भीड़ लगा रखी है,
2: आइए आइए मुख्तार साहब। सलाम
1: सलाम
5: सलाम।
2: हुजूर ये शख्स अपनी गाय बेचना चाहता है, मैंने 32 रुपए दाम लगाया लेकिन ये हामी नहीं भरता।
1: हुजूर 34 तो मैं दे दूं, ये बेचने वाला तो बने।
5: गाय तो तुम्हारी मोहिनी रूप है।
1: हुजूर ये देखिए, गर्दन थाली पुट्ठे और दूध से भरे हुए थन। हुजूर
5: बाबा बछड़ा भी सुंदर है।
1: हुजूर दाम लगाएं, गाय आपकी।
5: क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो?
1: रहमान हुजूर, बचौली में रहता हूँ, पास के गांव में।
5: दूध देती है?
1: हाँ हुजूर, एक बेला में 3 सेर दूध लीजिए। इतनी सीधी हुजूर की बच्चा भी दूध ले। बच्चे पैर के पास खेलते रहते हैं हुजूर, पर क्या मजाल की सिर भी हिलावे।
5: क्या दाम मांगते हो?
1: 50 रुपए हुजूर।
5: हमें तो 35 का माल जचता है।
1: माल को देखते हुए 50 मैंने ठीक ही मांगे हैं हुजूर, इसके साथ की गाय इधर 50 गांव में नहीं है हुजूर।
5: देखो अब सौदा तय करने की बात करो, हम 35 से ज्यादा नहीं देंगे, बोलो हाँ या नहीं।
1: क्या कहे हुजूर, चलिए गाय आपकी हुई, आपके साथ चलकर आपके घर पहुँचा देता
5: हूँ।
1: चलिए
5: रहमान एक बात बताओ, तुमने 40 में गाय क्यों नहीं दी?
1: हुजूर आप हिंदू हैं, इसे लेकर आप पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे। ये सब कसाई हैं, इनके हाथ में 50 रुपए में भी कभी नहीं बेचता। आप बड़े मौके से आ गए हुजूर, नहीं तो ये सब जबरदस्ती गांव को उनसे छीन ले जाते हुजूर।
5: तुम्हें रुपये की कोई खास जरूरत नहीं थी?
1: थी सरकार, बड़ी विपत में पड़ गया हूँ, रुपयों की जरूरत नहीं होती तो घर की इस लक्ष्मी को कभी नहीं बेचता हुजूर।
5: लेकिन वो लोग रुपये भी ज्यादा दे रहे थे।
1: इसे अपने हाथों से पाला है हुजूर, कसाईयों के हाथ में कैसे बेच देता।
5: गाय को तुमने प्यार से रखा है वो तो दिखता है।
1: सरकार इसे जितनी खली देंगे ना उतना ही दूध देगी, भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होता। सरकार
5: तुम फिक्र मत करो, इसकी खिलाई पिलाई में कसर ना होगी।
1: हुजूर एक अरज और है।
5: क्या?
1: अपने चरवाहे को डांट दीजिएगा, इसे मारे पीटे नहीं हुजूर।
5: अरे तुमसे कहा ना है, तुम अब फिक्र मत करो। हाँ
1: जी सरकार।
5: बस यही सामने फाटक वाला मकान हमारा है।
1: जी सरकार
5: आ जाओ।
1: जी
5: ये कोठरी सामने वाली गऊ का घर है, आ जाओ आ जाओ।
1: जी
5: बस यही बांध दो खूंटे से, हैं और देखो इस खूंटे से बछड़े को।
1: जी बहुत साफ कोठरी है हुजूर, मच्छर कीड़ा भी नहीं है।
5: ये लो रुपए गिन लो।
1: जी 10 10 20 10 30 5 35 ठीक है सरकार ठीक है। अच्छा अब चलो, सलाम हुजूर।
5: अजी सुनती हो, कहाँ हो?
6: आई। हाँ कहो।
5: एक नायाब चीज लाया हूँ आज।
6: क्या?
5: गऊ। साक्षात कामधेनु है, कामधेनु।
0: सच?
5: एक मुसलमान बेच रहा था, गाय ज्यादा की है, पर वो बेचारा जरूरतमंद था, 35 में बांध गया।
0: वो कैसे?
5: गऊ उसने कसाईयों के हाथ नहीं बेची।
0: ओ।
5: वो उसे 10-5 ज्यादा दे रहे थे, मेरे हाथों बेची, क्योंकि मैं उसे प्यार से रखूंगा।
0: जानवर की मोहब्बत के पीछे उसने नुकसान उठाना अच्छा समझा, नेक आदमी था।
5: अरे नेकी किसी एक जात या कौम की बपौती थोड़ी होती है।
0: गौ गाय घर में बंधी है ना।
5: आओ
0: चलो
5: चलो दिखाते हैं।
0: चलो
5: अरे आओ, आओ, आओ।
0: चलो चल कर देखिए।
5: मुसलमान भी बड़ा सजीदा और सुंदर है।
0: अच्छा चलो।
3: सलाम हुजूर।
5: सलाम। तुम ही ने मेरे हाथ गऊ बेची थी ना?
3: जी हाँ हुजूर, जी हाँ।
5: रहमान है ना तुम्हारा नाम?
3: बड़ा फरमाया हुजूर।
5: कैसे आना हुआ?
3: हुजूर बड़ी जंग के बाद अब हज का रास्ता खुला है, अम्मा बूढ़ी हैं, हज करना चाहती हैं हुजूर, पर मेरे पास उतने रुपए नहीं है सरकार। आप 200 कर्ज दे दें हुजूर तो काम चल जाएगा।
5: रुपए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक बात समझ लो
3: जी हुजूर,
5: मैं वादे पर रुपए लेता हूं, अगर वादा पूरा न किया तो तुम जानो फिर मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा, समझे?
3: हाँ हुजूर, मैं वादे पर लौटा दूंगा हुजूर।
5: अच्छा तो बताओ कब दोगे?
3: सरकार 2 साल की मियाद रख लें हुजूर।
5: ठीक, लेकिन अगर 2 साल में नहीं दोगे तो ब्याज की दर 25 रुपए से 32 रुपया सैकड़ा हो जाएगी।
3: ठीक है सरकार, ठीक है।
5: अलबत्ता तुम्हारे साथ इतनी मुरव्वत करूंगा कि नालिश नहीं करूंगा।
3: जो चाहे कीजिएगा हुजूर, हुजूर के हाथ में ही तो हूँ।
5: दस्तखत कर सकते हो?
3: हुजूर बस इतनी ही उर्दू आती है।
5: ठीक है, यहाँ पे दस्तखत करो।
3: जी हुजूर। रहमान पकलम खुद, ये लीजिए हुजूर।
5: गवाह तुम नहीं लाए हो, खैर वो मैं करवा दूंगा, ये रुपए लो। 180 हैं।
3: 180?
5: हाँ हाँ 180, कुछ लिखाई की, कुछ नजराने की, कुछ दलाली के, सब मिलाकर 20 रुपए कट गए हैं।
3: आपकी मेहरबानी है सरकार। अच्छा हुजूर चलो। सलाम हुजूर।
5: सलाम।
3: छोड़ मुझे,
2: चल चल। क्या बना आया? अरे सरकार के पैसे ऐसे कोई नहीं हड़प कर सकता, चलता है नहीं? चल
3: चल रहा हूँ भाई, धक्के तो ना दो।
2: अरे अच्छा अच्छा चल।
6: सरकार रहमान को ले आया हूँ।
3: सलाम हुजूर।
5: क्या सलाम हुजूर, 2 साल की मियाद खत्म हो गई, तुम्हें खुद आने की तौफीक ना हुई, बुलवाने पर आए हो, क्या तुम्हारे 2 साल अभी पूरे नहीं हुए?
3: हुजूर
5: लाओ रुपए कहाँ हैं?
3: हुजूर बड़ी गर्दिश में हूँ।
5: अरे गर्दिश में तो सारी दुनिया है, मैं पूछता हूँ रुपए कहाँ हैं? रुपए?
3: अम्मा जब से हज करके आई है हुजूर तभी से बीमार पड़ी हुई है, रात दिन उन्हीं की दवा दारू में दौड़ते गुजरता है हुजूर। जब तक जीती हुजूर कुछ सेवा कर लू, पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहता है।
5: बीमारी हारी सबके साथ लगी रहती है रहमान, लेकिन कर्ज का रुपया वादे पर ही लौटाया जाता है।
3: हुजूर सही फरमाते हैं, बिल्कुल सही फरमाते हैं, पर अब की कुछ फसल नहीं हुई हुजूर, ऊख पानी बिना सूख गई, सन खेत में पड़े पड़े सूख गया, ढोने की मोहलत ही नहीं मिली हुजूर, रबी के लिए खेत जोत न सका, परती पड़े हुए हुजूर।
5: इस सबसे हमें सरोकार नहीं है, तुमने वादा खिलाफी की है और ऊपर से उज्र कर रहे हो कि
3: अल्लाह ही जानता है हुजूर किस मुसीबत के दिन कट रहे हैं। हुजूर के रुपए की एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा हुजूर। हुजूर साल भर की मोहलत और दे दीजिए, अम्मा अच्छी हुई और मेरे सर की बला चली हुजूर।
5: 1 साल की मियाद बढ़ा दूंगा, पर ब्याज 32 रुपए सैकड़ा हो जाएगा। हाँ
3: जैसी हुजूर की मर्जी, जैसी हुजूर की मर्जी।
5: ठीक, अब तुम जा सकते हो।
3: हुजूर भाई बाप है, अन्नदाता। सलाम हुजूर।
5: सलाम।

0: लाला ने क्या कहा?
1: कर्ज की मियाद खत्म हो गई थी अम्मा, अपने रुपए तलब कर रहे थे।
0: सख्त सुस्त नहीं कहा?
1: नहीं नहीं अम्मा, लाला खानदानी आदमी है, मेरे कहने पर एक साल की मोहलत और देती है।
0: बेटा, मेरी वजह से तुम बहुत बर्बाद हो गए।
1: नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं।
0: खुदा तुम्हें बरकत दे, अब मेरा वक्त आ गया, गम न करना।
2: अम्मा,
0: बेटा,
2: अम्मा आप जी छोटा न करें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी।
0: नहीं नहीं बहू, अब और ज्यादा दिन बोझ नहीं, अब बोझ नहीं बनना चाहती।
1: एक घूट पानी पी लो अम्मा, जी समझ जाएगा। ये लो अम्मा, पानी पी लो।
0: तुमने मेरी
1: अम्मा,

0: सलाम हुजूर।
1: तुम क्या करने आए हो?
0: क्यों मेरे पीछे पड़े हो?
1: मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं है।
0: अच्छा सरकार, मैं फिर आऊंगा।
1: अरे सुनो
0: जी,
1: जाते कहां हो?
0: सरकार,
1: कैसे आए थे? क्या कुछ काम था?
0: नहीं सरकार, ये सलाम करने आया था हुजूर।
1: फारसी की एक कहावत है रहमान, किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता। क्या मतलब है कहो।
0: हुजूर, अम्मा।
1: क्या, तुम्हारी अम्मा?
0: हाँ हुजूर, आज तीसरा दिन है।
1: रो मत, रोने से क्या फायदा है, सब्र करो। ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ।
0: हुजूर, कुछ अर्ज करने आया हूं, पर हिम्मत नहीं पड़ती। हुजूर,
1: कहो क्या बात है।
0: हुजूर, अम्मा के दफन कफन का इंतजाम पड़ोसियों से उधार लेकर किया। अब अल्लाह जानता है कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है हुजूर। और काम कुछ ऐसा आन पड़ा है हुजूर कि न करूं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा हुजूर।
1: ऐसा क्या करना चाहते हैं
0: हुजूर? अम्मा की रूह की राहत के लिए फातिहे की जरूरत है, कब्र बनवानी है, बिरादरी का खाना करना है, गरीबों को खैरात देनी है, कुरान की तलावत।
1: जब रुपए हाथ में आए ये काम तब कर लेना।
0: सरकार, बिरादरी में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं बहुत मजबूरी में आपके पास आया हूँ हुजूर। जिंदा रहूंगा तो एक एक कौड़ी मैसूर की अदा कर दूंगा हुजूर। इस घड़ी ना ही ना कीजिएगा सरकार, ना ही ना कीजिएगा।
1: तुम्हें कितने रुपए की जरूरत है
0: हुजूर? सरकार, 200 मिल जाए तो काम चल जाएगा।
1: देखो रहमान, रुपए तो तुम्हें दे देता हूँ
0: सरकार,
1: लेकिन इस बार वादे पर न लौट आए तो मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा।
0: अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा हुजूर। कौड़ी कौड़ी।
1: यहाँ दस्तखत करो।
0: आपकी बहुत मेहरबानी है।
1: ये लो कलम।
0: बहुत मेहरबानी है रहमान बकलम खुद, ये लीजिए हुजूर। अच्छा हुजूर, अब चलो। सलाम हुजूर।
1: सलाम।
0: सलाम।
2: अगले हफ्ते अम्मा को गए हुए 2 बरस हो जाएंगे।
3: अम्मा होती तो इस बार की ऊख देकर कितनी खुश होती।
2: अल्लाह के फजल से ऐसी ऊख लगी है कि हाथ ही भी घुसे तो समा जाए।
3: ए, तुमने कलेजा तोड़कर मेहनत भी तो की है, दिन को दिन और रात को रात ना समझा।
2: मैंने ही क्या, तुम और दोनों लड़के भी तो जी जान से लिपट गए थे।
3: सुनो।
2: हाँ बोलो।
3: आपके लाला का कर्जा चुक जाएगा?
2: आपकी ज्यों ही गुड़ के रुपए हाथ में आए सब के सब ले जाकर लाला दाऊ दयाल के कदमों पे रख दूंगा।
3: ऐसे कितने रुपए मिल जाएंगे?
2: अरे हारे दर्जे 700 तो कहीं नहीं गए। लाला चाहेंगे तो उसमें से 2-4 रुपए निकाल कर दे देंगे तो ले लूंगा, नहीं तो अबकी साल और चूनी चोकर खाकर काट लूंगा।
3: लेकिन वादे की मियाद तो अगले हफ्ते पूरी हो जाएगी ना?
2: अरे उन्हें ऊख की खड़ी फसल के बारे में बताकर गुड़ बिकने तक की मोहलत मांग लूंगा।
3: अल्लाह करे फसल सही सलामत गुड़ साल में आ जाए।
2: हाँ कहावत भी है, खेती की हालत यतीम बच्चे की सी है, पानी और हवा मुआफिक हुए तो अनाज के ढेर लग गए, और अगर इनकी मेहरबानी ना हुई तो लहलहाते खेत बेवफा दोस्त की तरह दगा दे जाते हैं।
3: और फिर ओला पाला सूखा बाढ़ दीमक आंधी से बची तो खलियान में आती,
2: और खलियान से आग और बिजली दोनों का ही बैर है।
3: बस ये समझ लो कि इतनी दुश्मनों से बची तो फसल,
2: नहीं तो
3: फैसला।

0: रहमान ले एक दो दम तू भी लगा ले।
1: लाओ काका लाओ। वाह वाह रहमान, अब के तेरी ऊँख बड़ी घनी उठी है भैया।
0: बस किसान की मेहनत का फल तो फसल ही है भैया।
1: ये तो सच है काका, मेहनत में रहमान की तरफ से कसर नहीं हुई।
0: तब देख ही लो कैसी जोरदार ऊँख है।
2: ये लो तुम भी दो चार दम लगा लो भैया।
1: लाओ भैया लाओ।
3: भैया तुम बता सको ये कितने की फसल है?
1: ऊख तो भारी है, बहुत गुड़ निकलेगा। भैया मैं तो समझू हूँ 800 का बिक जाएगा।
2: पर मंडी में नया गुड़ पहुँचते ही भाव गिर जाते हैं, ये मुश्किल है।
1: अरे कम से कम 700-750 तो कहीं नहीं गए।
2: तुम ठीक कहते हो भैया, ठीक कहते हो।
1: आज बड़ी ठंडी हवा चल रही है रहमान।
2: अगहन है, अब ठंड न पड़ेगी तो कब पड़ेगी। मैंने इसी मारे ऊख के सूखे पत्तों की आग जला ली थी।
0: चिलन ताजा करने के काम भी आया है।
2: तुम ठीक कहते हो काका।
0: अरे अरे क्या कर रहा है रहमान, आपको मत छोड़।
1: अरे अरे हवा से जलता हुआ पत्ता उड़ गया। अरे कम्बख्त ऊख के बीचों बीच गिरा है। अरे सत्यानाशी तूने काहे को आग जलाई ऊख के पास?
4: अरे खेत में लगी। अरे इसे बुझाओ किसी तरह से। अरे उधर तो ऊख तोड़ने
1: दे। अरे सारे ऊख पर घर में तोड़ने का दे। बाहर होगा आग गली को बढ़ रही है। चलो जल्दी चलो, देख क्या रहे हो, खेत में ऊख को।
4: अरे आजू रे
1: रहमान भैया, रहमान भैया सब्र करो। उसकी मर्जी के आगे किसकी चली
0: गई? जो होना था सो हो गया। किस बुरी तरह ऊँच जल रही
4: है।

0: ये तो लाला का चपरासी आ रहा है, अब क्या होगा? खुदा अब तू ही इस मुसीबत को आसान कर, कहीं आते ही आते गालियां न देने लगे। क्या मेरे अल्लाह, कहाँ चुन जाओ, कहाँ चुन
1: जाओ। रुपए लेकर देना नहीं चाहते? मियाद कल गुजर गई, जानते हो सरकार को एक दिन की भी देर हुई और उन्होंने नालिश ठोकी, बेभाव की पड़ेगी।
0: यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना।
1: अरे ये हाल हवाल सुनने का काम नहीं है, ये चकमे किसी और को देना। 700 रुपए ले चलो और चुपके से गिनकर चले आओ। हाँ
0: देखते हैं जमादार साहब, सारी भूख जल गई, नहीं तो अल्लाह जानता है आपकी कौड़ी कौड़ी बेबाक कर देता।
1: मैं ये कुछ नहीं जानता, तुम्हारी भूख का किसी ने ठेका नहीं लिया। अब चलो सरकार बुला रहे हैं।
0: मेरा हाथ छोड़ दो भैया।
1: अरे चल,
0: मुझे मत
1: कर। अरे चल चल,
0: मैं खुद चल रहा
1: हूँ। चलता है या मैं? चल चल सरकार बुला, चल चल चल।
0: हुजूर मुझे बचाइए, मुझे बचा लीजिए हुजूर।
2: अरे ये क्या करते हो, मेरे पांव मत पकड़ो, छोड़ो।
0: मुझे अब इन्हीं कदमों का सहारा है हुजूर। खुदावंद बड़ी विपत पड़ी हुई है, अल्लाह जानता है कहीं का नहीं रहा हुजूर, कहीं का नहीं रहा।
3: क्या सब भूख चल गई?
0: सरकार जैसे किसी ने खेत में झाड़ू लगा दी हो। सारे गांव से बढ़कर भूख लगी हुई थी सरकार, गरीब परवर ये गैबी आफत ना पड़ी हुई होती तो हुजूर से उरीन हो जाता।
3: अब क्या सलाह है, देते हो कि नालिश ही कर दूं?
0: हुजूर मालिक है, जो चाहे करे। मैं तो इतना ही जानता हूँ, हुजूर के रुपए सर पर हैं और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है। अपनी सोची नहीं होती हुजूर। दो बार वायदे किए, दोनों बार झूठा पड़ा, अब वायदा नहीं करूंगा हुजूर। अब जो कुछ मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों में रख दूंगा। मेहनत मजदूरी से पेट और तन काट कर जिस तरह होगा आपके रुपए भरूंगा हुजूर, आपके रुपए भरूंगा।
3: तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी आरजू कौन सी है?
0: यही हुजूर कि आपके रुपए अदा हो जाएं। सच कहता हूं हुजूर, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है हुजूर।
3: उठो रहमान, समझ लो मेरे रुपए अदा हो गए।
0: अरे हुजूर ये कैसे समझ लो, यहाँ ना दूंगा तो वहां देने पड़ेंगे हुजूर।
3: नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमाता था।
0: सरकार?
3: हाँ रहमान, हाँ।
0: नहीं नहीं सरकार, नहीं, इतना बोझ सिर पर लेकर नहीं मरूंगा हुजूर।
3: कैसा बोझ, मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ भी आता नहीं, और कुछ आता भी था तो मैंने माफ कर दिया, यहां भी वहां भी। अब तुम मेरे एक पैसे की भी देनदार नहीं हो।
0: पर हुजूर मैंने तो आपसे रुपया कर्ज के तौर पर लिया था हुजूर।
3: नहीं रहमान, असल में तुमसे कर्ज मैंने लिया था, वही अदा कर रहा हूं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरी कर्जदार नहीं हो।
0: नहीं हुजूर, नहीं।
3: तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान न किया हो, पर असल में वो मेरी धर्म पर एहसान था।
0: हुजूर
3: मैंने भी तुम्हें धर्म के काम ही के लिए रुपए दिए थे, बस हम तुम दोनों बराबर हो गए।
0: सरकार
3: और रहमान, तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे लेते जाओ, तुम्हारी खेती के काम आएंगे।
0: हुजूर को इस नेकी का बदला खुदा देगा, मैं तो आज से अपने आप को आपका गुलाम समझूंगा।
3: नहीं रहमान, नहीं, तुम मेरे दोस्त हो।
0: नहीं हुजूर, गुलाम।
3: गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम बहुत पहले मुक्ति धन अदा कर चुके हो रहमान, अब भूल कर भी ये लफ्ज मुंह से न निकालना मेरे दोस्त।
0: सरकार, खुदा आपको सलामत रखे हुजूर, खुदा आपको सलामत रखे।

शक्ति धन। अभी आपने मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी का ये रेडियो नाट्य रूपांतर सुना। रूपांतर श्री बी एस भटनागर ने किया था। निर्देशक थे सुशील बैनर्जी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री बाकर मुस्तफा, राजेंद्र वर्मा, रईस मिर्जा, एच के वैश्य, एल एन भारद्वाज, आर एच चिश्ती, कारी मोहम्मद इलियास, मुमताज मिर्जा, जया मेहता,

0: ये आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदुस्तानी शास्त्रीय।
1: रात्रि के 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद विलायत हुसैन खां को आप सुनिए। इनसे आप सुनिए राग और मल्हार। तबला पर संगत कर रहे हैं उस्ताद अहमद जान थिरकवा।

आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद विलायत हुसैन खां से राग गौर मल्हार। तबले पर संगत कर रहे थे उस्ताद अहमद जान थिरकवा। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 10:25 होने को हैं। 12 साल विकास के, विश्वास के और जन कल्याण के की 19वीं कड़ी सुनिए।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथेनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
1: आकाशवाणी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र प्रथम के मुद्दे पर। तो प्रोफेसर अंशु जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक 12 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही है और इसमें राष्ट्र प्रथम की अवधारणा और खासतौर पर हम जो पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे आप किस तरह से देखते हैं कि वैश्विक परिवेश में, परिदृश्य में किस तरह से इसे एक नई दिशा दी गई है।
2: विगत 12 वर्षों में हमने भारत की यदि विदेश नीति और आंतरिक नीति की दृष्टि से देखें तो वैश्विक राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है, जो सदियों पुराना है, उसको भी वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए उसका इस्तेमाल करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब नीति निर्माण की हम दृष्टि से देखते हैं तो हमने भारत की यदि हम ब्रांड इमेज को देखें तो वो एक विगत 12 वर्षों में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर ये इमेज वैश्विक स्तर पर बनी है, जिसमें भारत को ग्लोबल साउथ का प्रणेता दूसरे देश मानने लगे हैं। और इसके पीछे कारण है, उदाहरण स्वरूप जब 2023 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, जिसे कि पश्चिम के शक्तिवान देशों का एक मंच माना जाता था, उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा। तो इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की नेतृत्व की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो पश्चिम के तमाम शक्तिवान देश हैं और ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देश हैं, उनके बीच संतुलन बनाए रखने का एक पुल का काम भारत ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा है। तो जब बात आई कोविड की, कोविड के काले समय के दौरान हमने न सिर्फ अपने लिए 140 करोड़ हमारी आबादी के लिए हमने टीके बनाए, होम ग्रोन वैक्सीन्स बनाए, हमने दुनिया भर के देशों को, लगभग 150 देशों को हमने जीवन रक्षक दवाएं और टीके भेजे और वैश्विक स्वास्थ्य की जो कूटनीति है उसमें एक नया हमने अध्याय शुरू किया। एक रणनीतिक संतुलन हमारी नीति के माध्यम से हमने बनाए रखा, तो हमने नॉन अलाइंड की बजाय ऑल अलाइंड की नीति अपनाई, जिसमें एक ही समय में एक तरफ हम रूस के एक नेचुरल अलाय वर्षों से हैं, उस यात्रा को हम जारी रख पाए, और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सफल अध्याय शुरू किया। हम इसराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन हमारी विदेश नीति में पैलेस्टीन को भी मान्यता है। तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है। वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति की वजह से, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में 30 से अधिक देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है। और इसी से समझ में आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से भारत किस तरह से एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल श्री, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया गया, क्या लगता है आपको, कैसा बदलाव रहा है, ये अच्छा बदलाव रहा है या कुछ चुनौतियां भी रही हैं?
2: ये एक बड़ा और सफल बदलाव मैं मानती हूँ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब शीत युद्ध चल रहा था, जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था, जिसमें हम न यूएसएसआर के ब्लॉक के साथ, न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए, बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट हैं या हित हैं, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाएं, हैंडशेक करें। तो भारत विगत 12 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये रहा कि नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड देश बना, और यही कारण है कि एक और रशिया के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, हम नेचुरल एलाय है रशिया के, दूसरी ओर अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर हमने विशेष तौर पर काम शुरू किया, और वहीं एक इशू बेस्ड इंगेजमेंट भी हमने कूटनीति में जोड़ा। और वो क्या है, तो अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हम देख लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक की दुनिया को देख लें, कृषि का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें, या सामरिक क्षेत्र देखें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ हम जुड़े। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विगत 12 वर्षों में पहली बार इतना करीब गए, हम अफ्रीका के देशों के पास गए, इन देशों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये अविकसित देश है, तो इनके साथ भारत ने एक रोड मैप बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अलग अलग देशों के साथ शुरू की। एशिया में हमने अपने पड़ोसियों के साथ और चीन जैसे देश के साथ में रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास किया, हालांकि चीन की तरफ से जिस तरह से हमारी सीमाओं पर लगातार चुनौतियां प्रस्तुत की, तो वहां पर फिर हम चुप भी नहीं रहे। तो सबसे हमारी यदि विगत 12 वर्षों में मैं विदेश नीति की सफलता बताऊं, तो वो ये है कि हम एक तरफ राष्ट्रप्रथम की भावना के साथ, लेकिन विश्व बंधुत्व का दर्शन रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी मल्टीपोलैरिटी को, मल्टी अलाइनमेंट को, वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे देश जब आकर हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न करते हैं, या पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को लगातार पल्लवित पोषित करता है, तो फिर वहां पर भारत सक्षम, समर्थ और सशक्त रूप से जवाब भी देता है। तो इसमें चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आती हैं जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने हो, जो अपने प्रॉक्सीज को या आतंकवादी संगठनों को लगातार एक्टिव करके आगे बढ़ाते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता हो, लेकिन दूसरी ओर विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर हमने जो साख बनाई, जो सफलता आ गई, जिस तरह से दूसरे देशों की सहायता की जब उन पर जरूरत पड़ी, तो फिर यहां पर इन चुनौतियों का समाधान भी हम निकाल पाने में सफल रहे हैं।
1: बिल्कुल, जाहिर है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी भारत को हासिल है उसके बारे में अंशु जोशी जी बता रही थी। अब हम रुख करते हैं एमपी नथैलस साहब का। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, तो पिछले 12 सालों में हुए बदलावों को आप किस तरह से आंकते हैं और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
3: जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अभी एनवायरमेंट है, ये आप देखेंगे पहले काफी डिस्ट्रिक्ट में माओइस्ट का काफी प्रभाव पड़ा हुआ था, जिसके वजह से वहां पर डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था, लेकिन अब जो है पिछले कुछ सालों में इतना जोर दिया गया माओइस्ट को खत्म करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि हमारे गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च तक 2026 में एक बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सीआरपीएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफी जोर लगाकर, खासकर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे, इनके पीछे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लगाए, और उन ऑपरेशन में कई माओवादी को मार गिराया, और उनको मार गिराने की वजह से इनका मनोबल इतना नीचे गिर गया कि करीबन 5000 माओवादी पिछले 2 साल के अंदर अपने आप खुद आके सरेंडर कर गए। और सबसे बढ़िया ये इसका प्रभाव रहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम निकाला, स्कीम निकाला, जिसमें कि उनको 50,000 रुपए दिए जा रहे थे, उसके अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और मकान दिए जा रहे थे। इनके वजह से काफ़ी तादाद में माओवादी अपना जो जंगल में रिहाइश थी वो छोड़ के बाहर आए और सरेंडर कर दिए फोर्सेस के सामने, जिसके वजह से माओवादी का बिल्कुल खात्मा हो गया है। और यहाँ इनके नेता भी जो थे, वो भी कई नेता, बड़े बड़े नेता जो कि पहले बड़े कट्टर आतंकवाद थे, उन्होंने आगे आकर अपने आप आत्मसमर्पण किया, और इसके वजह से माओवादी तकरीबन ख़त्म ही हो गए। अभी केवल एक ही बचा हुआ है झारखंड में, जो कि पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में वो भी मारा जाएगा या वो खुद सरेंडर कर लेगा, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब यह चलने वाला नहीं है। उन्हीं के कई फॉलोअर्स सरेंडर कर चुके हैं, और ये मिसर बेसरा के पास केवल कुछ ही आदमी बच गए होंगे जो कि सेरेंडा फॉरेस्ट के जंगलों में घूम रहे हैं, और ऑपरेशंस भी कोबरा के बड़े जोरों से जारी हैं और कुछ दिनों में ये मारे जाएंगे या खुद सरेंडर कर देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में करीबन 8,000 जो मिलिटेंट्स थे, इंसर्जेंट थे, उन्होंने खुद सरेंडर किया, जिसमें कार्बी अंगलोंग के इंसर्जेंट्स थे, बोडोस के इंसर्जेंट्स थे और आसाम के भी इंसर्जेंट थे, और उसके अलावा मणिपुर में जो यूएनएलएफ के इंसर्जेंट थे, सब ने सरेंडर किया है। और उनके सरेंडर करने के बाद काफ़ी मात्रा में वहाँ पर हथियार ख़त्म हो गए और इंसिडेंट भी ख़त्म हो गए, और उस वजह से काफ़ी वहाँ पर शांति फैलाया गया उस इलाके में, और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफ़ी जोरों से चल रहा है, और इन डेवलपमेंट्स के वजह से लोगों को बहुत फायदा चल रहा है। पहले यह डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे क्योंकि आतंकवाद ने काफ़ी जोरों से वहाँ पर कब्जा मार के रखा हुआ था, और इसको ख़त्म करने के बाद अब डेवलपमेंट जारी हो गई है, सड़कें बन रही हैं हर जगह, कनेक्टिविटी बढ़िया बन रहा है, और करीबन 70 से 80 एयर स्ट्रिप्स भी रिवाइव कर दिए गए हैं कई जगहों में, और जिनके वजह से अब वहाँ पर एयर फ्लाइट्स भी शुरू हो गए हैं। अब लोगों को काफ़ी सुविधा पहुँच रही है कि वो एक जगह से दूसरे जगह नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आराम से सफर कर सकते हैं।
1: इसके अलावा आप ये भी समझना चाहेंगे कि घरेलू मोर्चे पर अपने रक्षा उत्पादों में हम किस तरह से और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो उत्पादन किस तरह से हो रहा है जो भारत को और मजबूती की तरफ आगे बढ़ा रहा है?
3: इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई जो इक्विपमेंट्स है वो इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं, और वो आत्मनिर्भर को अपने फोकस में रखते हुए तकरीबन 38,400 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट वो अब जो है शुरू कर दिया गया है। हमारे यहाँ से हथियार बन रहे हैं और ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा पहले जो हम हथियार मंगा रहे थे बाहर से, उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। करीबन 5,500 डिफेंस आइटम्स जो पहले हम बाहर से मंगाते थे वो हमने मंगाना बंद कर दिया, और अपने ही देश में इन सब का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। तो इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे देश के इकोनॉमी को हो रहा है, और उस वजह से जो युवक हैं उन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में। तो इस तरीके से काफ़ी नौकरियां अभी लोगों को मिल रहे हैं, 15 लाख जवानों को इससे काफ़ी फायदा हो रहा है। आज ही के दिन करीबन 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, अब रुख करते हैं प्रोफेसर जोशी का। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में भारत को एक रिएक्टिव नेशन के बजाय एक प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम उदाहरणों का जिक्र किया आपने कि एक जो ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज बन रहा है भारत, साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की भी पहल भी मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इन सब चीजों का एक फायदा अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें भारत को, तो वो किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
2: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ा, क्योंकि अक्सर हम अपनी विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं, हमने किस प्रकार के की नीतियां बनाई और किस तरह से विश्व के अलग अलग कोनों में जाकर के किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर मित्रता के नए प्रतिमान स्थापित किए, हम इस पर तो बात करते हैं, पर इसके जो आउटकम्स हैं उसकी चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ ऐसे टेंजिबल आउटकम्स हैं जो हमने अर्जित किए। उदाहरण बताती हूँ कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण एफटीए है, और इसके साथ साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट भी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ साइन किया, और ये एशिया में भारत दूसरा देश है जिसके साथ ये डिफेंस पैक्ट ईयू ने साइन किया है। अब इस एफटीए के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार से सकारात्मक टेंजिबल दृष्टि से आउटकम्स इसके निकल के आएंगे, और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन को तो बहुत उछाल मिलती हुई दिखाई पड़ती ही है। प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से भी हमारे पास, हम इस वक्त दुनिया की जो यूथ आबादी है, हमारे पास 22% जो यूथ पॉपुलेशन है उसका हमारे पास शेयर है। यदि हम प्रोफेशनल्स की दृष्टि से देखें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और यंग फोर्स का हम देश है, वी आर अ यंग नेशन। तो यूरोप के इन देशों को इसी प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो आप देखिए, अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा, हमारा जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड है ईयू के सदस्य देशों के साथ उसमें इजाफा, तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू जनरेशन में और एफडीआईज में इजाफा, तो इससे ओवरऑल जीडीपी में बढ़ोतरी, और फिर इसके साथ साथ जो एक रोजगार की बात आती है क्योंकि हम एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड देश है, तो उसमें फिर हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसा हम अलग अलग, यदि आप यूएई के साथ के अपने एफटीए को और हमारी व्यापारिक डील को देखें तो वहां पर भी प्रोफेशनल मोबिलिटी इज इन द सेंटर। आप यदि अभी हमारे साथ, हमारी मर्कोसुर के साथ जो कि लैटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ भी एफटीए को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज्ड है। पश्चिम एशिया के संकट की वजह से जीसीसी के देशों के साथ भी हमारा एफटीए लगभग फाइनलाइज था, थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमता हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो अब जैसे यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं, तो पहले हम एक नेट इम्पोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपनी सफल विदेश नीति के चलते आज हम एक एक्सपोर्टर देश बनके इस एक डिफेंस ऑफ सिक्योरिटी के क्षेत्र में उभरे हैं, जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में विशेषकर हमारे होम ग्रोन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको देख करके और चमत्कृत थे, और भारत से उन्होंने हमारे जो होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट है, वो लेना शुरू किया है। बहुत सुखद समाचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा जो मेक इन इंडिया का और विकसित भारत 2047 का रोड मैप है, तो कुछ इस प्रकार के आउटकम्स है। उदाहरण स्वरूप वैक्सीन मैत्री, जब हमने 150 देशों को अपने यहां के वैक्सीन भेजे, तो उस समय के ब्राजील के, ये उदाहरण है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी का चित्र लगाया और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप नहीं जानते आपने ब्राजील के लिए क्या किया। इसके बाद ब्राजील के साथ हमारा एक अलग स्तर पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग और पार्टनरशिप शुरू हुई। तो हमने जब सोलर अलायंस और बायोफ्यूअल अलायंस की स्थापना की, इसको पायनियर किया, तो ब्राजील उसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोगी देश बनकर के सामने आया। तो ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ, पॉजिटिवली किसी दूसरे देश के लिए अच्छा करते हैं, तो उसके कुछ ऐसे आउटकम्स आते हैं जो फिर हमारी जो ये लंबी सुदीर्घ विकसित भारत की यात्रा है उसमें हमें योगदान करते हुए नजर आते हैं। मैं अमेरिका का उदाहरण दूं, अमेरिका के साथ बहुत महत्वपूर्ण डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में लेमोवा, कॉमकासा और बेका नाम के लॉजिस्टिक सप्लाईज को लेकर के हुए बड़े महत्वपूर्ण समझौते हैं, और अमेरिका ने अपना रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस भारत को देना शुरू किया, जो कि ऐतिहासिक है। तो ये काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स की दृष्टि से देखें या अपने सामरिक क्षेत्र में अपर हैंड की दृष्टि से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे क्वाड का मंच हो, ब्रिक्स का मंच हो, एससीओ का मंच हो, इप्सा हो, तो I2U2 की हम बात करें, तो भारत जिस प्रकार से अलग अलग अपने इनिशिएटिव्स के चलते आगे बढ़ा है, तो उसमें ग्लोबल साउथ की हमने आवाज मजबूत की, एक पुल के रूप में हम पश्चिम के देशों के और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में एक साथी बनकर के आए, और इसके अलावा हमने हमारे मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए विकसित भारत 2047 की यात्रा के लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स जो है वो अकम्प्लिश किए हैं।
1: और शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में G7 की बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी को एक टफर निगोशिएटर कहा, क्योंकि जब तमाम बायलेटरल ट्रेड समझौतों की जब बातचीत हो रही, तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भारतीय निर्यातकों के साथ जो है किसी भी तरह के लिए उनके लिए नुकसानदायक डील नहीं होनी चाहिए, और भारत का सामान, मेक इन इंडिया सामान जो है बिकना, वही प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री मोदी की।
2: बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ आपने इस बिंदु को भी चर्चा में जोड़ा, और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में हम देख सकते हैं कि 30 से अधिक दुनिया के देशों ने सर्वोच्च उनके राजकीय सम्मान से नवाजा है। भारत की क्या साख है, भारत का क्या परचम लहरा रहा है दुनिया में, इस बात का ये प्रतीक है। और बिल्कुल टफ नेगोशिएटर है, तो मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं, तो उसमें लगातार अमेरिका की तरफ से दो बिंदुओं पर हम पर प्रेशर बनाया गया कि एक तो हम रशिया से तेल और गैस लेना बंद करें, और दूसरा ये कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दें। तो चाहे आप पश्चिम एशिया के देशों या मंचों के साथ अपने एफटीए को देखें, आप हाल ही में हुए ईयू के साथ के अपने एफटीए को देखें, आप दूसरे जो एक दर्जन भर के लगभग अपने FTAs हैं और अलग अलग जो सेपा हैं, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक हमारे जो अग्रीमेंट्स हुए हैं कई देशों के साथ में, तो हमने इस बात को जब नेगोशिएशन के लिए स्टेक होल्डर्स बैठते थे तो इस बात को हमने स्पष्ट किया था कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर किसी के लिए नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है। हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स और इससे जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं, या जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, फिशरीज से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लघु और मध्यम उद्योग और विशेषकर जो भारतीय कला से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे नए नए बाजार मिल सके, उनको कैसे हम प्रमोट कर सके, ये भी जब भी हमने आर्थिक और तकनीकी कूटनीति के हमने समझौते किए हैं या इसको लेकर हम आगे बढ़े, तो वहां प्रधानमंत्री ने इसकी बात की है। तो आखिरकार जब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील अनाउंस हुई तो उसमें फिर ये बात स्पष्ट होकर के आई कि इन दोनों बिंदुओं पर भारत ने किसी प्रकार का नेगोसिएशन नहीं किया। और वहीं जैसे रूस से जो तेल और गैस लेने की बात है, सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हमें रूस से तेल और गैस मिल रहा था, तो हमको उर्सुला वॉन ने भी 2 या 3 साल पहले लगभग ये चेताया था कि हम रूस से तेल और गैस लेना बंद करें, लेकिन तब भी हमारे विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को केंद्र में रखते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए वही डिसीजंस लेता है जो भारतीयों के हित में है। जब हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणाएं की, तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को मैं इसका नुकसान नहीं उठाने दूंगा और मेरा व्यक्तिगत इसमें नुकसान हो सकता है, मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इसके बाद भारत ने लगातार अपने जो ये तमाम सफल विदेश नीति से मित्र बनाए हैं, तो हमने इन सबसे सहायता ली, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, अपने एक मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस को फिर हमने बढ़ाया, और इसके चलते देखिए हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसा इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा हम पर जब प्यूनिटिव टैरिफ्स लगे और बड़ा हल्ला मचा था कि अब क्या होगा और नुकसान होगा और अब हम क्या करेंगे, लेकिन आप देखिए कि हमने 7% से ज्यादा और फिर 8% की क्वार्टरली हमने जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर की थी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रोथ रही। तो ये इस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ में इस प्रकार के अलग अलग अकम्पलिशमेंट्स के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
1: अब हम रुख करते हैं एमपी नथालस आपका, उनसे पूछते हैं कि सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेड कॉरिडोर से ग्रीन जोन में बदलने की रणनीति अपनाई गई थी और वहां भी कामयाबी हासिल लगी, नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा संवाद और समन्वय के भी परिणाम सामने आए, तो आपसे जानना चाहेंगे जो एक और 3 बड़े ऑपरेशन हुए थे, उरी का हम जिक्र करें, बालाकोट का जिक्र करें या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों का, तो ये 3 जो बड़े एक्शन रहे हैं, इसको भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन ऑपरेशंस ने किस तरह से परिभाषित किया और क्या मायने आप देखते हैं यहां पर जो एक एक्शन रहा?
3: इसमें सबसे बढ़िया चीज ये था कि जैसे ही वो कहीं इस तरह के वारदात कर रहे थे, जैसे कि अटैक किया उन्होंने कॉन्वॉय सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर उरी में अटैक किया और उसके बाद जो पहलगाम में अटैक किया, हमने तुरंत उसका जवाब दिया। ये नहीं कि हम रुके रहे सोचते रहे क्या करना है, लेकिन तुरंत अटैक करके हमने उनको साबित कर दिया कि इस तरीके के हरकत अगर आप करेंगे तो हमारा कार्रवाई एकदम जवाबदारी होगी। और इसमें खासकर जो पहलगाम अटैक हुआ था जिसके बाद अब सिंदूर चला, उसमें करीबन 100 जो आतंकवाद टॉप के उन लोगों को मार गिराया और कई उनके आतंकवाद के जो बेस अक्रॉस द बॉर्डर थे वो भी खत्म कर दिए गए। हमारे एयरक्राफ्ट ने जाके वहां पर अटैक किया और उनका खात्मा किया, जिसके वजह से उनमें काफी ढीलपना आ गया, अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। और इसके अलावा ये भी है कि जब भी वो कोशिश करते थे पहले बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, काफी बार सफल हुए, मैं खुद वहां श्रीनगर में रहा हूँ, गए दिन हमारे एनकाउंटर होते रहते थे। अब जो है हालात काफी सुधर गए हैं और सुधरने की वजह से ये है कि वहां पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है और यहाँ तक कि डेवलपमेंट ट्रेन भी चलने लगे हैं, राइट फ्रॉम जम्मू से लेकर बारामूला तक चल रही है। पहले ये सब हम सोच नहीं पाते थे। और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो मिजोरम कनेक्ट हो गया रेलवे से, पहले हमें सिलचर जाना पड़ता था, सिलचर से फिर बाय रोड जाना पड़ता था, अब जो है रोड कनेक्टिविटी इतना बढ़िया हो गया थ्रू रेलवे कि लोग सीधे ऐजवाल तक पहुंच सकते हैं दिल्ली से लेकर वहां तक। तो ये जो कनेक्टिविटी है इससे काफी बड़ा फायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को आने जाने में काफी इसमें सुविधा पहुंची है। इसके अलावा ये है कि जब भी वहां से कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका हमारा इंटेलिजेंस जो है इतना रोबस्ट हो गया है कि हमें सब पता चल रहा है कि वहां पर अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है और उसी वक्त कार्रवाई कर दी जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इससे काफी लाभ पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि कश्मीर में काफी पीसफुल सिचुएशन है, अभी अमरनाथ यात्रा भी होने वाला है, काफी तादाद में फोर्सेस पहुंच रहे हैं वहां पे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहां पर कई जिलों में जहां आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतना वहां पर शांति फैल चुका है कि AFSPA की बाद में जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
1: तो सर, क्योंकि आपने तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए आपसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को जो लोग पालते पोसते थे उस दौर में या आज से एक दशक पहले की अगर हम बात करें, 12 साल पहले की बात करें, तो उस रुख को आप किस तरह से बदला हुआ आज पाते हैं?
3: पहले ये था कि हमारे पास इंटेलिजेंस का थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब जो है इंटेलिजेंस इतना हमारा रोबस्ट हो गया है कि जैसे ही उनका कोई कार्रवाई वो वहां से करने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही हम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो हमारे जवानों पे या हमारे इलाके के अंदर आके हमला ना कर पाए।
1: इतने दिनों में भारत की एक नई डिफेंस कैपेबिलिटी भी सामने आई है, हम चाहे मेक इन इंडिया की बात करें या जिस हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जा रहे हैं, तो ये अब इनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में होने लगा है, क्योंकि भारत की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इस पे आप कितना ज्यादा जो है इजाफा मानते हैं कि दुनिया के देशों में निर्यात कितना ज्यादा बढ़ा है, उस मोर्चे पर कितनी सफलता मिली है?
3: ये जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें पाकिस्तान ने भी काफी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इनके जितने भी अटैक करने की कोशिश किए गए वो सब विफल कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो था एयर डिफेंस सिस्टम काफी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके वजह से उनके जितने भी अटैक हो रहे थे वो विफल कर दिए गए और हमें ज्यादा उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता जो कि शील्ड जैसे बन गया था तो हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता था, लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम के वजह से हम लोग उनको रोक पाए और वो नुकसान नहीं कर पाए।
1: प्रोफेसर जोशी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत की उभरती हुई वैश्विक भूमिका विकसित भारत की तरफ है, इसमें आपको क्या लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को किस तरह से गति मिल रही है और आने वाले दिनों में जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसे हम किस तरह से पूरा होते हुए देखेंगे?
2: देखिए, जब हम अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हैं तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत की जो सफल विदेश नीति है, विगत 12 वर्षों में हम जिस तरह से एक ऑल अलाइंड पॉलिसी पर चले हैं, इसने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। तो भारत के यदि हम आर्थिक विकास की ओर देखें, तकनीकी प्रगति की ओर देखें, वैश्विक सुरक्षा, अपनी आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो हमारी विदेश नीति जो है इसके माध्यम से हम इनसे जुड़े हुए लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए लगातार अपने विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जब कूटनीति को हम देखते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है, मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। हम किसी एक देश की हेजेमनी की नहीं बल्कि मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे वैश्विक राजनीति में लोकतंत्र को बनाए रखना है और साथ साथ हमारे देश का विकास हो और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिले। तो यदि हम अपने आर्थिक मोर्चे पर जाएं और अपनी आर्थिक कूटनीति की बात करें तो विकसित भारत 2047 को यदि हम देखते हैं तो हमारी विदेश नीति का एक बड़ा जो फोकस एरिया रहा है वो FDI रहा है। किस तरह से हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, मैंने लगातार अलग अलग FTAs का उदाहरण दिया जिनके माध्यम से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर। फिर यदि हम तकनीक की दुनिया में चले तो चाहे AI की बात करें या हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, तो AI समिट का ग्लोबल साउथ का भारत पहला देश है जिसने इस बार होस्ट करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जिसमें देश विदेश से कई राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की और AI को लेकर के जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है उसमें भी भारत एक प्रणेता की भूमिका निभा रहा है। फिर आप सेमी कंडक्टर्स की दुनिया में चले, क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया में चले, तो इन सब में अपनी विदेश नीति के माध्यम से हमने जो नई मित्रताएं लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन देशों के साथ जोड़ी है, आगे बढ़ाई है, उसके माध्यम से हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर पा रहे हैं, क्योंकि ये विकसित भारत की यात्रा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इसके जरिए हमारे जो भारतीय उद्योग हैं वो मजबूत होते हैं और जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे हम अपने उद्योगों को जोड़ते हुए एक यहां पर अपना एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। फिर हम ग्लोबल साउथ की आवाज प्रणेता बनके जो उभरे, तो उसमें जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों का डेमोक्रेटाइजेशन हो और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसमें जो ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसके नेतृत्व की बात करते हैं, इसको आज पूरी दुनिया अपना समर्थन दे रही है, चाहे यूरोप के शक्तिवान देशों को आप देखें या लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के हमारे समकक्षी देशों को देखें तो यूएनएससी जैसे संस्थानों में भारत लगातार भारत जैसे देशों के नेतृत्व की मांग कर रहा है और अपनी स्थायी सदस्यता के लिए तो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर गए तो वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इस बात को फिर पुरजोर तरीके से रखा कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो एक वैश्विक समर्थन जो है वो आज हमें हासिल हुआ है और ये विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे लिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी नेतृत्व की भूमिका बढ़े। फिर यदि हम अपनी सुरक्षा की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो आसपास एक फ्लक्स की सिचुएशन है, दो युद्ध चल रहे हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी लगातार तनाव बना रहता है। इन सबके बीच हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से लगातार हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे और अभी पश्चिम एशिया की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरह से ईरान ने बंद किया और पूरी दुनिया ने संकट को झेला, 40% लगभग तेल गैस और एलपीजी पूरी दुनिया को सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से और कुल जरूरत का 80-90% अपना तेल गैस और एलपीजी चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश मंगाते हैं। हमने लगातार 27 देशों की बजाय 41 देशों से तेल गैस और एलपीजी मंगाने का हमने पिछले 12 वर्षों में ये काम किया और अपनी जो ऊर्जा आयात हमारा जो है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया। तो हमने अपनी इस प्रकार की डायनामिक ऊर्जा पॉलिसी के चलते ऊर्जा सुरक्षा हम बरकरार रख पाए तब जबकि दूसरे देशों में 40-60-70% तक की मूल्य वृद्धि हुई। आप देखिए कि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रही, ऑयल गैस की हमारी निर्बाध आपूर्ति लोगों को मिली। फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है उस पर एक विशेष हमारा ध्यान है, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनके उभरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र में। हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से पहले सागर डॉक्ट्रिन प्रस्तुत किया जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल था। फिर जब दोबारा मॉरिशस की यात्रा की तो उन्होंने महासागर नीति रखी जो कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है। तो तमाम हिंद महासागर के जो लिटोरल देश हैं और जो इंडायरेक्टली जुड़े हुए देश हैं वो सब आज भारत को प्रणेता मानते हुए भारत से जुड़ रहे हैं और हम इन देशों के साथ साझा विकास भी कर रहे हैं। और फिर विदेशों में जो अपने भारतीय प्रवासी हैं जो हमारे लिए हमारी जीडीपी के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं योगदान तो करते ही है, हमारी संस्कृति के वाहक हैं, एम्बेसडर्स हैं, तो उनकी सुरक्षा उनके सशक्तिकरण को भी हमने प्राथमिकता दी है। तो आप देखिए जब जब अलग अलग विश्व में हमने संकट देखे वहां भारत ने तुरंत इवैक्यूएशन प्लान्स लॉन्च करके भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और जो भारतीय वहां पर रह रहे थे उदाहरण स्वरूप रशिया यूक्रेन वॉर में उनको तुरंत भारत वापस लाने की पहल और सफलतापूर्वक इसका भी अकम्प्लिशमेंट हमारी विदेश नीति की वजह से हो पाया। जब हम विकसित भारत 2047 के सामरिक लक्ष्यों को देखें, आर्थिक लक्ष्यों को देखें, तकनीकी लक्ष्यों को देखें, वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ने के लक्ष्य को देखें तो अपनी विदेश नीति के माध्यम से हम लगातार अपने विकसित भारत के विजन को मिशन को साकार कर पा रहे हैं।
1: आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्र प्रथम की नीति रही है भारत की वो शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं अपने नागरिकों की बात करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो ये एक नीति इसने देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को किस तरह से और कितना मजबूत किया है, क्या मानते हैं?
2: ये जब हम इस नीति को देखते हैं या इस पूरे फिनोमेना को देखते हैं तो ये हमारी विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में हैं और इसके माध्यम से हम किसी के दबाव में नहीं आते, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और विश्व मंच पर अपने हित की तो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित रखते हैं कि देश विदेश में जो अपने लोग रह रहे हैं, भारतीय प्रवासी जो हैं, उनकी सुरक्षा और उनके विकास को हम आगे बढ़ा सके। और इसमें फिर हम देखिए एक संतुलन बना के रख

हैं, और इसके जरिए हम अलग अलग जो स्वभाव के देश हैं उनके साथ अपने पारंपरिक और नए तरीके के संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। संकट के समय हम दूसरे देशों की तो सहायता करते हैं, लेकिन

0: समन्वय हमने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी रक्षा शक्ति के बीच में एस्टेब्लिश किया है, और इसके चलते, इस नेशन फोर्स की बात के चलते, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हमने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी दृढ़ता से रखा है।
1: बिल्कुल। तो अंशु जोशी जी और एमपी नाथाले साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
4: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
3: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देशभर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD Vance कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर मालिक गलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय

महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।